एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के, आषाढ़ मास की 18वीं तिथि। तदनुसार 9 जुलाई सन 2026 5:57 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

0: और उनमें किसी भी प्रकार की हीन भावना नहीं होगी। सार्थक दिशा में विचार करना, मन में आने वाले प्रत्येक विचार की जांच परख करना, उस पर चिंतन और मनन करना न सिर्फ कल्याणकारी है, बल्कि ये तो एक ऐसा दैवीय वरदान है जो केवल मानव जाति को ही मिला है।
1: कार्यक्रम चिंतन अभी आपने सुना। 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 6:10 हुए हैं। भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना आइए अब सुनते हैं। गायक कलाकार हैं सुमन कल्याणपुर।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो

0: ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
3: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों में 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
4: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
3: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
0: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
5: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
6: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।

0: सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये भजन। इसके साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हमारी कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी की रायगढ़ केंद्र से। 6:30 हुए हैं। कृषि संबंधित जानकारी अब आप सुनेंगे कार्यक्रम कृषि चर्चा में। चर्चा का विषय है फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपयोगिता और वार्ताकार हैं समीउल्ला खान।
1: किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पोषक तत्वों के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और उन पोषक तत्वों का पूर्ति हम अपने भोजन से करते हैं और हमारे भोजन में वही पोषक तत्व हमारे शरीर तक पहुंचते हैं जो अपने खेतों में हम जिनका समावेश करते हैं। तो बात आती है कि वो पोषक तत्व जो होने चाहिए खेतों में और खेतों के माध्यम से होते हुए पोषक तत्व पहुंचने चाहिए हमारे शरीर तक। तो आप जानते हैं कि हमारे जो मुख्य प्रकार के पोषक तत्व हैं नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास पौधों के लिए। तो पौधों के लिए नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास तो जरूरी है ही, लेकिन इनके अलावा जो हम बात करें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसके साथ आयरन मैग्नीज जिंक निकल इत्यादि बहुत प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। और सारे पोषक तत्वों का एक हमारे पौधों के जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं वनस्पतिक वृद्धि पुष्पन फलन तो इन सभी स्थितियों में अलग अलग न्यूट्रिशन पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अमूमन किसान भाई हम एक गलती करते आते हैं, हम नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास के लिए तो ध्यान देते हैं लेकिन उसके अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व है ना, जैसे मैंने बोला कि आयरन हो गया मैग्नीज हो गया बोरोन हो गया जिंक हो गया निकिल हो गया और बहुत भांति भांति प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, तो वो हम उन पर ध्यान नहीं देते और सीधे हम यूरिया डीएपी या इत्यादि पोषक तत्वों के स्रोत पर निर्भर हो जाते हैं। भूमि में अंधाधुंध उन्हीं तत्वों का समावेश करते हैं। इससे होता क्या है, अस्थायी तौर पे हमारा पौधा है हरापन दिखाता है उत्पादन देता है लेकिन उसके प्रोड्यूस में उस उत्पाद में अगर हम धान से चावल बनाते हैं दाल उत्पादन करते हैं तो उसमें फाइबर प्रोटीन एमिनो एसिड सेलेनियम और इत्यादि जो चीजें होनी चाहिए क्या वो होती हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। हम जो खा रहे हैं हमारे बॉडी में जो हार्मोन का एक समुचित फ्लो होता है विभिन्न अवस्थाओं में तो वो हार्मोन का फ्लो क्या हमारे भोजन से प्रवाहित और प्रबंधित हो रहे हैं। आज हम देख रहे हैं हमारे समाज में शुगर बीपी और बहुत सी प्रकार की समस्याएं चल रही हैं। इसका कारण क्या है, हम वर्कआउट करते हैं हम अपने नियमित जीवन शैली को अपनाते हैं लेकिन उस प्रक्रिया के बाद भी हम भोजन

0: भी दे रहे हैं, तो थाली में वो चीज हमारे बॉडी को क्यों नहीं पहुंच रही है? इसी का मैं आप लोगों से एक चर्चा कर रहा हूं कि हमारे खेत में अगर पोषक तत्व तो सही होंगे तो हमारे शरीर या हमारे थाली पे वो पोषक तत्व तो सही तरीके से पहुंचेंगे, अन्यथा ये संतुलन और ये समीकरण बिगड़ेगा, तो इसके दुष्परिणाम हम झेल रहे हैं। तो नाइट्रोजन के लिए हम बात करते हैं, तो यूरिया है हमारे बीच में, वायुमंडल से जो बारिश होती है हवा है हमारे बीच में, उसके अलावा हम और तरीके भी आजमा सकते हैं, जैविक खाद के तौर पे, हरी खाद के तौर पे, मिट्टी के स्ट्रक्चर, मिट्टी के टेक्सचर को सुधारें, हवा का संचार बढ़ाएं, सूक्ष्म पोषक तत्वों का उसमें ग्रोथ बढ़ाएं, हम अपने माइकोराइजा, राइजोबियम इत्यादि का समावेश करें, ताकि जो भोजन हम उगा रहे हैं, अब अपने खाने के लिए ही तो उगा रहे हैं, और अगर वो हम अपने थाली पे वो पोषक तत्व तो नहीं पहुंचा पाएंगे तो हमारे लिए वो खेती बहुत फायदेमंद नहीं होगी, और एक समय के बाद हमको पुरानी पद्धति पे लौटनी पड़ेगी, मिट्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। आज हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मिंग कर रहे हैं, एक निश्चित सीमा के ऊपर हमारे उत्पाद में केमिकल नहीं होना चाहिए, कोई दवा नहीं होना चाहिए, किसी रेजिडुअल या कोई अवशेष नहीं होने चाहिए। अगर हम उस नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे जो एक्सपोर्ट पॉलिसीज हैं वो वायोलेट होंगी और हमारा एक्सपोर्ट खराब होगा। तो बहुत जरूरी हो गया है कि हम अपने उर्वरकों के जो स्रोत हैं उस पर ध्यान दें, मिट्टी को विभिन्न प्रकार के उर्वरक के माध्यम से उर्वरक दें, एक ही स्रोत पर निर्भर ना रखें, फसल का चक्रण भी करें, दलहनी फसलों के बाद अदलहनी फसलें लगाएं, कुछ समय के लिए मिट्टी को रेस्ट भी दें। हम ये छोटी छोटी बातों का पालन करेंगे, अनुसरण करेंगे और ये पोषक तत्व का प्रबंधन करेंगे, खेत भी हमारा सही रहेगा, फसलों का बढ़वार भी सही रहेगा और एटलीस्ट हमारे समाज का एक सेहत भी सुधरेगा। तो ये मेरा एक संदेश है, हम सभी मिलकर इसका पालन करेंगे और अपने फसलों के उत्पादन को सुधारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि चर्चा, ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। FM बैंड पर 6:35 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी ही देर बाद 6:40 पर आप सुनेंगे रामचरितमानस। कार्यक्रम देशगान हम आपको सुनवाएंगे 6:50 पर। सुबह 7:05 पर आनंद लीजिए का कार्यक्रम एक ही फिल्म से का, और आज की फिल्म है जान। छरों का कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे 7:35 पर। लोकगीतों का कार्यक्रम बाजे मादर हम लेकर आएंगे 7:45 पर। फोन इन कार्यक्रम हेलो संगवारी आप सुन सकते हैं 8:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह 9:00, 11:00, दोपहर 12:00 और दोपहर 2:15 से शाम 5:00 तक लगातार, और रात्रि 9:00 से 10:00 तक। लोक संगीत कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 10:10 पर। प्रायोजित कार्यक्रम दीदी के गोट हम रिले करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से दोपहर 2:00। शाम में गजल अब सुनिए हमारे शाम के कार्यक्रमों के बारे में। शाम 5:00 होगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। शाम में गजल कार्यक्रम हम पेश करेंगे 5:10 पर। ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार आप सुन सकते हैं 5:30 पर। कार्यक्रम में आज के गोट का विषय होगा छोटा परिवार सुखी परिवार, जनसंख्या नियंत्रण खुशियों का आधार, और चर्चा का विषय होगा मादक पदार्थों का सेवन मौत को आमंत्रण। फिल्मी गीत पेश किए जाएंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत में शाम 6:20 पर, 7:00 और रात्रि 8:30 पर। किसान बंधुओं का कार्यक्रम किसान वाणी आप सुन सकते हैं संध्या 7:20 पर। कार्यक्रम में आज की बात के अंतर्गत आप सुनेंगे नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पॉम, इस विषय पर चर्चा, और नसीहत का विषय होगा समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन अपनाएं और मृदा की सेहत सुधारें। साथ ही सुनेगा क्रम आज का टीप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत आप सुन सकते हैं रात्रि 8:20 पर। विविध संगीत कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 10:00 और 10:30 पर। हम पेश करेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये थे हमारे आज के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।
2: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ ₹50 महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें

0: वेव्स ओटीटी ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
1: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
5: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है रामचरितमानस भाग 67। गायक कलाकार हैं रविंद्र साठे। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया।

कपटी मुनि के षड्यंत्र के फलस्वरूप राजा प्रताप भानु 100,000 ब्राह्मणों को अनजाने ऐसा भोजन परोसने का पाप कर बैठा जिसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ था। निमंत्रित ब्राह्मण भोजन करने ही वाले थे कि आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठ कर अपने घर जाओ, ये अन्न मत खाओ। ब्राह्मण तो मानव मांस खाने से बच गए, किंतु राजा प्रताप भानु ब्राह्मणों के शाप से नहीं बच सका। कालांतर में यही प्रताप भानु रावण के रूप में पैदा हुआ। उसका वीर और पराक्रमी भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण होकर जन्मा तथा मंत्री धर्मरुचि रावण का सौतेला भाई विभीषण हुआ। सागर के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक अत्यंत विशाल दुर्ग था, जो इंद्र की नगरी अमरावती से भी अधिक सुंदर और आकर्षक। रावण ने उस नगर पर अधिकार कर लिया। उसे अत्यंत दुर्गम जानकर रावण ने वहीं अपनी राजधानी बनाई और कुबेर को परास्त करके उनसे पुष्पक विमान जीत लिया। एक बार खेल खेल में ही उसने कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं में उठा लिया। नित्य प्रति उसका वैभव, संपत्ति, सेना, पुत्र, सहायक, जय, प्रताप, बल ऐसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ के साथ लोभ बढ़ता है।

रविंद्र साठी के स्वर में अभी आप सुन रहे थे मानस गान 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:50 हुए हैं, लीजिए सुनिए समूह स्वर में देश गान।

0: अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देश गान 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: 7:10 पर सुनना ना भूलिएगा गोल्ड सुप्रभात मेरे यानी सुरती के साथ। लेकिन फिलहाल आइए सुनते हैं समाचार एफएम गोल्ड पर। सुनते हैं अब समाचार।
2: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी त्रिराष्ट्र यात्रायाः द्वितीये चरणे ऑस्ट्रेलिया देशस्य मेलबोर्न नगरं सम्प्राप्तवान्। ह्यः तस्य आगमन समये ऑस्ट्रेलिया देशस्य नगरावासन मंत्री क्लेयर ओ नील इत्येषा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्नेहपूर्वकं स्वागतम् अकरोत्। प्रधानमंत्री अवदत् यत् इयं यात्रा भारताऑस्ट्रेलिया समग्र सामरिक सहभागितायाः ऊर्जां वर्धयिष्यति इति। सामाजिक संचार पटले एकस्मिन् संदेशे श्री मोदी अवदत् यत् असौ ऑस्ट्रेलिया देशस्य समकक्षेण एंथनी एल्बनीज इत्यनेन सह संवादम् आचरिष्यति। असौ एतदपि कथितवान् यत् भारताऑस्ट्रेलिया सहभागित्वस्य महत्वपूर्ण स्तंभेन भारतीय प्रवासिना सह संवादाय अवसरः अपि प्राप्स्यामि इति। यात्रावधौ श्रीमोदी तृतीये भारताऑस्ट्रेलिया वार्षिक सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। असौ भारताऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकार्याधिकारी मंचे अपि भागं ग्रहीष्यति, यत्र सः उभय देशयोः प्रमुखानां व्यापार नेतृणां समागममपि सम्बोधयिष्यति। भारत म्यांमार देशौ द्वैपाक्षिक सुरक्षा सहकारिता विषये चर्चां कृतवन्तौ। द्वैपाक्षिक संवाद व्यवस्थायाः अन्तर्गते प्रगतिं च समीक्षितवन्तौ। भारत म्यांमार देशयोः मध्ये त्रयोविंशतितमं द्विदिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलनम् अद्य ह्यः नवदिल्ल्यां सम्पन्नम्। गृहमन्त्रालयः अवदत् यत् भयोत्पादनं विद्रोहः मादकद्रव्याणां क्रयविक्रयणं शस्त्राणां क्रयविक्रयणं मानवव्यापारं वन्यजीवानां क्रयविक्रयणं क्रयणम् इत्यादिनां संघटितानां अपराध प्रकाराणां निवारणार्थं सहकारिता विषये उभयपक्षौ चर्चां कृतवन्तौ। भारत रूस देशाभ्यां ह्यः संयुक्त राष्ट्र ब्रिक्स यूरेशियन समूह शंघाई सहयोग संघटनानि समेत्य बहुपाक्षिक मंचेषु आतंकवादरोधी सहयोगम् इतोपि सुदृढीकरणस्य प्रतिबद्धता पुनरुद्घाटिता। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूहस्य चतुर्दशोपवेशनम् ह्यः नवदिल्ल्याम् आयोजितमासीत्। द्वौ देशौ सीमापारे आतंकवादं समेत्य आतंकवादस्य सर्वेषां रूपाणाम् अभिव्यक्तिनां च निन्दां कृतवन्तौ। भारतीयान्तरिक्ष अनुसन्धान संघटनम् मध्यप्रदेशस्य श्योपुर नगरस्य एरियल डिलीवरी रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट इत्यस्य ड्रॉप जोन इत्यत्र गगनयान उपक्रमस्य कृते महत्वपूर्णम् एकीकृतम् IMAT इति परि

0: ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಫಲತೆಯ ಆಯೋಜಿತ. ಭಾರತರ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗೇನ ಉಕ್ತಂ ಯತ್ ಆಗಾಮಿಷು ತ್ರಿಷು ದಿನೇಷು ನೈಋತ್ಯ ಪ್ರಾವೃಷೆ ಉತ್ತರ ಅರಬಸಾಗರ ರಾಜಸ್ಥಾನೆ ಗುಜರಾತ್ ಹರಿಯಾಣ ಪಂಜಾಬ್ ಇತ್ಯೇತೇಷಾಂ ಶೇಷ ಭಾಗೇಷು ಅಗ್ರೆ ಗಂತುಂ ಸ್ಥಿತಿ ಅನುಕೂಲ ಅಸ್ತಿ. ಅದ್ಯ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಅಸಮ ಮೇಘಾಲಯ ಬಿಹಾರ ಪೂರ್ವ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಉಪ ಹಿಮಾಲಯೀಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಪಶ್ಚಿಮೋತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಾನಾಂ ಕೇಶುಚಿತ್ ಭಾಗೇಷು ಪ್ರಚಂಡ ವೃಷ್ಟಿ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಇತಿ ಋತು ವಿಭಾಗೇನ ಪೂರ್ವಾನುಮಾನಿತಂ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪ್ರಶಾಸನೇನ ಹ್ಯಃ ಶ್ರೀ ಅಮರನಾಥಜಿ ಯಾತ್ರಾಮುದ್ದೇಶ್ಯ ಏಕಾ ನವೀನಾ ನಿರ್ದೇಶಿಕಾ ಪ್ರಸಾರಿತಾ ಯಸ್ಯಾಂ ಸರ್ವಹಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಿಭಿ ಪಂಜೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾಯಾಃ ಅಥ ಸುರಕ್ಷಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಕಾನಾಂ ನಿಷ್ಠಾಪೂರ್ವಕಂ ದೃಢತಾಪೂರ್ವಕಂಚ ಪಾಲನಂ ಕರ್ತುಂ ಸಮಾದಿಷ್ಟಂ. ಆಕಾಶವಾಣ್ಯಾಃ ಜಮ್ಮು ವಾರ್ತಾಹರೈಃ ವಿಜ್ಞಾಪಿತಂ ಯತ್ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಸ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಾನುಸಾರಂ ನಿರ್ಧಾರಿತಾ ಯಾತ್ರಿಣಾಂ ಪ್ರತಿದಿನಸ್ಯ ಸಂಖ್ಯಾ ಸೀಮಾ ಸಂಪ್ರತ್ಯಪಿ ಪೂರ್ಣತೋ ಪ್ರವೃತ್ತಾ ವರ್ತತೆ. ಶ್ರದ್ಧಾಲವಃ ಪರಾಮೃಷ್ಟಾಃ ಯತ್ ಯಾತ್ರಾ ಪ್ರಾರಂಭಾತ್ ಏವ ಪೂರ್ವಮೇವ ಅಗ್ರಿಮ ಪಂಜೀಕರಣಂ ಕರಣೀಯಂ ಅಥ ಅನುಮತಿಪತ್ರೆ ಉಲ್ಲಿಖಿತೆ ದಿನಾಂಕೆ ಏವ ಯಾತ್ರಾ ಆರಂಭಣೀಯ. ಪ್ರಶಾಸನೇನ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕೃತಂ ಯತ್ ಅನುಪದಮೇವ ಪಂಜೀಕರಣಸ್ಯ ಸುವಿಧಾ ಅತ್ಯಂತಂ ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯಾಸು ಏವ ಉಪಲಬ್ಧಾ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ವಾರ್ತಾಃ.
1: ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸಮಾಚಾರ ಕೆ ಸಾಥ್ ಮೈ ಮುನೀಶ್ ಶರ್ಮಾ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी आधिकारिक मंच को संबोधित किया. अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापारिक साझेदारियों को हमें ऊंचाइयों पर ले जाना है.
2: भारत आपके फंड्स को सेफ स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है. हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े. एजुकेशन और स्किल्स में दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है. डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने कीप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया. यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है. हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे. दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क को मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है. प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय को गर्मजोशी से स्वागत के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए इसे अविस्मरणीय बताया. ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है. भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है. IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है. केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत भी मिलेगी. उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है. नई दिल्ली में सत्र में

0: कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे और इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। अमेरिका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के फिर से किए गए हमलों को दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की समाप्ति के बाद किए गए हैं। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी दिल्ली में रात से ही लगातार बारिश हो रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का 4th मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। इससे पहले 3rd मैच में भारत को इंग्लैंड से 125 रन से हार का सामना करना पड़ा था। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 7:05 हुए हैं। अब आनंद लीजिए कार्यक्रम एक ही फिल्म से का, और आज की फिल्म है जान। श्रोताओं, 1996 में रिलीज हुई यह फिल्म एक सुपरहिट हिंदी एक्शन ड्रामा फिल्म रही, जिसका निर्देशन राज कंवर ने किया। दोस्तों, फिल्म में अजय देवगन, ट्विंकल खन्ना और अमरीश पुरी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। फिल्म के गीतों को लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया आनंद मिलिंद ने। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म के कुछ गीत। सबसे पहले आप सुनेंगे इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग, जो काफी लोकप्रिय रहा। आवाजें हैं मनहर उदास और अलका याग्निक की।

0: टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए आप, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात। ना शर्माना, ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं।
1: हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा।
0: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम एक ही फिल्म से में आज आप सुन रहे हैं जान फिल्म के कुछ गीत। इस फिल्म का अगला गीत आप सुनेंगे उदित नारायण और साधना सरगम के युगल स्वर में।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
0: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: जान फिल्म के कुछ गीत अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से में। इस फिल्म का

उदित नारायण अलका याग्निक और साथियों को अभी आप सुन रहे थे इस गीत में। श्रोताओं, कार्यक्रम एक ही फिल्म से में आज आप सुन रहे थे जान फिल्म के कुछ गीत। इस फिल्म के गीतों को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया था आनंद मिलिन ने। और इसके साथ ही ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 7:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा।

स्वागत है सभी श्रोता साथियों का प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा में। और आज आपके साथ हूं मैं, आपकी रेडियो मित्र श्रद्धा। श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की। दोस्तों, हमारे देश की पहचान केवल उसकी संस्कृति और परंपराओं से ही नहीं, बल्कि उन लाखों मेहनती कारीगरों और शिल्पकारों से भी है जो पीढ़ियों से अपने हुनर को जीवित रखे हुए हैं। इन्हीं पारंपरिक कारीगरों को आर्थिक और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू की है। दोस्तों, यह योजना उन लोगों के लिए है जो अपने हाथों के हुनर से आजीविका कमाते हैं, जैसे बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार, नाई, दर्जी, धोबी, मोची, मछली पकड़ने के जाल बनाने वाले, मालाकार, राजमिस्त्री, ताला बनाने वाले, नाव निर्माता और अन्य पारंपरिक शिल्पकार। श्रोताओं, इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को सबसे पहले कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे आधुनिक तकनीकों से जुड़ सके। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें 500 रुपए का प्रशिक्षण भत्ता भी दिया जाता है। साथ ही अपने काम को बेहतर बनाने के लिए 15,000 रुपए तक की टूल किट सहायता, ई वाउचर के रियायती ब्याज दर पर ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। दोस्तों, पहले चरण में 1,00,000 रुपए तक और समय पर भुगतान करने पर दूसरे चरण में 2,00,000 रुपए तक का ऋण प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना ही नहीं, बल्कि कारीगरों के उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाना, उन्हें डिजिटल लेनदेन से जोड़ना और उनके उत्पादों को देश विदेश के बाजारों तक पहुंचाना भी है। श्रोताओं, हमारे कारीगर हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। उनका सम्मान, उनका विकास और उनका आत्मनिर्भर बनना ही विकसित भारत की मजबूत नींव है। दोस्तों, इसी संदेश के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, और आप सुनिए ये प्यारा सा गीत।

0: ₹5 लाख के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh, यानी shrotarayagad@gmail.com।
2: संदेश से पहले आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड पर 7:45 हुए हैं। लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर, आइए अब सुनते हैं। कार्यक्रम में सबसे पहले आप सुनेंगे राम प्रसाद नेगी और सुनीता थवाइत का गाया ये लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे राम अवतार देवांगन और राम प्यारी का गाया ये लोकगीत। इसके साथ ही कार्यक्रम बाजी मांदर अब समाप्त होता है। 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे आज के शेष प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो संगवारी। विविध भारती कार्यक्रम हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह 9 बजे, 11 बजे, दोपहर 12 बजे और दोपहर 2:15 से शाम 5 बजे तक लगातार, रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक। लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:10 पर। आपकी फरमाइश कार्यक्रम हम पेश करेंगे 10:30 पर सुबह और रात्रि 10:30 पर। शाम 5 बजे होगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। शाम में गजल कार्यक्रम हम पेश करेंगे 5:10 पर। घर द्वार कार्यक्रम सुनिएगा 5:30 पर। कार्यक्रम में आज के गोट का विषय होगा छोटा परिवार सुखी परिवार, जनसंख्या नियंत्रण खुशियों का आधार। और चर्चा का विषय होगा मादक पदार्थों का सेवन मौत को आमंत्रण। साथ ही सुनिएगा क्रम स्वास्थ्य चर्चा। फिल्म संगीत कार्यक्रम हम पेश करेंगे शाम 6:20 पर, 7 बजे और रात्रि 8:30 पर। किसान वाणी कार्यक्रम होगा संध्या 7:20 पर। कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम। और नसीहत में चर्चा का विषय होगा समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन अपनाएं और मृदा की सेहत सुधारें। साथ ही सुनिएगा क्रम आज कटी पाँच का मंडी भाव, आज का मौसम और कृषक प्रश्न मंच। रात्रि 8:20 पर हम पेश करेंगे गैर फिल्मी गीत। विविध संगीत कार्यक्रम हमारे केंद्र से आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे। ये थे हमारे आज के शेष प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टा

0: इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट।
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, 22 स्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
2: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
3: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
4: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून, दिल की आरती,
1: सुरीली संदली, भारती
5: 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2026 में 7% की विकास दर रहने का अनुमान जताया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लिया। दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व समय अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्वाभाविक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक है और आवश्यक भी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपनी शक्तियों का लाभ उठाते हुए भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में रिकॉर्ड समय में संपन्न हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है।
3: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की

0: सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, खनन, अवसंरचना, शहरी विकास, विमानन, रसद, उन्नत प्रौद्योगिकी, एआई, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में भारत में उपलब्ध विशाल अवसरों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।
0: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा है कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है।
2: तीसरा एनुअल लीडर्स समिट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस वर्ष और पिछले सालों में जो आपने देखा कि जो एक पूरे विश्व में एक हल्का सा तनाव है, चाहे युद्ध का है, जो डिस्प्यूट्स है, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उस संदर्भ में इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारी रिलेशनशिप को उस क्षेत्र में जिसको हम लोग इंडो पैसिफिक बोलते हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
0: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि स्वीकृत खरीद का कुल MSP मूल्य 1,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के तहत इस वर्ष तमिलनाडु में 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आमों की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। यह खरीद MIS के तहत की जाएगी, जिसमें बाजार हस्तक्षेप मूल्य 1,000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक निर्धारित किया गया है। अनुपम मिश्र के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती स्थित सचिवालय में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित

0: भी लाभ मिलेगा। शिक्षकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा करने के अपने वायदे को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए ये व्यापक सामाजिक सुरक्षा और बीमा कार्यक्रम देश में अपनी तरह की पहली पहल है। इस योजना के तहत 10,000 रुपए से ज्यादा मासिक वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों को 30 लाख रुपए से 80 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। अमेरिका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमरीकी हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर हमले किए तो अमरीका इसका और कड़ा जवाब देगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिन में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रात से ही बारिश हो रही है। दिन में भी शहर में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि राज्य में कल रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट पहले से ही जारी है। इन जिलों में कल रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी हैं। 18 वर्षीय पापरकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रियो ताबाता को मात्र 52 मिनट में 6-2, 6-1 से हराया। पापरकर का अगला मुकाबला आज शाम 5 बजे क्वार्टर फाइनल में अमरीका के जॉर्डन ली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने ईरान अमेरिका युद्ध विराम खत्म होने के, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान और बारिश के चलते देश में प्रभावित जनजीवन के समाचारों को सुर्खियों में जगह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा का समाचार भी कई अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर में पूजा अर्चना करते प्रधानमंत्री का चित्र सबसे ऊपर छापा है। खबर को शीर्षक दिया है, इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में मोदी ने की पूजा। वीर अर्जुन ने इस खबर को प्रधानमंत्री के इस बयान के साथ प्रकाशित किया है कि सांस्कृतिक विरासत हमें जोड़ती है। देशबंधु की सुर्खी है, इंडोनेशिया के सबसे बड़े शिव मंदिर में पहुंचे मोदी। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय से स्वागत स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री का चित्र भी कुछ अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत के ढहने के समाचार को देश भर में भवन निर्माण संबंधी अनियमितताओं के मामले से जुड़ी स्थिति का विश्लेषण प्रकाशित किया है। पत्र का कहना है कि नियमों का उल्लंघन कर लोग 5 से 6 मंजिला भवन बना रहे हैं। स्थिति को सुधारने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ताकि ऐसी अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। लोक सत्य ने नौकरी पेशा पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी शीर्षक से PF खाते में 8.25% की दर से ब्याज देने की सरकार की घोषणा को प्रकाशित किया है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया CEO फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया

0: का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर रचा है इतिहास। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses India-Australia CEOs Forum in Melbourne, says it is natural and essential for India and Australia to move forward as trusted partners in a world marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. Prime Minister Modi to also hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Centre approves procurement of Khopra and Totapuri mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Uttar Pradesh government launches cashless health scheme for teachers as well as non-teaching staff in the state. IMF projects India to remain world's fastest growing major economy with 7% growth this year. US launches new strikes on Iran after President Donald Trump said ceasefire is over. And India's Arnav Paparkar creates history by becoming first Indian in 36 years to reach boys singles quarterfinals at Wimbledon Juniors 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese participated in the India-Australia CEO Forum in Melbourne this morning. Both leaders also met the leading business leaders from India and Australia. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said the world is currently navigating a period marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. He said that in such times, it is both natural and essential for India and Australia to move forward as natural and trusted partners. The Prime Minister further said economic cooperation and trade agreement concluded in record time in 2022 has further strengthened the economic ties between the two countries.
2: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
1: Prime Minister Modi also noted the complementarities between the Indian and Australian economies, underlining vast opportunities available in India across a number of sectors.
2: हमारी पार्टनरशिप केवल दोनों राजधानियों या कुछ शहरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमें हमारे राज्यों, छोटे बड़े शहरों, विश्वविद्यालयों, उद्योगों सभी के स्टेक होल्डर्स बनाना होगा। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेंथ, उसको हम उड़ीसा और गुजरात की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के साथ जोड़ सकते हैं। क्वींसलैंड और टेस्मेनिया की क्लीन एनर्जी और एग्रीकल्चर एक्सपर्टीज पंजाब और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रिन्यूअल कॉरिडोर और फूड प्रोसेसिंग इकोसिस्टम को नई गति दे सकते हैं।
1: Mr. Modi invited Australian investors to take advantage of opportunities for long-term investments in the country and also welcomed the growing presence of Australian universities in India.
2: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने कीप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
1: फॉलोइंग द सीईओज फोरम, प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑल्सो एड्रेस्ड

0: हेलो संगवारी सबो संगवारी मन ला राम राम जय जोहार। संगवारी हो, आप सबो के हेलो संगवारी मा स्वागत हावे। वैसन तो ये कार्यक्रम मा आप मन के पसंद के गीत ला सुनाया जाते, तो चला पहली फोन लेवा था संगवारी हो। हेलो
1: हेलो
0: हेलो संगवारी सबो संगवारी मन ला राम राम जय जोहार।
1: राम राम जय जोहार।
0: हाँ संगवारी, आप मन कहाँ ले बोला था संगवारी?
1: मैं मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू बोला था।
0: अच्छा, मदनपुर कवर्धा। हाँ संगवारी,
1: मदनपुर कवर्धा से।
0: हाँ संगवारी, संगवारी तो बतावा का हाल चाल?
1: तब बढ़िया है हाल चाल। हा, आप मन के हाल चाल कैसे है बोला, आपो बताओ।
0: हाँ बढ़िया है संगवारी। और खेती पाती के बूता काम कैसे चला थे?
1: हाँ, कल तो पानी थोड़ा बढ़िया गिरे है तो हाँ। खेती बाड़ी काम चलत है।
0: हाँ
1: हाँ। आज हमारे तरफ तो गन्नो रही थे, धानो रही थे।
0: हाँ
1: तो गन्ना माँ खातू छिजे चलत थे, खाद डले।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया है। हाँ। संगवारी तो बढ़िया, ये बरसा के बेला में आप मन का गीत सुनना चाहा था?
1: मोला प्रकाश देवांगन के सुना दू।
0: अच्छा।
1: मोर खेती खार रुन झुन, मोर भावरा नाचे रुन झुन।
0: हाँ संगवारी, तो आप मन के पसंद के लोकगीत जो है आप मन कर पहुँचा थे संगवारी, सुनाओ।
1: हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद संगवारी,
1: धन्यवाद।
0: हेलो संगवारी।
1: जय राम संगवारी।
0: जय जय राम, कहाँ ले बोला था संगवारी?
1: मैं नान घाट कातर बोले बोला था दीदी, भाग सी राजपूत।
0: नान घाट
1: कातर बोर।
0: अच्छा, हाँ भैया। आओ भैया, बने बने।
1: बढ़िया दीदी, ये पानी है तो चोरों बोरो कर दी पूरा।
0: हाँ पूरा कर दी से भैया। तो कैसे है आप मन के खेती पाती के बूता काम कैसे चलते भैया?
1: भाई की दीदी वही नलिए उलिए काम चला थे, गुआरा होकर तैयार रही से।
0: हाँ हाँ।
1: पानी भर के वही सब नलियात उलियात हमन अंकुरण आ गए धान है।
0: अच्छा।
1: पानी नहीं गिर ही जाम जाए दीदी।
0: हाँ, सही बात है भैया।
1: उन्हीं गिर ही था।
0: हाँ। तो भैया आज आप मन फोन लगाए हवा, तो आप मन के गीत काय गीत सुनने की फरमाइश कर रहे हवा?
1: प्रकाश देवांगन के आवाज में सुनवा रहे मोर खेती खर रुझुम वाले गीत।
0: हाँ, बन जाए भैया।
1: हाँ दीदी,
0: ठीक है भैया। तो आप मन के फरमाइश से गीत आप मन तक पहुँचा था भैया, फोन करे हा, तेकर पर आप मन बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद दीदी।

0: हेलो संगवारी, आप मन के स्वागत हावे संगवारी, बतावा।
1: ओ संगवारी, राम राम, जय जोहार दीदी।
0: हाँ राम राम भैया, और का हाल चाल भैया?
1: आराम नाम घाट ले माखन वर में बोला था दीदी।
0: हाँ संगवारी, तो औ का चलत है अभी आप मन के बुता काम संगवारी?
1: अब भाई जी का है कि दीदी, अभी बानू मुबारक काम चलत है दीदी, तो पानी ज्यादा हो गए, पूरा बाढ़ आ गए दीदी, अभी तो सब आहंगा हो गए।
0: अच्छा, बनेच पानी गिरी से लगा थे आप मन कति?
1: पूरा बाढ़ आ गए दीदी, सब नदी नाला पूरा फान।
0: ओहो, तो फिर कैसे कैसे करो था संगवारी?
1: अभी तो का है कि दीदी, पानी खाली हो गई तो बुआई काम नहीं बना दीदी।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: अब पानी खाली हो गई तब बुआई काम चली।
0: अच्छा, तो अब बुता काम ला तो करेज बढ़ावा है ना?
1: हाँ ना दीदी।
0: हाँ, तो आज हेलो संगवारी में आप मन के फरमाइशी गीत का हावे संगवारी?
1: का है कि दीदी, पंच राम गिरजा के सुनना है, पेड़ पौधा लगा के समय बढ़िया है दीदी, कहा कि धरती के यही पुकार, पेड़ लगाओ बारंबार, हरियाली से नाता जोड़ो, बीमारी दूर भगाओ। तो दीदी कहा है कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक दीदी वन महोत्सव मनाएं दीदी, बढ़िया।
0: हाँ
1: तो दीदी कहा है कि पेड़ पौधा भी लगाना जरूरी है दीदी।
0: हाँ जरूरी हावे भैया, जरूरी हावे, और वन हावे तो हमर जीवन है। तो ठीक है, आप मन के पसंद के गीत का हावे?
1: पंचराम मिर्जा के सुने दीदी।
0: अच्छा, पंचराम मिर्जा के।
1: पड़ता भूल है मेरे पार में प्यारे लगा।
0: हाँ हाँ, ठीक है भैया, आप मन के फरमाइश के गीत पहुँचा थे आप मन तक, तो आप मन फोन लगाया तेकर पर आप मन बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आप मन हमारे फोन कॉल शामिल करे पर बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।
0: हाँ हाँ भैया, धन्यवाद।
1: कौन दीदी बोला था आप मन?
0: मैं अन्नू बोला था भैया।
1: पहली बार बात हुआ दीदी आपसे?
0: हाँ हाँ, पहली बार मिलीस मौका, तो आप मन कर बात करे के ही मौका मिलीस भैया।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: हाँ संगवारी, आप मल हाँ फोन लगाए हवा, कहाँ ले बोला था संगवारी?
1: मैं ग्राम की पल्लो जिला मुंगेली सरगांव ले दीपेश्वर में बोला था दीदी।
0: दीपेश वर्मा। हाँ, बतावा संगवारी, आओ का हाल चाल आप मन के?
1: सब बढ़िया है दीदी। आज लगातार 3-4 दिन ले पानी गिरा दी से सब खेत खार मन भरा गए है। आज बयान करे है
0: हाँ,
1: वही नखम वही मला खोला था पानी निकाला था ताकि बीज अंकुरित हो जल्दी।
0: बिल्कुल बिल्कुल जरूरी हवा भैया, पहले ले तैयारी करना, तभी तो हम मतलब ओकर मेहनत के फल भी बढ़िया मिलते हैं ना। हाँ तो बढ़िया।

0: तैयारी तो आप मन करते छावा। आओ अभी का धान वान के तैयारी करे हवा कि का के भैया?
1: धान वान धान हवा दीदी, धान डलाए सब खेत मन में,
0: हाँ
1: लेकिन पानी बहुत ज्यादा ही गिर गिरी इससे भी 3-4 दिन ले, तो
0: हाँ हाँ
1: पूरा जहाँ तक नजर जाते सब खेत मन पड़ी आगे है, पानी भरा भरा है।
0: ओहो
1: वही ला नंग दिया के दे तरिया आ रहे नहर भर तो सुरता आगे आज तो मंगलवार है, पानी कार्यक्रम हमारे छत्तीसगढ़ के धरोहर गीत मन के फरमाइशी कार्यक्रम है।
0: नहीं बने करा भैया, बहुत अच्छा है। और ये तो हेलो संगवारी जो है आप ही मन भर ही हावा है, आप श्रोता मन भर ही हमने सब ला शुरू भी करे हन और आप मन के पसंद के लोकगीत ला भी सुनवा थन, तो का फरमाइश हावे भैया आप मन के आज?
1: खेती किसानी से जुड़े जो किसानी के दिन आगे है, धान पान के या तो बारिश से संबंधित कोई
0: अच्छा
1: भी गीत बजा दे।
0: हाँ ठीक है भैया, बन जाए तो धन्यवाद भैया आप मतलब फोन करा।
1: जी धन्यवाद।
0: हाँ भैया
2: खेती

0: हेलो संगवारी।
1: हाँ जय जोहार।
0: हाँ संगवारी, जय जोहार। कहाँ ले बोला था
1: हाँ
0: संगवारी?
1: सागरा सुमनी राजनंद में छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू बोला था मैडम।
0: अच्छा राजनंद,
1: हाँ सागरा।
0: अच्छा नारायण लाल। हाँ
1: हाँ
0: संगवारी,
1: मैडम
0: स्वागत हवे संगवारी आप मन के। आओ आओ, का चला थे आप मन के? हाँ
1: ये पानी गिरा थे धान वान बोना एक खेत भरी। हाँ पानी पानी गिरे 3-4 दिन ले।
0: हाँ हाँ पानी हर तो शुरू होइस भैया, तो बहुत ही ज्यादा गिरते छावे है ना। एमे थोड़े फसल हर भी हमन के बहुत प्रभाव पड़ते। तो आप मन फोन लगाए हवा, तो आपके पसंद के का गीत हवे भैया?
1: के जब सुना दू तब श्रोताओं के नाम ले लो
0: हाँ, ले लो
1: तो
0: संगवारी।
1: साहुए जुनवानी गुरु से और जीते सार मानी खुलिए
0: हाँ
1: सारवा जी है और दुर्वाराम साहुए मलाज संत मुन्ना लाल पटले जी के फरमाइश ने गीत सुना दू।
0: हाँ हाँ भैया बिल्कुल, तो आप मन के पसंद के लोकगीत जो है आप मन तक पहुंचा थे भैया, है ना। फोन करे ते कर
1: धन्यवाद।
0: आप मला बहुत बहुत धन्यवाद।
1: राम राम।
0: राम राम।
2: मोर भारत माँ के माटी जेखर हावय।

0: हेलो संगवारी।
1: संगवारी
0: हाँ संगवारी, राम राम, जय जोहार। कहाँ ले बोला था संगवारी?
1: रामचंद्र देवांगन
0: अच्छा, रामचंद्र देवांगन। कहाँ ले बोला था संगवारी? का गीत सुनना चाहते था संगवारी आप मन? अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है संगवारी।
1: धन्यवाद।
0: हाँ संगवारी, धन्यवाद फोन करे बस।

0: तोर दराज बिना मोर बैरी कलप कलप मन तरसे।
1: संगवारी हो, अभी आप मन बहुत अच्छा अच्छा फरमाइसी के लोकगीत आप मन सुना, आप मन फोन कराओ, तेकर बर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया हो, ये कार्यक्रम के तकनीकी सहयोग रहीन भूपत सिंह धुर्वे जी, प्रस्तुति सहयोग रही श्राम विलास पटेल, संचालन में रहे मैं अनुसुईया साहू और प्रस्तुत करता रहीन रवि।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो संगवारी 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 9 बजे हैं, कुछ ही पलों में हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से विविध भारती कार्यक्रम।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक, और इस संदेश से ठीक पहले आपने सुना अरमान मलिक और नीति मोहन की आवाजों में बार बार देखो फिल्म का गीत। कुमार ने उसे लिखा था, अमाल मलिक का संगीत। और चित्रलोक में आज हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य और परहेज की, क्योंकि कई बार हमारे जीवन में ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि हमें परहेज लंबे समय तक करना पड़ता है और कभी कभी जीवन पर्यंत करना पड़ता है। और ऐसे में कई बार ऐसा लगता है, बिल्कुल मन नहीं मानता और ये लगता है कि क्यों हम ये सारी चीज़ें नहीं खा रहे हैं या क्यों हमें ये सारी चीज़ें करना है। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे अच्छे स्वास्थ्य के लिए परहेज की आवश्यकता है और कभी कभी वो इससे उकता जाते हों, तो डॉक्टर की सलाह लेकर आप उन्हें कभी कभी उनकी पसंद की चीज़ें सप्ताह में या महीने में एक बार दे सकते हैं। ऐसा कई बार डॉक्टर, अगर बहुत ज़्यादा ही परेशानी की स्थिति ना हो, तो वो ऐसा कहते हैं कि आप उन्हें इतनी क्वांटिटी में वो चीज़ें दे सकते हैं, तो उस ही मात्रा में ये सब चीज़ें आप दे सकते हैं। और जीवन यूं भी उन पर काफ़ी कड़ा है, तो आप थोड़ा नरमी रखिए उनके साथ, समझाइए मत उन्हें बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप समझाने पर जाते हैं तो मामला ज़रा बिगड़ सकता है। उसकी बजाय उन्हें सुनिए उन्हें कैसा लग रहा है, क्योंकि ये बेहतर मदद साबित होती है। और अगर हो सके तो परिवार के दूसरे सदस्य भी परहेज में सहयोग करें, लेकिन कुछ ऐसा परहेज हो जिससे दूसरे परिवार के सदस्यों को करने से उन्हें स्वास्थ्य की परेशानियां हो सकती हैं तो ना करें। पर जो भी परहेज उनके साथ आप कर रहे हैं उसे एहसान की तरह मत दिखाएं। तो जितनी सहजता से ये बातें होंगी उतनी ही आसानी भी होगी।

श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाजों में हैप्पी न्यू ईयर फिल्म का ये गीत आपने सुना और इरशाद कामिल ने से लिखा, विशाल शेखर का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम में बात हो रही स्वास्थ्य और परहेज की। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें परहेज की आवश्यकता होती है, तो अगर आपको परहेज करना आवश्यक हो गया हो तो इसे मन पर हावी मत होने दें, क्योंकि कई बार लोगों की बातों का केंद्र बिंदु ही ये बात बन जाती है कि ये सारी चीज़ें हम नहीं खा सकते, ये सब चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं, जबकि आप उन चीज़ों की ओर भी ध्यान दे सकते हैं जो आप कर सकते हैं या जो आप खा सकते हैं, जो चीज़ें आपके लिए अनुकूल हैं उन पर ध्यान दे सकते हैं। हालांकि हमें पता है कि ये बात तो उस ज्ञान की तरह लगेगी जो कोई लेना नहीं चाहता, लेकिन काम तो यही आता है। तो एक और ज्ञान हम देते चलें कि भाई मन के अनुसार आप मत चलिए, मन को अपने अनुसार चलाइए, क्योंकि मन आपका है, आप मन के नहीं हैं। तो ये कीजिए और देखिएगा फिर आपका मन कितना खुश रहता है।

बैंग बैंग फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हर्षदीप कौर और बेनी दयाल की आवाजें, अन्विता दत्त के बोल, विशाल शेखर का संगीत। और हमारा स्वास्थ्य भी कुछ इस तरह से थोड़ी सी कहते परहेज मांगता है, या थोड़ा सा हमारा ध्यान चाहता है ताकि हम उसी ओर जाएं और अच्छा स्वास्थ्य हमारा बना रहे तो हम भी खुश रहेंगे। और इस परहेज को छोड़ने की जब बातें हम करते हैं, सोचते हैं कि नहीं हमें आज कुछ भी नहीं करना, ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी है, तो वो चीज़ें जो हैं बाद में जाकर परेशानी तो करती ही हैं। तो क्यों ना खुशी खुशी कीजिए भाई, परहेज तो करना ही है, तो रोकर कीजिए या हंसकर कीजिए। तो बेहतर है कि भाई अच्छे स्वास्थ्य की ओर अपना अच्छा कदम बढ़ाइए और हंसते खिलखिलाते बढ़ते हुए चलिए। तो आज ही कीजिए शुभारंभ इस बात का।

काई पोचे फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। श्रुति पाठक, दिव्य कुमार की आवाजें, स्वानंद किरकिरे के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। और इतनी देर हमने बातें की अच्छे स्वास्थ्य और उसके लिए किए जाने वाले परहेज की, तो यकीन मानिए आपका और हमारा हाल एक ही है, पर एक दूसरे को इस तरह संभालते हुए आप और हम स्वास्थ्य की ओर बढ़ते जाएंगे। और गीतों का साथ तो है ही, तो आज जो भी आज से अपने अच्छे स्वास्थ्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, आप सभी के लिए कार्यक्रम का ये गीत, क्योंकि आपकी तरह ही हम भी अच्छे स्वास्थ्य के फैन हैं।

नक्स अजीज की आवाज में फैन फिल्म का गीत आपने सुना, वरुण ग्रोवर के बोल, विशाल शेखर का संगीत। स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, दिन भर जहां भी रहें रहें देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ। और आज के इस कार्यक्रम से अपनी दोस्त नेहा शर्मा को दीजिए इजाजत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: सुनने वालों को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सलाम उस विलक्षण प्रतिभा को, एक अभिनेता, एक निर्देशक, एक जज्बाती इंसान।
1: किसी इंसान से कोई शिकायत नहीं, मुझे शिकायत है समाज के उस ढांचे से जो इंसान से उसके इंसानियत छीन लेता है। मतलब के लिए अपने भाई को बेगाना बनाता है, दोस्त को दुश्मन बनाता है। मुझे शिकायत है उस तहजीब से, उस संस्कृति से जहां मुर्दों को पूजा जाता है और जिंदा इंसान को पैरों तले रौंदा जाता है, जहां किसी के दुख दर्द पे तो आंसू बहाना पुस्तली समझा जाता है, चुप के मिलना है कमजोरी समझा जाता है। ऐसे माहौल में मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी मीना, कभी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए मैं दूर जा रहा हूं।

0: में तो।
1: गुरुदत्त की फिल्में अपने समय से बहुत आगे थीं। कामयाब रही हो या नाकाम, उन्होंने शिद्दत भरी कहानियाँ दी, कहानियों से रुलाया, हंसाया।

गुरुदत्त का वास्तविक नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। गुरुदत्त अपने आप में एक संपूर्ण कलाकार बनने की पूरी पात्रता रखते थे। वे विश्व स्तरीय फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। साथ ही में उनकी साहित्यिक रुचि और संगीत की समझ की झलक हमें उनकी सभी फिल्मों में दिखती है।

आइए गुरुदत्त की जिंदगी की कुछ बेमिसाल कहानियाँ आपको सुनवाएं। गुरुदत्त की जिंदगी के बारे में काफी कुछ आप जानते हैं, उनकी बहुत सारी फिल्मों से आप वाकिफ हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ यादगार अनमोल वाक्य। गुरुदत्त और देवानंद की दोस्ती बड़ी गहरी थी। दरअसल दोनों की पहली मुलाकात प्रभात स्टूडियो पुणे में हुई थी। दोनों के कपड़े एक ही जगह पर धुलने और इस्त्री करने को जाते थे। एक बार बड़ा दिलचस्प किस्सा हुआ, वो ये कि गुरुदत्त की शर्ट देवानंद के यहाँ और देवानंद की शर्ट गुरुदत्त के यहाँ चली गई और दोनों ने एक दूसरे की शर्ट भी पहन ली। दोनों की जब स्टूडियो में मुलाकात हुई, अचानक गुरुदत्त की नजर देवानंद की कमीज पर गई। उन्हें पहचानी सी लगी और वे पूछ बैठे, ये कमीज आपने कहाँ से खरीदी? देवानंद थोड़ा सकपकाए पर बोले, ये शर्ट मेरे स्त्री वाले ने किसी की सालगिरह पर पहनने के लिए दी है। लेकिन जनाब, आपने जो कमीज पहनी है वो कहाँ से खरीदी? गुरुदत्त ने शरारती अंदाज में कहा कि ये कमीज उन्होंने कहीं से चुराई है। दोनों को बात समझ में आ गई और जोरदार ठहाका लगाते हुए एक दूसरे के गले मिल गए और फिर उनकी दोस्ती का बंधन हमेशा के लिए मजबूत हो गया। पूना शहर में घूमते हुए एक दिन गुरुदत्त ने देवानंद से कहा, देव, अगर मैं कभी निर्देशक बनूंगा तो तुम मेरे पहले हीरो होगे। देवानंद ने उतनी ही गहनता से जवाब दिया, और अगर मैंने कभी कोई फिल्म प्रोड्यूस की तो तुम मेरे पहले निर्देशक होगे। देवानंद को ये वादा याद रहा। जब नौकेतन फिल्म्स के बैनर तले बाजी फिल्म बनने का फैसला हुआ तो निर्देशन की जिम्मेदारी देवानंद ने गुरुदत्त को सौंपी।

ये था बाजी फिल्म का गीत। बाजी के ही सेट पर उनकी मुलाकात गायिका गीता रॉय से हुई और दोनों के बीच प्रेम का झरना प्रस्फुटित हुआ। उस समय गीता रॉय एक पार्श्व गायिका के रूप में मशहूर हो चुकी थीं। उनके पास एक लंबी गाड़ी हुआ करती थी। वो गुरुदत्त से मिलने उनके माटुंगा वाले फ्लैट पर आया करती थीं। सरल इतनी थीं कि रसोई में वे सब्जी काटने बैठ जाती थीं। अपने घर से वो ये कहकर निकलती थीं कि वो गुरुदत्त की बहन से मिलने जा रही हैं। उस दौरान राज खोसला गुरुदत्त के असिस्टेंट हुआ करते थे। उन्हें गाने का बड़ा शौक था। गुरुदत्त के यहाँ होने वाली बैठकों में राज खोसला और गीता रॉय डुएट गाया करते थे और पूरा दत्त परिवार बैठकर उनके गाने सुनता था। गुरुदत्त की छोटी बहन ललिता लाजमी गुरुदत्त और गीता के प्रेम पत्र एक दूसरे के पास पहुँचाया करती थी और 1953 में गुरुदत्त और गीता रॉय विवाह के बंधन में बंध गए।

0: गुरुदत्त ने अपने फिल्मी करियर में कई नए तकनीकी प्रयोग भी किए। जैसे फिल्मबाजी में उन्होंने दो नए प्रयोग किए। 100 mm के लेंस का क्लोजअप के लिए इस्तेमाल पहली बार किया, करीब 14 बार। इससे पहले कैमरा इतने पास कभी नहीं आया कि उन दिनों कलाकारों को बड़ी असहजता के अनुभव से गुजरना पड़ा। तब से उस स्टाइल का नाम ही गुरुदत्त शॉट पड़ा।
1: बैठ जाओ। जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो जानते हो रास्ता कहाँ जाके खत्म होता है?
2: यही, इसी जगह।
1: वाह वाह, क्या कहने सादर जवाबी।
2: आपको और कुछ पूछना है?
1: हाँ, बहुत कुछ पूछना है। तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है? यहाँ अच्छों अच्छों के छक्के छूट जाते हैं। तमीज से बात करो।

0: आप उसे गिरफ्तार कर लेंगे, जेल में डाल देंगे। मैं उसके लिए तैयार होकर आया हूँ।
1: देखो, मुझे तुमसे कोई जाती दुश्मनी नहीं, ना ही मैंने कभी अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाया है, और ना ही मैं तुम्हारे रिश्ते को बदला लेना चाहता हूँ।
0: दूसरे ले ही चुके हैं, आप भी ले लीजिए।
1: कौन ले रहा है बदले तुमसे?
0: कोई नहीं।
1: सुनो, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलवाया है कि तुम ये नीच काम फौरन छोड़ दो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं तुम्हें कहीं अच्छी जगह नौकरी दिलवा दूंगा।
0: मुझसे कहे कितनी हमदर्दी, समझा?
1: मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है, मुझे तो सिर्फ उस लड़की का ख्याल आता है जो तुम्हारी वजह से इतनी परेशान है। क्या तुम्हारा उसकी तरफ कोई फर्ज नहीं है? तुम नहीं जानते वो तुम्हें कितना प्यार करती है। हाँ।

किसी भी फिल्म में पहली बार गानों का उपयोग कहानी को आगे बढ़ाने के लिए किया गया, वैसी ही फिल्म कागज के फूल हिंदुस्तान में सिनेमा स्कोप में बनी पहली फिल्म थी। दरअसल इस फिल्म के लिए गुरुदत्त कुछ अनोखा, कुछ हटके करना चाहते थे, जो आज तक भारतीय फिल्म के इतिहास में कभी नहीं हुआ।

सुनिएगा क्रम आज का टिप, आज का मंडी भाव, आज का मौसम और कृषक प्रश्न मंच। गैर फिल्मी गीत हम पेश करेंगे रात्रि 8:20 पर। विविध संगीत कार्यक्रम हमारे केंद्र से आप सुनेंगे रात्रि 10:00। ये थे हमारे आज के शेष प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष वंदे मातरम और मैं निशा भारद्वाज आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। श्रोताओं, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है बल्कि ये तो भारत की आत्मा का अमर स्वर है। और अब जबकि इस गीत ने 150 वर्षों का एक लंबा सफर तय कर लिया है तो और भी जरूरी हो जाता है कि हम इसके बारे में अधिक जानें, अधिक समझें। तो इस बारे में हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय से प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा।
1: नमस्कार। इस गीत की महत्व तो सब भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा है। अब सभी जानते हैं ये गीत 1875 7 नवंबर बंकिम चंद्र ने लिखा है। हमारा नेशनल गीत है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र एक चिंताविद थे और एक नवेलिस्ट थे। ड्यूरिंग द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ अक्षय नवमी विच वॉज ऑन 7 नवंबर 1875 ये गीत बंकिम चंद्र ने लिखा। उसके बाद वंदे मातरम फर्स्ट अपीयर्ड इन द लिटरेरी मैगजीन जो बंकिम चंद्र ने ही संपादना किया था बंगा दर्शन पर पब्लिश हुआ था 1818। ये भी आप जानते हैं कि ऋषि अरविंदो ने गीत का अंग्रेजी अनुवाद किया है जिसका नाम था मदर आई गो टू दी। कवि गुरु रविंद्रनाथ 1937 में इसका सुरारोप किया। उसके पहले पहला सुर दिया जदु भट्टो ने। सुर मीन्स इस गीत का धुन बनाया जदु भट्टो। उसके बाद हम जानते हैं कि 1896 पर जब कलकत्ता में नेशनल कांग्रेस हुआ पहली बार पब्लिक मंच पर ये गीत गाया था और उसी दिन से या उसी टाइम से गीत का पहला लाइन पॉलिटिकल स्लोगन बन गया। स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में एक नारा बन गया ये गीत। बंकिम चंद्र केवल नवलिस्ट नहीं थे, उन्होंने एक इतिहास चेतना की प्रवक्ता थे जिस चेतना जाति संगठन के लिए एक बड़ी बात है। बंकिम चंद्र वॉज ए नेशन बिल्डर नॉट ओनली ए नॉवेलिस्ट। प्रख्यात चिंताविद रमेश चंद्र दत्त ने कहा द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th century। बंकिम चंद्र को ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th century कहा गया। बंकिम ने जीवन के हर मोड़ पर हर सच की संधान की। और एक बात है कि बंकिम चंद्र इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में किया था जब बंकिम चंद्र मुर्शिदाबाद में कलेक्टर था। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मुर्शिदाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ। बंकिम के अंदर देश के लिए प्यार था, उनके अंदर तीव्र आत्माभिमान भी था। इस अभिमान की एक्सप्लोरेशन हुआ इस गीत में। बंकिम मैंने पहले ही कहा कि एक नवेलिस्ट नहीं थे, एक ऋषि भी थे। He was the pioneer of स्वदेश पूजा। On 1876, वेस्ट बंगाल की हुगली जिला में गोपाल चंद्र धर नामक एक व्यक्ति वंदे मातरम गीत देश मल्लार धुन में गाया था। और मैंने बोला कि 1871 में गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में हुआ। वंदे मातरम हमारा गर्व है, स्वदेश को आगे बढ़ाने के लिए ये गीत हर वक्त हमारा आदर्श होगा। रविंद्रनाथ टैगर ने उनकी घरे बायरे नामक जो नॉवेल है, उपन्यास है, उसमें एक कैरेक्टर है निखिलेश। निखिलेश ने बोला देश उसी को है जो देश को प्यार करते हैं। जन्म लेने से देश हमारा नहीं हो जाता। बंकिम चंद्र के अंदर में देश के लिए एक अभिमान थे। उस अभिमान से ये गीत 1875 आज के दिन लिखा गया था। उसके बाद जब आनंदमठ उपन्यास पब्लिश हुआ 1882 में तब उसका गीत का प्रसार हुआ। उसके बाद ये गीत हमारा नेशनल गीत हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि आज के दिन देशभक्ति, देश के लिए प्रेम, देश के लिए स्वाभिमान होना चाहिए। और अगर हम इस बात को

0: में रखे तो बंकिम के प्रति वही होगा सच्चा श्रद्धा। सबको मेरा नमस्कार, बंकिम चंद्र जी के लिए मेरा प्रणाम।
1: इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मनवेंद्र नाथ साहा जी। और इसी के साथ मैं निशा भारद्वाज लेती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
5: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संदली,
6: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
7: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
8: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
7: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
9: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
10: मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदर्शन।
11: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
12: एफएम बैंड पर आप हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 10:10 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए ममता चंद्राकर का गाया ये लोकगीत।

मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

सुनील सोनी और ममता चंद्राकर के गाय इस ददरिया के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत अब संपन्न होता है। 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 10:30 हुए हैं, पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आपका हार्दिक स्वागत है। आपके पत्रों, ईमेल्स और पसंदीदा गीतों को लेकर हाजिर हूं मैं, आपकी रेडियो मित्र श्रद्धा। दोस्तों, कार्यक्रम का आगाज करते हैं और आपको सुनवाते हैं दाग फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है तलत महमूद ने। शैलेंद्र की रचना है और तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने। इस गीत के लिए हमें ईमेल किया नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, आराध्या साहू, माँ महामाया चौक मेघापारा से रामकुशल पटेल, संतोषी, दीपांशु, दिव्या, दीपांजलि, दीपक और टेकलाल पटेल, जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्वनी और विपुल कांबड़े, कोल सिटी बरकाना से अफजाल ताज, साहिन सुल्ताना, सोनू, तस्मीन, कमल और मोहम्मद अफजल मलिक। इसी गीत को सुनना चाहा नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नहाकर, निर्मला, विशाल, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान और आशीष मोहकरे, धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंगेल, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंगेल, कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस, अनिल कुमार, अजीत, आयुष और नंदिनी जंगेल, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण साहू और चंपा साहू, बागबारा भद्रसी से पन्नालाल सेन, खुशबू, तारा और कौशल सेन। तो आइए सुनते हैं सबकी फरमाइश पर ये गीत।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagad, यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मुकेश के स्वर में अभी आप सुन रहे थे सफर फिल्म का ये गीत, जिसे संगीत से सजाया था कल्याण जी आनंद जी ने, बोल थे इंदी वर्गे। पसंदकर्ता वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से, वंदना मराठा, गणेश, कार्तिक, परी, संजना, मालती चौधरी, स्वाति, प्रयाग चौधरी और ललिता नारायण खर्चे। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से हमारे श्रोता हैं पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र, रौनक सेन। पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग, पूनाराम, कृष्णा देवांगन। नानघाट कातल बोर्ड से हैं भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री टिकेश्वर, रितु राजपूत। संबलपुर कांकेर से हमारे श्रोता फागुराम यादव, ज्योति, ओजस्वी यादव। खमरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। अड़ार नानघाट से हैं माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी वर्मा। पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी, भानुप्रिया, योगिता, नितिन और वंशिका दिवाकर।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
0: कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अगला गीत आप सुनेंगे दिल तेरा दीवाना फिल्म से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन। फरमाइशकर्ता गौशाला पारा रायगढ़ से विनोद कुमार गुप्ता, रीना, नेहा, ईशु, अंशु गुप्ता। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, चेतिक मीका बीरक। लक्ष्मी गोदाम कैदी मुड़ा रायगढ़ से हैं पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा, प्रियंका, पूजा, लीलू, रितु और ऋषभ सिंह। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। सांगी तराई से शिव कुमारी, राम दुलारी, पंकज, साक्षी, दीपेश और संजय श्रीवास।

0: petite chanson.
1: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
3: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती

0: हर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
1: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
3: दोस्तों, यदि आप भी अपनी फरमाइश पर गाने सुनना चाहते हैं तो हमें इस पते पर पत्र लिख भेजिए। हमारा पता है कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निर्देशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 21, आकाशवाणी रायगढ़, पिन नंबर है 496001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए सब्जेक्ट में लिखिए कार्यक्रम का नाम, आपकी फरमाइश, गाने के बोल, और हमें shrotarayagad@gmail.com पर मेल करिए। हमें आपके पत्रों और ईमेल्स का इंतजार रहेगा।
4: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
5: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
0: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
5: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
0: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
5: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
0: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत आप सुनेंगे गोरा और काला फिल्म से। आवाजें हैं मुकेश और लता मंगेशकर की, आनंद बख्शी के बोल हैं और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। पसंदकर्ता इंद्रानगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम, आसिफ नईम राजा, लाल टंकी चौक रायगढ़ से चेतन दास, शीतल, सुशीला साहित्या, मनोज, मुकेश और अंकित साहित्या, जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, सबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज, सिराजपुर गणेशपुर से हिना कैसर, फिरोज आलम, नाज प्रवीण, बेमित्रा से सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत, वीरेंद्र ब्रजकांत सारथी, मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी की रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से विविध भारती कार्यक्रम।

रंग तरंग कार्यक्रम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं। मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं बेगम अख्तर की गाई इस गजल से।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना ज़रूरी रहता है।

यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

वर्षा ऋतु एल्बम से आप सुन रहे थे तलत महमूद का गाया ये गीत। रचना थी मुरली मनोहर स्वरूप की, संगीत भी मुरली मनोहर स्वरूप का था। विविध भारती से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। लीजिए पेश है तलत अजीज की आवाज में ये गजल। कलाम है कतील शिफाई का, मौसीकी तलत अजीज की।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: जागीर को क्यों देखते हो और मेरे पांव की जंजीर को क्यों देखते हो। तुम तो कहते थे मेरी शक्ल से नफरत है तुम्हें, मुझसे छुपकर मेरी तस्वीर को क्यों देखते हो।
1: छुरी से तीर से तलवार से क्या होने वाला है, झुकी तो हया बन गई, नजर तिरछी की तो अदा बन गई, नजर फेर ली तो कजा बन गई।

0: शकुन की नजर झुकाते नजर से देखा।
1: क्या बात है,

प्यार भी झूठा, तुम्हारा प्यार भी झूठा, तुम्हारी जात भी झूठी, तुम्हारे होंठ भी झूठे, तुम्हारी बात भी झूठी, तुम्हारा हर इरादा, हर तमन्ना, हर गिला झूठा, तुम्हारे फूल झूठे, बाग झूठा, आशियां झूठा, वफा झूठी, जफा झूठी, सितम झूठा, करम झूठा, कसम है सर से लेकर पांव तक तू ए सनम झूठा, तुम्हारा नाम झूठा, तुम्हारा काम झूठा, तुम्हारा मैं कदा झूठा, तुम्हारा जाम भी झूठा, तुम्हारी रात झूठी, चांद झूठा, आसमां झूठा, तुम्हारे अश्क गम झूठे, तुम्हारा जख्म जहां झूठा, तुमसे बढ़ के कोई बेमुरव्वत नहीं, प्यार करने की अब हमको फुर्सत नहीं, मैं तुम्हें याद करने की जिद छोड़ दूँ।

और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक के प्रारूप को दी मंजूरी। कोल लेवी घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू ने कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल को हिरासत में लिया। और महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की पात्र हितग्राही महिलाओं के ई केवाईसी पंजीयन की तिथि 30 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। अब समाचार विस्तार से। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक को लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में व्यापार और उद्योग स्थापित करने की प्रक्रियाओं को अधिक सरल, पारदर्शी, डिजिटल और समयबद्ध बनाना है। इस वर्ष दिसंबर में प्रस्तावित नगरीय निकायों के आम और उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बैठक बुलाई गई। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने सचिव

स्तरीय इस बैठक में अधिकारियों को समय सीमा में सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि प्रदेश के 15 नगरीय निकायों जिनमें 4 नगर पालिक निगम, 5 नगर पालिका परिषद तथा 6 नगर पंचायत शामिल है, इनका कार्यकाल इस वर्ष दिसंबर में समाप्त हो रहा है। इसके साथ ही 2 नवगठित नगर पंचायतों में भी आम निर्वाचन की तैयारियां की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाने का फैसला किया है। सभी जिलों के आरटीओ तथा डीटीओ को अपने क्षेत्र में चार्जिंग स्टेशनों के लिए जगह चिन्हित करने और एनओसी की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में अलग अलग कंपनियों के अलग अलग ऐप हैं जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी होती है। सरकार अब राज्य स्तर पर एकीकृत प्लेटफॉर्म ऐप बनाएगी। वहीं भारत सरकार भी यूनिवर्सल ईवी चार्जिंग ऐप ला रही है। कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल को आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू ने करीब 500 करोड़ रुपए के कोल लेवी घोटाला मामले में हिरासत में लिया है। राम गोपाल अग्रवाल के खिलाफ इस मामले में विशेष अदालत ने स्थायी वारंट जारी किया था। उनकी तलाश में कई जगह छापे भी मारे गए थे। कल दोपहर राम गोपाल अग्रवाल स्वयं ईओडब्ल्यू मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्हें हिरासत में ले लिया गया। महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की पात्र हितग्राही महिलाओं के ई केवाईसी के पंजीयन की तिथि 30 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। महिला और बाल विकास विभाग ने छूटी हुई हितग्राही महिलाओं से निर्धारित समय में ई केवाईसी कराने की अपील की है। राजनांदगांव के वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र व्यास का कल निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। श्री व्यास प्रेस क्लब राजनांदगांव के संरक्षक थे। इसके अलावा श्री व्यास ने लंबे समय तक राजनांदगांव जिले के आकाशवाणी संवाददाता के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। प्रदेश में अब तक सामान्य से 17% कम वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिर सकती है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक पुलिस थाना रैंकिंग में बस्तर स्थित बोधघाट थाना को राज्य का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष देश भर के पुलिस थानों का मूल्यांकन विभिन्न मानकों पर किया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक के प्रारूप को दी मंजूरी। कोल लेवी घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू ने कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल को हिरासत में लिया और महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की पात्र हितग्राही महिलाओं के ई केवाईसी पंजीयन की तिथि 30 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

ये आकाशवाणी रायपुर है। अगला प्रसारण कुछ ही पलों में होगा। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12 बजे हैं, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कीजिए स्वीकार। नमस्कार, विमलेश का उमंग कार्यक्रम में
3: और अजीत का भी जोहार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलौदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: तन और मन
4: स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण में समुद्री सहयोग को रेखांकित किया।
5: भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारी

0: हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं।
1: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत के लिए यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने पर और सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना प्रस्तुत की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी के ऐतिहासिक परिवर्तन का उल्लेख किया, जो समानांतर यात्राओं से एकीकृत भविष्य के लिए तैयार साझेदारी में परिवर्तित हुआ है। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक आज महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू होगी। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें परिवहन क्षेत्र, बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ये बैठक भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता की थी, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के तहत आयोजित की जा रही है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अंत्योदय अन्न योजना परिवारों से आने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के शुल्क को पूरी तरह से माफ करने की मंजूरी दी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने और पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एबीवीपी के सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के सत्र में 0.7% की बढ़त देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स लगभग 561 अंक बढ़कर 77,065 पर और निफ्टी 179 अंक की बढ़ोतरी के साथ 24,061 पर था। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मौसम फिल्म के गाने से। लता मंगेशकर और भूपिंदर की आवाजें हैं, गुलजार के बोल, मदन मोहन का संगीत।

0: सुनो आरती जी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आपकी कसम इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर यह कार्यक्रम यादों की महफिल।

खिलौना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और आज है जाने माने अभिनेता संजीव कुमार का जन्मदिन। अब आपको सुनवा रहे हैं दस्तक फिल्म का ये गाना, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल मदन मोहन का संगीत, आवाज मदन मोहन की।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए अब सुनते हैं महेंद्र कपूर, आशा भोसले, सुषमा श्रेष्ठ और साथियों की आवाजों में ये गाना फिल्म पति पत्नी और वो।

कह दो कि आ रहे हैं साहब नहा रहे हैं।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: विधाता फिल्म का गाना आप सुन रहे थे सुरेश वाटकर, अनवर और साथियों की आवाजों में। रचना थी आनंद बख्शी की, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में ये था हसरत जयपुरी का लिखा गीत। संगीत शंकर जयकिशन का था और फिल्म थी जिंदगी। गृह प्रवेश फिल्म का गाना सुलक्षणा पंडित की आवाज, गुलजार के बोल कनू रॉय का संगीत है।

0: हाँ? क्यों? क्या किया है मैंने?
1: क्या किया? पास से शुरू करना था ना? और तुमने कहाँ से किया? नी से?
0: अच्छा बाबा, लो पास से शुरू करती हूँ।

गृह प्रवेश फिल्म का गाना आप सुन रहे थे भूपिंदर और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में। शब्दकार थे गुलजार, संगीतकार कनु रॉय। इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। तो भाई, जो लोग, जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज पर हैं उपस्थित, तो उन्हें तो आज की

भारत की जानकारी हो ही गई होगी, लेकिन जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उनके लिए हम बता देते हैं कि इस कार्यक्रम में हम एक इबारत लिखते हैं और उसमें जो शब्द होते हैं उन शब्दों से गीत हम श्रोताओं से कहते हैं ढूंढने के लिए, और कुछ पहेलियां होती हैं, गाने होते हैं, कुछ गाने श्रोताओं की पसंद की भी शामिल कर लिए जाते हैं। तो हम आज की इबारत ज़रा आपको पढ़कर सुना देते हैं। आंखें मन की खूबसूरत इबारत है, इनमें नींद और ख्वाबों का अनंत आसमान भी, यहीं सपने जन्म लेते हैं और उम्मीदों के रंग आकार पाते हैं। कभी ये खामोश रहकर भी दिल की हर बात कह देती हैं आंखें, तो कभी एक नज़र ही पूरी कहानी लिख देती है। आंखों में इश्क का पहला एहसास प्यार की रोशनी ठहरती है, और कभी कोई चुपके से दिल भी चुरा लेता है। आंखों की चमक में हंसी खिलती है, खुशी झलकती है, और बिछड़ने का दर्द आंसुओं में ढल जाता है। कुछ आंखें ऐसी होती हैं जिनमें यादों की महकती खुशबू होती है। आंखें सचमुच मन का आईना है, इनमें नींद भी है, ख्वाब भी, सपने भी, बातें भी, हंसी भी, शब्द भी, खामोशियां भी, और सबसे बढ़कर इनमें वो जादू है जो बिना कुछ कहे किसी का दिल चुरा लेने की ताकत रखता है। किसी की आंखें देख चौदहवीं का चांद याद आता है, और अभी ये भी धुन सुनी थी आपने इसी गाने की। तो बताइए आपकी आंखों में पहला ख्वाब कौन सा चमका था? रात भर किसी के लिए जाकर उसकी फिक्र कब की, किस सन में, किस साल, कौन सा ऐसा लम्हा था किसी के लिए आप जागते रहे? अपने बच्चे के लिए सभी माँ जागती है, सभी पिता जागते हैं। कभी जब बच्चा रोता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, या यूं ही बच्चे को थपकी देते हुए, ऐसे बहुत सारे लम्हात होते हैं जब आप जागते हैं किसी के लिए। कभी आपके नयन किसी से डर जाते हैं, क्या आप किसी की आँख की रोशनी बनना चाहते हैं? तो हमें ज़रा बताइए, फिलहाल बताइए कि वो कौन से शब्द हैं जिनसे आप गाने चुन सकते हैं। तो गानों की फहरिस्त आप ज़रूर बताइए, क्योंकि हो सकता है आपके गाने और हमारे गाने एक हो जाएं, तो हम वही गाना सुनवाएंगे। और दोस्तों, आंखों में नींद होती है, ख्वाब होते हैं, कई बार जब हम जागरण करते हैं तो कुछ सोचते हैं, कुछ विचार करते हैं, कुछ लिख डालते हैं, ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ है? आंखों से दुनिया देखी जाती है, हम इंसान को परखने का काम भी आंखों से ही करते हैं, और आंखों से पढ़ाई लिखाई करके अपनी एक विचारधारा गढ़ते हैं। आपने क्या किया है बताइए, आप अपने अनुभव साझा करते रहिए। और हाँ, अगर जब इस संसार से विदा के बाद अपनी आँखें अगर किसी को दान कर दें तो किसी की आँख की रोशनी बन सकती है, तो आपने ऐसा कुछ सोचा है तो वो भी बताइएगा विविध भारती के फेसबुक पेज पर। चलिए अब शुरू करते हैं सिलसिला कार्यक्रम का। सबसे पहले प्यासा फिल्म का गाना हम सुनवा रहे हैं, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल, सचिन देवबर्मन का संगीत। बताइए कौन है हीरो हीरोइन?

प्यासा फिल्म का गाना था, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजें, साहिर लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत था। हमारा सवाल ये था कि कौन है हीरो हीरोइन। गुरुदत्त और माला सिन्हा, बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दे दिया। और आज गुरुदत्त का जन्मदिन है, संजीव कुमार का भी जन्मदिन है। संजीव कुमार के बहुत सारे गाने हमने यादों के महफिल कार्यक्रम में सुनाए हैं, लेकिन गुरुदत्त के नाम ये गाना था। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है कि आज उन्हें हमें याद करना चाहिए, लेकिन आज जो गाने हमने चुने हैं वो आँखों से जुड़े, लेकिन आज की इबारत में जो शब्द हैं उन शब्दों से आपको गाने चुनने हैं, तो ज़रा गाने चुनकर हमें बताते चलिएगा। फिलहाल हम बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी की आँखों को पढ़ना भी एक कला है, क्योंकि शब्द भले ही धोखा दे जाएं पर आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। खुशी से भरी आंखों में एक चमक सी होती है, उदास आंखों में नमी कुछ भारी पर होता है, मानो बिना बहे आंसुओं का बोझ उठा रही हो। कभी ये इशारों में बात करती हैं, लेकिन रहस्यमयी होती हैं वे आंखें जो शून्य में खोई रहती हैं। आप अपने अनुभव साझा कीजिए कि कब कैसे किसी की आंखों की परिभाषा आपने समझ ली और कब कैसे किसी की आंखों के नूर बन गए। और ये कहा जाता है ना कि अरे वो तो मेरी आंखों का तारा है, ख़ास तौर से अपनी संतान के लिए। तो आप बताइए, आपकी आंखों का तारा कौन है, आपका बेटा या बेटी या दोनों? और आप किसकी आंखों के तारा हैं, माता पिता, भाई बहन, दोस्त मित्र? बताते चलिए। फिलहाल सीआईडी फिल्म

सर अख्तर के बोलते हमने पूछा भी था आपसे सवाल, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब दिया है, कुछ श्रोताओं ने सही लिखा है। संगीतकार थे ओपी नैयर, फिल्म सीआईडी और देव आनंद शकीला, हमने ये भी आपसे सवाल पूछा था। एक श्रोता ने लिखा है कि घर से किसी प्रियजन का बिछड़ना या अचानक गुमशुदा हो जाना रात भर जागने को विवश कर देता है, हर एक पल उसकी चिंता बनी रहती है, रातों की नींद और दिन का चैन छिन जाता है, मन हर पल बेचैन रहता है। एक श्रोता ने लिखा है कि ये वाकई बहुत ही खूबसूरत आज की इबारत है, आंखें दिल का आईना होती हैं, जो बात हम जबान से नहीं कह पाते वो बातें आंखें पलक झपकते ही कह देती हैं। हिंदी फिल्म जगत में कुछ ऐसे बेमिसाल अदाकार हो चुके हैं जिनकी आंखें बोलती हैं, चाहे वो खुशी के आंसू हो, गहरा दर्द हो या फिर बिना कुछ कहे जताया गया प्यार हो। दिलीप साहब, गुरुदत्त जी, अमित जी, मधुबाला, मीना कुमारी ऐसे कलाकार थे जो उपरोक्त कही गई भावनाएं बिना कुछ बोले ही अपने आंखों से बयां कर देते हैं। वैसे आम जिंदगी में भी लोगों की, कुछ लोगों की आंखें बोलती हैं, कुछ लोग जो झूठ बोलने के आदि होते हैं उनकी आंखें उनकी बातें छुपा लेती हैं। तो अपनी आंखों को पारदर्शी बनाए रखिए। फिलहाल सुनिए अनारकली फिल्म का ये गाना। अब जरा बताइए कि इसे लिखा किसने है, यानी गीतकार का नाम आपको बताना है और संगीतकार का नाम।

हेमंत कुमार, लता मंगेशकर की आवाज़ें थीं, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे और फिल्म थी अनारकली। और हमने आपसे पूछा था कि आप बेटी और बेटों में से कौन आपकी आंखों का तारा है, तो कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि बेटों से ज़्यादा बेटी आंखों का तारा होती हैं। क्या बात है भाई। और हमने आपसे ये भी अब पूछा है कि किसके लिए आप रात भर जागे, बताइए

आपके लिए कोई रात भर जागता है। कई बार ऐसा होता है कि हम आपकी संतान कहीं बाहर है, पढ़ाई के लिए गई है, नौकरी पेशे के लिए, तो आपकी आंखों में नींद नहीं है, चिंता में। कुछ जब ख़ास तौर से ऐसे मौसम बदलते हैं, बारिश तेज़ होती है, तो माता पिता चिंता में पड़ जाते हैं कि अरे इतनी बरसात हो रही, पता नहीं है हमारी संतान किस हाल में होगी। अब तो फ़ोन एक माध्यम है जब आप फ़ोन करके हालचाल पूछ सकते हैं, लेकिन कई बार रात को नींद उछट जाती है, आप चिंता में खो जाते हैं। कई बार बिन बात भी, बिना किसी कारण आप जागने लगते हैं। तो ऐसी जागरण वाली बातें आप बताइए, किन बातों पर आपकी नींद टूट जाती है और आप जागरण करते हैं, जागते हैं। एक श्रोता ने लिखा है, दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई, नजरें मिली क्या किसी से, हालात बदल बदल गई। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आंखें हर आत्मा की खिड़की होती हैं, जो हर नज़रिए से एक कहानी बयां करती हैं। दुख में ये आंखें रिसती हैं और गुस्से में सिकुड़ जाती हैं, लेकिन हमें ये झूठ भी बोल सकती हैं, क्योंकि ये धोखेबाज भी होती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सबसे खूबसूरत देन है आँखें इंसान के लिए, वो आँखें जिससे हम इस दुनिया को देख पा रहे हैं। इन आँखों की सबसे अच्छी खूबसूरती है कि ये अपनी खुशी दुख सबसे पहले व्यक्त करती हैं। इंसान शब्दों से तो बाद में बताता है, पर उससे पहले ये आंखें बयां कर देती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी फिल्मी दुनिया में दो अभिनेताओं के नाम लेना चाहूंगा, दिलीप कुमार प्राण। अभिनय में ये हाथों या शरीर से जितना अभिनय नहीं करते थे, उतना सिर्फ आंखों से अभिनय करते थे। कई बार निर्देशक और कैमरामैन सिर्फ इनके चेहरे का क्लोजअप लेते थे और पूरा सीन सिर्फ इनकी आंखें बयां कर देती थीं। चलिए अब फिर एक जागने वाला गाना है, तो फिर मेरा सवाल यही है कि बताइए आप किसके लिए कभी जागे, आपके लिए कौन जागरण किया रात भर। फिल्म बहुरानी, गीतकार का नाम बूझिए और संगीतकार का नाम। लता मंगेशकर की आवाज़।

बहुरानी फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल थे, सी रामचंद्र का संगीत। हमारे श्रोताओं ने ये सही जवाब हमें दिया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आंख की दुनिया संवेदना की दुनिया है, सुंदर मधुर जीवंत संवेदना जो हमारे मन प्राण में बसती है, अक्सर वो आंखों के रास्ते बह निकलती है, सुख या दुख आंखें बरबस छलक जाती हैं, ये संवेदना ही लय बनकर हमारी आत्मा तक पहुंचती है और गीत बनकर मुखरित होती है। तभी तो शैलेंद्र जी लिखते हैं, जाने कैसे सपनों में खो गई आँखियाँ और गुलजार तो दो कदम आगे बढ़कर आँखों में महकती खुशबू बसा लेते हैं। रचनात्मक लोग जिंदगी में डूबकर आँखों से भावनाओं का सच बयां करते हैं। आँखें दिल का आईना है और हमारी सच्ची साथी भी, सुख या दुख कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती, हमारे साथ ही हंसती हैं। और हमने आपसे पूछा था जब बहुरानी फिल्म का गाना सुनवाया कि आप किसके लिए जागे, तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी माँ का ब्रेन हैमरेज हुआ था और हॉस्पिटल गई थी, तो हम पूरी रात जागे। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के जो शब्द हैं, आँखें सपने रोशनी चमक आईना जादू चांद नयन हो सकते हैं। भाई गाने भी तो सुझाते चलिए कौन से गाने हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि ये आँखें हैं जो भरी सभा में भी बहुत सारी हरकतें कर जाती हैं, बोलती हैं, नाराज़ होती हैं, रीझती हैं, खिन्न होती हैं और शर्माती भी हैं, ख़ास तौर से जब आप इश्क में होते हैं, प्यार में होते हैं, तो आँखों आँखों में बातें हो जाती हैं और दो लोगों के बीच जो बातें होती हैं तीसरे को पता भी नहीं चलती हैं। लेकिन हाँ, जब इश्क मोहब्बत में आ पड़ते हैं तो नींद भी गायब हो जाती है। तो बताइए कि क्या कभी आपकी नींद गायब हुई है किसी के लिए? सुनिए ये गाना और हमें बताइए कि इसमें कौन है हीरो हीरोइन। साथ में ये भी बताइए कि कब किसके लिए आपकी नींद टूटी और आपके लिए किसकी नींद टूटी, और नींद वाले कौन से गाने आपके जहन में इस समय कौंध रहे हैं।

पोस्ट बॉक्स नंबर 999 फिल्म का गाना हेमंत कुमार लता मंगेशकर की आवाजें थी और हमने पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दिया सुनील दत्त शकीला और बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आ रही हैं और हमें ये बात बड़ी अच्छी लग रही है कि आप हमारे साथ साथ चल रहे हैं, मतलब हम जो सवाल पूछ रहे हैं त्वरित जवाब आप दे रहे हैं साथ साथ, ये नहीं कि पहले से टिप्पणी पोस्ट कर दी है, तो ये तब हमें और अच्छा लगता है कि जब आप लगातार शामिल रहते हैं इस कार्यक्रम में। अब एक श्रोता ने लिखा है कि आँखों की बातें यादों की बात चल रही है, जब मैं आर्मी की भर्ती दी थी तब मेरा फाइनल रिजल्ट आया था, मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था, उस दिन रात भर मुझे बेचैनी थी, सुबह 6 बजे रिजल्ट देखा तो उस दिन खूब रोया था और आंसू आंखों में होते हैं। तो हमने आपसे पूछा था कि कब आप जागे थे, कौन सा वो दिन था किसी के लिए या कोई लम्हा, तो इसके जवाब में हमारे श्रोता लिख रहे हैं और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे लिए रात रात को मेरी माँ जागती थी जब पढ़ाई कर रहे थे तब भी और जब बीमार होते थे तब भी। एक श्रोता ने लिखा है कि गिटार के साथ बढ़िया ग्रुप वायलिन बहुरानी फिल्म में सजन तुम सो जाओ। एक श्रोता ने लिखा है कि पहले मम्मी हम सभी भाई बहनों के लिए जागती थी और अब हमें पता चला कि मम्मी पापा हम सभी के साथ कितना किया, जब मेरा बेटा हैदराबाद गया तब आंखों में आंसू आ गए। एक श्रोता ने लिखा है कि हम तो नई बहू आई तो बहुत देर तक जागते रहे, गर्मियों के दिन छोटी रातें, ऐसे में पत्नी हमारी बहन के साथ गप्पे मार रही थी, इसके बाद माँ के पैर दबाने लगी, किससे कहानी में रात 2 बज गए। गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन संस्कार ऐसे कि हमारे घरों में है कि पाँव के पायल की आवाज़ भी न मालूम पड़े। खैर एक श्रोता ने लिखा है कि एक रात मेरी तबीयत खराब थी, उल्टियां हो रही थी, तब मेरी बेटी सारी रात मेरे पास बैठकर जागती रही। एक श्रोता ने लिखा है कि हम बच्चों के लिए तो कई बार जगे रात भर और कई बार तो बच्चे पढ़ने जाते थे तो रात भर जागकर उनके ले जाने के लिए खाना बनाया ताकि वो ट्रेन और वहां जाकर घर का खाना खा सकें, और कभी किसी के इंतज़ार में भी जगे और इसलिए भी सुबह जल्दी ट्रेन है तो कहीं छूट न जाए, बेटी परेशान न हो जाए। जब कोई आने वाला होता था तो पूरी पूरी रात इंतज़ार किया जाता था कि सुबह 6 बजे या 4 बजे ट्रेन आएगी, नींद नहीं आती थी, ऐसा भी होता था। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी 12 गीतों की लिखी इबारत में से चौथे नंबर का लिखा हुआ गीत शामिल हो गया, क्या बात है। ऐसे बहुत सारे श्रोताओं के गाने शामिल हो रहे हैं और अब जो गाना हम सुनवाने जा रहे हैं इसके लिए भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आँखों की महकती खुशबू गुलजार साहब महसूस करते हैं, तो सुनिए ये गाना और ज़रा बताइए कौन है इसमें हीरो हीरोइन। फिल्म घर, संगीतकार राहुल देवर्मन, गीतकार गुलजार, किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ें, हीरो हीरोइन का नाम बूझिए।

घर फिल्म का गाना था, हमने आपसे सवाल पूछा था कौन है हीरो हीरोइन, सभी श्रोताओं ने जवाब दिया है सही, रेखा और विनोद मेहरा। एक श्रोता ने लिखा है कि ये तुम्हारी झील सी गहरी आंखें बिना कुछ कहे दिल की हर बात कह जाती हैं, खो जाते हैं हम इन नशीली आंखों में ऐसे जैसे कोई कश्ती समंदर में उतर जाती है। किन आंखों से आपको डर लगता है ये ज़रा बताइएगा, माँ पिता टीचर पत्नी पति या किसी दोस्त से, मतलब आंखें देखकर डर जाते हैं। माँ की आंखों में अगर क्रोध दिखाई दे जाए तो बस सब काम बड़ी जल्दी हो जाता है ना, आप सबके साथ भी होता होगा, जबकि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाली ममता निछावर करने वाली माँ ही होती है, तब भी माँ की आंखों में अगर ज़रा भी नाराज़गी दिख जाए तो बस सब कुछ मामला जैसे उलट जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत से हमें कविवर बिहारी याद आ रहे हैं जिन्होंने नयन के बारे में लिखा है, कहत नटत रीझत खीझत मन ही मन लजियात भरे भौन में करत है नयनन ही सो बात, और ये आंखें दिल की जुबा है, और भी कुछ गीत इन्होंने लिखे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज अभिनेता निर्माता निर्देशक गुरुदत्त और हरफन मौला अदाकार अभिनेता संजीव कुमार दोनों का जन्मदिन है, उनको याद करके आज का सुरीला सफ़र कैसे पूरा करें। भाई उन्हें याद किया, गुरुदत्त को हमने इस कार्यक्रम में याद किया, संजीव कुमार जी को यादों की महफिल कार्यक्रम में, फिर भी इबारत की ओर आँखें नज़रअंदाज नहीं कर सकती। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हज़ारों हैं, इन आँखों के इशारे पर कई शायरों ने गीत लिखे हैं और बहुत कुछ इन्होंने लिखा है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, ये आँखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। दरअसल आँखें ऐसी हैं कि आँखों पर अनगिनत गीत हैं, अनगिनत गाने हैं, और हमारे श्रोता भी लिख रहे हैं अनगिनत गाने। लेकिन अब हम नयन की ओर चलते हैं, देखते हैं कि नयन में डर कैसा होता है। आप अपने अनुभव बताइएगा कि किन नयनों से आपको डर लगता है।

कोहरा फिल्म का ये गाना था, हेमंत कुमार की आवाज़ थी। कैफी आज़मी के बोल थे, हेमंत कुमार का ही संगीत था और गीतकार का नाम हमने पूछा था, सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आँखों की बात चली है तो मैंने बहुत सी पुराने फिल्में देखी हैं और हर फिल्म में अभिनेत्री अधिकतर आँखों से ही एक्टिंग किया करती थी। एक श्रोता ने लिखा है कि हेमंत कुमार की मखमली आवाज़ थी, कैफी आज़मी के गहरे बोल रहस्यमय संगीत का एक बेहतरीन मिश्रण है और ये सिर्फ फिल्मी गाना नहीं बल्कि संगीत और शायरी का एक ऐसा दस्तावेज है जो हर पीढ़ी को मंत्रमुग्ध कर देता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो आपका ये आंखों पर लिखा गया लेख सबकी आंखों को परखने का काम भी करेगा। इनमें किसी के सपने, किसी की खुशियां, किसी का अपनापन तो किसी की नाराज़गी और भी बहुत कुछ नज़र आने वाला है। पर क्या आप किसी के दर्द को पढ़ पाएंगी? वैसे तो आंखें बहुत कुछ बयां करती हैं पर छुपाती भी बहुत कुछ हैं और कभी कभी खुशी में भी छलक जाती हैं आंखें। इन्हीं आंखों से आंसू और कभी आंसू बहाकर दिल को हल्का भी कर लेते हैं इन आंखों में निकलने वाले आंसू। बात आंसू की चली है तो चलिए अब एक ऐसा ही गाना सुनते हैं। जरा आप बूझिए फिल्म का नाम और गीतकार का नाम। किन मौकों पर आपकी आंखों में आंसू आए? हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा लम्हा जरूर आता है जब इंसान की आंखों में आंसू होते हैं, कभी खुशी का, कभी दुख का।

हंसते जख्म फिल्म का गाना था। हमने पूछा था फिल्म का नाम, सभी ने बताया श्रोताओं ने सही जवाब, और गीतकार का नाम पूछा था कैफी आजमी, वो भी सही बताया, संगीतकार मदन मोहन, आवाज़ लता मंगेशकर की, ये तो आप सभी जानते ही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक झलक दूर से मेरी आँखों ने देखी और मैंने ठान ली कि मेरी जीवन संगिनी तो यही होगी, 100% हमारी अरेंज मैरिज थी और रिश्ते होने पर सगाई में 18 महीने का अंतर था, मतलब आंखों से इन्होंने इनका रिश्ता तय हुआ। और एक श्रोता ने लिखा है कि बालपन में मुझे भूरी आंखों से डर लगता था, वो डरावने लगते थे लोग, माँ पापा ने समझाया तो डर गया। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी मम्मी ने बचपन में हम भाई बहनों को डांटा या मारा नहीं, हम लोग तो बस उनकी आँखों से डरते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे अपनी मम्मी की आँखों से डर लगता था, ज़रा सा गुस्से में देखती थी और मैं एकदम रोने लगती थी। एक श्रोता की टिप्पणी है, मेरी एक महिला मित्र है जिनकी आँखों से मैं डरता हूँ। एक श्रोता की टिप्पणी है, दोस्तों से बिल्कुल नहीं, एक अपने फिजिक्स के टीचर की आँखों से बहुत डरते थे हम, और अपनी और इसके अलावा अपनी जेठानी की आँखों से भी। क्या बात है, टीचर की आँखों से तो बहुत लोग डरे होंगे, बताएं या ना बताएं, लेकिन कई बार जब होमवर्क नहीं पूरा होता तब टीचर की आंखों से बहुत डर लगता है। तो आप क्या कभी डरे टीचर की आंखों से, बता दीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि जब शब्द थक जाते हैं और भावनाएं इतनी विशाल हो जाती हैं कि वे भाषा के बंधनों में नहीं समा पाती, तब आंखें ही संवाद का माध्यम बनती हैं। आंखें केवल शरीर का अंग नहीं बल्कि वे आत्मा की खुला झरोखा हैं, जहां कोई मुखौटा काम नहीं आता। एक तरफ जहां चौदहवें के चांद जैसी शीतलता मन को सुकून देती है, वहीं दूसरी तरफ विरह के आंसू दुख देते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत आंखों की खामोशी और उनकी गुफ्तगू के जादू को बेहद नज़ाकत से बयां करने वाला एक खूबसूरत दस्तावेज़ है। ये लेखन केवल आंखों की तारीफ नहीं करता बल्कि इंसान के भीतर छिपे भावनाओं के समंदर को शब्दों का रूप देता है। लेखक ने खूबसूरती से आँखों के विरोधाभासों और उनकी गहराई को समेटा है। दोस्तों, आँखों में सपने भी होते हैं, बहुत सारे सपने होते हैं, कई बार कुछ सपने पूरे होते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं। आप बताइए आपका कौन सा सपना हुआ पूरा और कौन सा रह गया अधूरा। फिल्म थोड़ी सी बेवफाई आपको पूछना है गीतकार और संगीत

थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गाना था। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें थीं, गुलजार के बोल, खयाम का संगीत था और श्रोताओं ने जानकारी दी है शबाना आज़मी, राजेश खन्ना पर्दे पर। बिल्कुल सही जानकारी आपने दी है। एक श्रोता ने लिखा है कि गानों के बोल बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है, ये आँखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी पसंद के बहुत सारे गाने आज के कार्यक्रम में शामिल हुए। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आँखों में न रुकने वाले आंसू आए मेरी आंखों में जब 31 जुलाई को रफी साहब के इंतकाल की खबर सुनी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत प्यारा गीत है, बहुत बार सुनते हैं हम ये गीत, हमारी आंखों में आंसू बहुत बार आ जाते थे पहले, हम कभी किसी का दर्द नहीं देख पाते थे, पर अब धीरे धीरे आंसू छुपाना आ गया है, हम हंसते भी बहुत हैं और शायद आंसुओं से भी गहरा रिश्ता है। जब बेटी विदा हुई तब तो आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, और फिर जब हमारे साथी ने हमारा साथ छोड़ा फिर पापा तो बहुत आंसू बहाए, पर आंसू बहाने पर भी जाने वाला लौट कर तो नहीं आता है। एक श्रोता ने लिखा है कि कैफी आज़मी का के बोल बहुत अच्छा लगा, मर्म स्पर्शी गाना है और ये गीत सिखाता है कि जब शब्द संगीत और आवाज़ का सही तालमेल हो तो एक कालजयी रचना का जन्म होता है। आज भी जब लोग अकेलेपन या पुराने दिनों को याद करते हैं तो ये गीत सुनते हैं। फिल्म हंसते जख्म का और भी बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी है, संक्षेप में हमने इनकी टिप्पणी आप तक पहुँचाई। एक श्रोता ने लिखा है कि मम्मी की आंखों से हम कभी नहीं डरे क्योंकि इकलौता बेटा था, वे हमेशा प्यार से पेश आती रहीं। हाँ, पिता की आंखों से हम डरते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि संगीत साहित्य शायरी में सबसे चर्चित जिस्मानी आंखों के विभिन्न रूपों का बखान किया गया है। अब प्रोग्राम का

0: ऊंचे लोग फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, चित्रगुप्त का संगीत। श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया गीतकार संगीतकार का नाम। एक श्रोता ने लिखा है कि एक सपना था जो फौज में जाने का, वो पूरा नहीं हुआ। एक था जिंदगी का हम सफर साथ साथ चले सारे जीवन भर, लेकिन वो सपना भी अधूरा रह गया। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज सुरों का सफर ममता दीदी के साथ सुपर फास्ट रहा, 120 की स्पीड पर चलकर उनकी प्रस्तुति बेस्ट रही। भाई अगर हम स्पीड को धीमा करेंगे तो आप सब श्रोताओं की
1: प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम दीदी के गोठ।

0: पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान की प्रस्तुति दीदी के गुट सुनने वाले सभी महतारी दीदी भैया और श्रोता संगवारियों को चंदा
1: और सूरज की तरफ ले जय बिहान। चंदा।
0: हाँ दीदी।
1: एक जनौला पूछो।
0: हाँ हाँ पूछो।
1: एक पेड़ के 12 नाव 30-30 के झोथा तेखर भिन्ने भिन्ने पाँव बता का है।
0: लो कर लो बात दीदी।
1: का हो गया
0: दीदी? ये जनौला हम दीदी के गोट के छठवे कार्यक्रम में पूछ चुके हैं और इसका उत्तर भी ना सभी श्रोताओं को पता भी होगा।
1: हाँ।
0: चलो फिर भी आपने पूछा तो बता देती हूँ। एक पेड़ माने एक साल, 12 नाव यानी 12 महीना, 30-30 के झोथा यानी महीने के दिन, और भिन्ने भिन्ने पाँव यानी अलग अलग दिन। मतलब सुरुष दीदी, ये जनौला ना पूरे एक वर्ष को दर्शाता है।
1: दीदी के गोट के 12वां कड़ी में संघर के
0: हाँ हाँ
1: दीदी मन संग और श्रोता संगवारी मन संग जुड़े माया के गांठ के भी एक साल पूरा हो गए चंदा।
0: तो कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोट के एक वर्ष की यात्रा पूर्ण होने की बहुत बहुत बधाई।
1: दीदी हो, आज सुरता के एक बछर के चंदन घोरबो आप मन संग पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोट के विशेष प्रसारण में।
0: एक वर्ष पूर्व इस कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई जी और माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा जी की शुभकामनाओं और प्रेरणा से हुआ।
1: और एक बछर के ये प्रेरणादायक यात्रा में दीदी मन के आत्मनिर्भरता के कहानी सुने।
0: हाँ, आरंभ से अब तक दीदी के गोट की ये यात्रा नारायणपुर जिले की इरक भट्टी से लेकर जशपुर के गांव तक, मैदानी क्षेत्र से सुदूर वनांचल तक पहुंची है।
1: पीएम आवास योजना में महिला मन के सहभागिता, नई चेतना जेंडर अभियान 4.0, लखपति दीदी ले लेके बैंक सखी के गोट, और बायर सेलर मीट ले लेके नमो ड्रोन दीदी, कृषि सखी और पशु सखी दीदी मन के गोट, ये सब ला सुनेन गोई।
0: समूह

0: से पंचायत प्रतिनिधि तक का सफर, वित्तीय धोखाधड़ी जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड्स, साइबर फ्रॉड व वित्तीय साक्षरता, छत्तीस कला ब्रांड, ऐसे विषयों पर भी जानकारी मिली है।
1: और सुरता के चंदन घोरथन, गर्भ के सुगंध ले महमावत, महिला सशक्तिकरण के अनगिनती कहानी और अनगिनती बदलाव के अनगिनती मोती में से चमकत मोती मन ले बने माला, एक साल पाथन चंदा।
0: हाँ, और इस माला की मोतियों को फेरते हैं तो पाते हैं कि दीदी के गोठ कार्यक्रम ने इस एक साल में दीदियों की आवाज को एक मंच दिया है। हाँ, दीदियों की हर एक कहानी में ध्वनित होता है बिहान से जुड़कर बढ़ें, चलें और नई राह गढ़ें। बिहान हर कदम आपके साथ है।
1: और दीदी मनला एक नवा पहचान मिलीस, सुनैया मन के आसला विश्वास के नवा उड़ान मिलीस। और आज पूरा एक बच्चर के यात्रा में दीदी के गोठ कार्यक्रम सुन के सार सार निमारे दीदी मंजूरियाए हमें।
0: सुरुज दीदी, आज इतनी सारी दीदियां एक साथ की सफलता की कहानी हम सुनने वाले हैं,
1: तो आओ इखर मन ले मिलथन।
2: जय बिहान दीदी हो। जय बिहान दीदी।
3: मोर नाम गीता वैष्णव, जिला बेमेतरा।
4: मोर नाम शीला मानेपुरी, जिला बेमेतरा।
5: मोर नाम श्रीमती रुक्मणी साहू, जिला राजनांदगांव।
6: मोर नाम ज्ञानेश्वरी निसाद, जिला राजनांदगांव।
7: मेरा नाम कविता अंगनपल्ली, जिला बीजापुर।
8: मेरा नाम सुनीता पुजारी, जिला बीजापुर।
1: चंदा,
0: हाँ सर,
1: अब ये दीदी बीजापुर ले सुनीता दीदी और कविता दीदी घला आए हैं। दीदी आप अपन बारे में बताते हो।
8: मेरा नाम है श्रीमती सुनीता पुजारी, मैं ग्राम पंचायत चेरपाल नियत नेलेनार से हूँ, जिला बीजापुर। मेरा समूह का नाम है सरस्वती स्व सहायता समूह, उसमें मैं सचिव हूँ। मेरा ग्राम संगठन का नाम है श्री कृष्ण ग्राम संगठन, उसमें मैं अध्यक्ष हूँ। समूह में जुड़ने से पहले मेरा आर्थिक स्थिति बहुत खराब था, फिर मैं समूह में जुड़ी। जुड़ने के बाद फिर मुझे पता चला कि समूह से ऋण मिलता है। मैं समूह से फिर बैंक लिंक के जरा से निकाली, और मेरा पहले से छोटा सा दुकान था, तो फिर मैं बैंक से ऋण ली और मेरा दुकान को और बढ़ाई। जब दुकान बड़ा की तो उससे जो राशि मिलता था, मेरे बच्चे को पढ़ाई लिखवाई करती हूँ और मेरा घर चलाती हूँ, और मेरा अच्छा से चल रहा मेरा जीवन। एक एपिसोड सुने हैं दीदी के गोट में एपीओ के बारे में, तो प्रेरणा मिली। एपीओ का गठन हुआ है 2025 में, तो उसमें 600 दीदी लोग जुड़े हैं। उसमें मुझे बेचने में दिक्कत होता था, अच्छे दाम आने से बेचूंगी बोल के रखती तो खराब भी होता था। जब एपीओ आया तो मैं अभी अच्छे दाम में बेच सकती हूँ। बिहान से जुड़ के मेरा जीवन में बहुत बदलाव आया। मैं अभी लखपति दीदी के श्रेणी में हूँ। मैं इतने लोगों के सामने मैं अपनी सफलता कहानी को रख रही हूँ।
0: दीदी के गोठ की ऐसी कौन सी विशेष अनुभव है जिसने आपको बहुत प्रभावित किया?
8: चंदा दीदी, जो गाना गाते ना, हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसे कौन लिखते हैं?
0: अच्छा, दीदी के गोठ में आप जो गाना सुनती हैं उसकी बात कर रही हैं। वैसे तो कई बार जो दीदियां होती हैं वो खुद ही गाती हैं, लेकिन हमारे पतंजलि मिश्रा भैया हैं वो दीदियों के मन के भावों को शब्दों में आकार देते हैं, और जिसे दीदियों का स्वर मिलता है,
8: सुनवाई ना हम लोगों को।
0: तो लीजिए एक बहुत प्यारा सा गीत हमारी सभी दीदियों के लिए जो दीदी के गोठ सुन रही हैं।

0: सुने चंदा?
1: हाँ, बहुत अच्छा लगा दीदी।
2: हम वाला अच्छा लगी से दीदी।
1: रुक्मणी दीदी, आप दीदी के गोट की एक वर्ष की सशक्त और सफल यात्रा की साक्षी हैं, है ना? आप लगातार सुन रही हैं, तो इस कार्यक्रम से आपका क्या अनुभव रहा? आप मन अपन बारे में बताते हैं।
3: मोर गाँव के नाम सुकुल देहान, मोर समूह के नाम है माँ बम्बलेश्वरी।

0: मैं अध्यक्ष हूँ, सीएससी सेंटर चलाती हूँ दीदी, उसमें
1: हाँ
0: आधार से पैसा वगैरह निकालती हूँ, ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरती हूँ,
1: अरे
0: फिर
1: वाह,
0: उसी में फैंसी डाली हूँ, ग्रामीण वितरक गैस का बीमा सखी का भी काम करती हूँ, चार पांच आजीव का कर लेती हूँ मैं। दीदी के गोट में 10वां एपिसोड सुनने के बाद हमें साइबर फ्रॉड के बारे में जानकारी मिला, संगठन में ग्राम संगठन में अनुभव साझा कर पाए, ओटीपी वगैरह आते हैं तो ओटीपी नहीं बताना है। दीदी के गोट हम ग्राम संगठन में सुने तो हमला बहुत अच्छा लगी से, प्रेरणा मिली से,
2: हमला एक मंच मिली से जहाँ से हम हाँ अपन कहानी ला साझा कर सकथन, तो एकर लिए
0: माननीय मुख्यमंत्री जी पंचायत मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
3: चंदा,
1: हाँ दीदी,
3: अभी ये दीदी मन के सब अनुभव सुने हैं,
1: ऐसा लगता है सुरुज दीदी कि इनकी कहानी सुन के भी हमारी जो दूसरी दीदियां हैं
3: वो मन प्रेरणा
1: प्रेरणा लेंगी,
3: है ना। कविता दीदी, आप ये कार्यक्रम ना जब सुने हो तो ये कार्यक्रम के बारे में आप मन के पहली विचार का बनी?
4: मेरा गांव का नाम बोरजे है, मेरा समूह का नाम है चंद्रका स्व सहायता समूह, मेरा ग्राम संगठन का नाम है नारी शक्ति। मैं समूह में जुड़ के बैंक लिंकेज राशि से बकरी पालन कर रही हूँ। मेरे पास 30 से 40 बकरियां हैं जिससे मैं सालाना इनकम 1,30,000 तक कमाती हूँ।
1: यानी आप तो लखपति दीदी भी
4: जी,
1: हो,
4: लखपति
1: है ना?
4: दीदी में हूँ। दीदी के गोट कार्यक्रम में पशु सखी कृषि सखी के बारे में भी सुनी हूँ, जिससे अनुभव यही मिला है कि और बेहतरीन बन सके हम लोग, बिहान से जुड़ के आजीविका को बढ़ाए, अच्छे से पशुपालन करने की प्रेरणा मिली हमें। जब से बिहान आया है हम नियत नल्ला नार से जीवन ही बदल गया है।
1: क्या बात,
4: हमारे गांव परिवार की भी सब में सुधार आया है।
3: सुने चंदा दीदी मन के कहानी?
1: हाँ।
3: अब यदि गीता दीदी के पारी है, दीदी आप जैसे दीदी के गोट सुने हो, आपके विचार कोनो बदलाव आए है बताते हो?
5: मोर गांव है ग्राम पंचायत झालम, मोर समूह नाम है नर्मदा माता, जिला बेमेतर है। दीदी के गोट ला सरगुजा जिला से सुने रहे पहले।
1: अच्छा,
5: तो वहाँ से मोर मन में ना विचार भी अच्छा लगी से, मैं सोचे कम खर्चा से पापड़ बना लेता हूँ और बड़ी बिजौरी बना लेता हूँ, तो मैं वो चालू करे। मार्च में कवर्धा में 20,000 के बेचे हूँ और रायगढ़ में 40-45,000 के बेचे हूँ, रायपुर भी आ रहे हैं बेचे बर पापड़।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
5: तो अच्छा भी किसे यहाँ तो मोर लड़कल के वही पैसा के मैं फीस पटाए स्कूल की, और कुछ पैसा मैं घर बनाए हूँ, टाइल्स लगाए ओमा लगाए हूँ। दीदी के गोट कार्यक्रम जेंडर वाले में हम सुने हैं तो ओमा हमार मन के जानकारी बढ़ी से नया चेतना में, तो पति दुख देते, सास दुख देते, जहाँ हमारे जीआरसी सेंटर है वहाँ पूछे बर दो आते सुन के बोल, हमारे गाँव में जैसे बेटी बेटा में भेदभाव रही थे, गाँव में अगर बात विवाद है, एक पति पत्नी में है, सास बहू में झगड़ा है कि मारपीट करते,
1: हाँ।
5: वो दोनों ला समझाता ना, नहीं समझे तो फिर सखी सेंटर में भेजता ना। एक काम ला करे हैं, समूह में जुड़े हैं, तभी तो आज रेडियो में बोले के मौका भी मिली, महू ला अपन कहानी रखे के मौका मिली से, एक मुख्यमंत्री जिला और पंचायत मंत्री जिला धन्यवाद कहा थी।
1: ज्ञानेश्वरी दीदी, दीदी के गोट की ऐसी कौन सी विशेष कहानी है या ऐसा कौन सा अनुभव है जिसने आपको बहुत प्रभावित किया?
6: मैं ग्राम मोखला के रवैया हरो, मोर समूह के नाम है प्रतिज्ञा स्वयं सहायता समूह, जेमे दीदी मैं बुक पर के काम करता हूँ। दीदी के गोट में मैं यहाँ तीसरा एपिसोड सुने, जेमे अनिता कश्यप दीदी है,
1: हाँ, हाँ,
6: है ना, ओहा
1: हाँ,
6: हाँ, जो है कोसा के
1: कोसा
6: साड़ी बनाते, ओहा हर सरस मेला में ले जाते और अपन कोसा के साड़ी ला बेचते, वही सरस मेला में मैं भी अपन गढ़कलेवा के जो है स्टॉल लगा थू, दीदी सन में मुलाकात बहुत हो रही से, दीदी के गोट में सुने
1: हाँ।
6: तो वहाँ से प्रेरणा लेके ग्राम संगठन से मैं 3 लाख के लोन ले
1: हाँ।
6: और वहाँ के साथ सजावट करूँ। दीदी मैं यहाँ राजनांद गांव में गढ़कलेवा के नाम से कैंटिंग चलाता हूँ, थेटरी खुरमी अरसा ये सब चीज बनाता हूँ, और अभी वहाँ पे मोर पर डे 10 से 15,000 की डेली के कमाई हुआ थी। मोर साथ में 10 से 15 महिला और जुड़े है जेकर यहाँ से अच्छा से आजीविका चला थे। दीदी के गोट के हर एपिसोड में दीदी मन पूछे रहे थे सवाल,
1: हाँ,
6: है ना,
1: हाँ।
6: तो वही है में मोर एक सवाल रही से वे,
1: हाँ।
6: जो जवाब देव ना वही में मोला जवाब मिल गए, ये बात मोला बहुत अच्छा लगी से दीदी के गोट।
1: अच्छा, मतलब आप मन ये अच्छा लगी कि आप मन के सवाल के जवाब मिल गए।
6: हाँ।
1: रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोट हर एक महीने के दूसरे गुरुवार को दोपहर 2 बजे से और बस्तरिया और सरगुजिया कार्यक्रम का प्रसारण दोपहर 2:30 पर सुन पाएंगे। इस कार्यक्रम में योजना से संबंधित जिज्ञासा या प्रश्न टोल फ्री नंबर 1800-233-2398 में दोपहर 12 से 3 बजे फोन करके पूछे जा सकते हैं।
3: और शीला दीदी अब आप अपन कहानी ला बताते हो।
7: मैं बाबा घटोली शाह हूँ जिला बेमेतरा से।

0: चॉकलेटी से बचाव है, ऐसे के मोर विचार है।
1: क्या बात है, आपके आचार और विचार बहुत अच्छा है।
0: मैं दीदी के गोठ में सुने रहे हैं, हाँ? जो 36 कला जो ब्रांड है, ओमा कैसे जाऊ मैं, हाँ? मोरो जो आचार है क्वालिटी अच्छा से बेचाव है, अच्छा से पैसा आवा है मोरो पास, जो मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ, ऐसे ही मोरो विचार है। इसे जो बाहर में बेचता वह कम दाम से मिलते, अगर हमारे जो 36 कला जो ब्रांड है वहाँ बेचबो तो हमारा कुछ ज्यादा फायदा मिली, ओकर से हमारा आर्थिक स्थिति है और अच्छा से सुधर जी।
1: बहुत अच्छा लगा दीदी, वास्तव में हमारी कोशिश जो है वो सार्थक हो रही है, सफल हो रही है।
2: हम अच्छा लगी से दीदी, आप मन से मिलके बहुत अच्छा लगी।
1: आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू से दी इस प्रेरक यात्रा की शुरुआत हुई थी छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर नारायणपुर जिले के माड़ के एक गाँव इरकबट्टी से। वो पहली कहानी सिर्फ एक शुरुआत नहीं थी बल्कि एक बदलाव की नींव थी।
3: हो
1: बिहान के अंतर्गत बहुत काम हो रहा है,
3: हाँ।
1: और जब दीदी के गोट कार्यक्रम शुरू हुआ,
3: हाँ।
1: तो आजीविका से सशक्तिकरण की अपनी अपनी कहानी लिखती दीदियों को अपनी कहानी अपनी जुबानी बताने का मौका मिला।
3: एक साल बाद ये मंच बन गया हवे संघर्ष ले सफलता के, जी हाँ, हर एक आवाज प्रेरणा हवे और हर कहानी एक नवा दिशा।
1: सही कहे,
3: पारस पखरा कस बिहान ले जुड़ के अबला ले सबला बने दीदी मन के सफलता के गोठ लेके ये दिशा में बढ़त फेर मिलबो। तब तक बर देवो विदा, जय जोहार, जय बिहान।
4: दीदी के गोठ, अभी आप ये प्रायोजित कार्यक्रम सुन रहे थे, ये आकाशवाणी रायपुर है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा आकाशवाणी का, ये रायपुर। और
5: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत वयस्कों के लिए निर्धारित साक्षरता मानकों को प्राप्त कर पूर्णतः साक्षर राज्य बना। और वियतनाम में होने वाले पिकलबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारतीय दल।
6: संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी बदलाव का स्वागत किया और क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा तथा प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक रूपरेखाओं को अंतिम रूप दिया।
7: यह महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक परिवर्तन को दर्शाता है जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार कर रहे हैं। पारंपरिक व्यापार से हाईटेक डिफेंस कॉरिडोर की ओर बढ़ने, महत्वाकांक्षी सीका समझौते में तेजी लाने और ऐतिहासिक परमाणु समझौते के अंतर्गत लंबे समय के लिए यूरेनियम निर्यात शुरू करने जैसी पहलों से दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाया गया है। जहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बानीज ने कहा कि 10 लाख लोगों का भारतीय प्रवासी समुदाय इस साझेदारी की असली धड़कन है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के विकास की गति को क्रिकेट की तरह बताया।
8: क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन T20 जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी।
7: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
5: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी भविष्य के लिए निर्मित एक सुदृढ़ और स्थायी संबंध है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध गहरे पारस्परिक विश्वास के आधार पर एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं।

0: शिखर वार्ता की प्रमुख उपलब्धियों में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को नई गति देना शामिल रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और सप्लाई चेन साझेदारी को क्रियान्वित किया गया और महत्वपूर्ण खनिज कॉरिडोर की स्थापना की गई।
1: हमने सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस एम्बिशियस। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं।
0: हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत रूप दिया गया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप का शुभारंभ हुआ।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग पर अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इसके तहत ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के नए शाखा परिसर बंगलुरु और गुरुग्राम में स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भी इस भविष्य उन्मुख साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही।
2: We share a focus on deepening and diversifying the relationship between our countries.
3: हम दोनों देशों के बीच संबंध को गहरा और विविध बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे हम लगातार मजबूत होते रहें। आज हमने हर पहलू पर चर्चा की। नए और अहम समझौतों के माध्यम से हम रक्षा सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक तथा ऊर्जा सुरक्षा और जरूरी खनिजों के क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं।
2: And critical minerals.
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में आज नागपुर में ब्रिक्स 2026 के तहत तीसरे ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक हुई। कार्यकारी समूह की इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय परिवहन सचिव वी उमाशंकर ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने गतिशीलता, शहरी बुनियादी ढांचा और सतत विकास जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIRF और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारत ने आज गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल के लिए एक अहम राष्ट्रीय पहल शुरू करके अपनी समुद्री विकास में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उड़ीसा के एक दिन के दौरे पर आए उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने दूर के समुद्रों में काम करने वाली भारतीय झंडे वाली मछली पकड़ने वाली नावों के लिए अनुमति पत्र जारी करने की राष्ट्रीय प्रक्रिया की शुरुआत की। इससे जिम्मेदारी से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और

0: समुद्री संसाधनों को संरक्षण के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार होगा। उन्होंने उड़ीसा डीप सी फिशिंग मिशन डॉक्यूमेंट भी जारी किया, जो राज्य में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को, इकोसिस्टम को मजबूत करने और ब्लू इकोनॉमी समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक योजना है। उपराष्ट्रपति ने युवा भारतीयों से मछली पालन को वैश्विक मौके वाला एक आधुनिक विज्ञान आधारित पेशे के तौर पर अपनाने का आग्रह किया।
1: I urge our institutions to continue supporting our fishing community with knowledge, technology and finance. May this historic initiative bring prosperity to every coastal family and contribute significantly to the realization of Viksit Bharat by 2047.
0: Prakash Das, Akashvani Samachar, Bhubaneswar.
2: गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना तथा कानून प्रवर्तन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उपायों की पहचान कर देश की सीमा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शनिवार को हिमाचल प्रदेश के केलोंग में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि ये सेंटर पूरे भारत के हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च को मजबूत करेगा। कृषि यंत्रीकरण उपमिशन के तहत सरकार ने अब तक देश भर में किसानों को 9,404 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 22 लाख कृषि मशीनें वितरित करने में सहायता प्रदान की है। ये मिशन वर्ष 2014-15 में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे लाइन की मरम्मत के काम की समीक्षा की। भूस्खलन भीषण था और रेलवे लाइन के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों को भी भारी नुकसान हुआ था। मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे की टीमें समन्वय से काम कर रही हैं। नीति आयोग ने उभरते क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता पर हितधारकों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की। इस बैठक में सरकार, अनुसंधान संस्थानों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास नए भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति के बाद राज्यपाल ने 8 जुलाई 2026 को इस घोषणा को मंजूरी दी। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी ये आगे बढ़ चुका है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से तेज बारिश जारी है। दिल्ली वासियों की सुबह मूसलाधार बारिश और आंधी के साथ शुरू हुई। बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव हो गया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था।
3: अगर हम आने वाले दिनों की बात करें, सबसे पहले NCR दिल्ली की बात करें, तो NCR दिल्ली के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट, हम अनुमान लगा रहे हैं कि जहां आज मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, इसके अलावा कल ये रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी, परसों हल्का फुल्का रेनफॉल होने का अनुमान। वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट है, वहाँ हम एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं।
2: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जगहों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
4: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश और भूस्खलन से पर्वतीय जिलों के कुछ राष्ट्रीय मार्गों, राज्य राजमार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। बंद सड़कों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन व पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने संबंधित विभागों को किसी भी संभावित आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 24 घंटे सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का गंभीरता से पालन करने की भी अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: केरल के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश की तीव्रता कम हो गई है। उत्तरी केरल के 5 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले कल रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट पर थे।

0: वायनाड में 5 से 15 मिलीमीटर तक मध्यम बारिश दर्ज की गई। यहां मंगलवार को भूस्खलन हुआ था। भारतीय पिकलबॉल संघ ने 2026 पिकलबॉल विश्व कप के लिए भारतीय दल की घोषणा कर दी है। ये दल एक प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के बाद चुना गया है। 30 अगस्त से 6 सितंबर तक वियतनाम के दानांग में आयोजित होने वाले पिकलबॉल विश्व कप में पेशेवर वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेगा। अंतर्राष्ट्रीय पिकलबॉल जगत में एक जाना पहचाना नाम हर्ष मेहता दल की कप्तानी करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग 0.7% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 565 अंक चढ़कर 77,069 पर और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,050 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

0: बहारें फिर भी आएंगे इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। अनजान की रचना थी, ओपी नैयर का संगीत था। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

शकील बदायूनी का लिखा गाना आप सुन रहे थे। आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में फिल्म थी साहब बीबी और गुलाम। आइए अब सुने मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का गाना। गीता दत्त, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में, रचना मजरूह सुल्तानपुरी, की संगीतकार ओपी नैयर।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: आर पार फिल्म का गाना आप सुन रहे थे गीता दत्त की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, ओपी नैयर का संगीत था।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ, पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना।

0: चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए अब सुनते हैं अभिलाषा फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने बोल लिखे हैं, धुन बनाई है राहुल देवबर्मन ने।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है,

0: जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
1: जी.
0: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है.
2: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर. तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर.

0: सखी सहेली
1: सुनने वाली हमारे सभी सखियों सहेलियों और सखा भाइयों को जो कार्यक्रम सखी सहेली सुन रहे उन्हें और सोनाली आपको दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
2: दीपा आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार।
1: बिल्कुल भाई, बहुत बहुत नमस्कार। और ये बदलते मौसम में अपना सब खूब अच्छा ध्यान रख रहे होंगे, हम ये उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, और घर का भी ध्यान रख रहे होंगे। और इस बारिश में बहुत सारी बातों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है जो हम इस कार्यक्रम के दौरान करेंगे।
2: एक हमारे सखी ने लिखा है कि सोशल मीडिया न्यूज़ समाचार पत्रों से मुंबई की बारिश के हालचाल दिख रहे हैं और इसके बाद भी सही समय पर आप सभी का प्रोग्राम पेश करना अपने कार्य के प्रति निष्ठा बहुत बड़ी बात है। भगवान से दुआ है आप सब अपने सुरक्षित रहें और अपने कार्य करते रहें। ऐसे कोई जब हमारी परवाह करता है तो कितना अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम भी तो अपने वादे पे हमें उतरना होता है, सही खरा बनना पड़ता है।
2: और

0: हमारी श्रोता भाई बहन भी
1: हाँ, वो
0: इतनी बड़ी ही शिद्दत के साथ में इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखते हैं, तो इतना आनंद होता है ना, ऐसा लगता है कि सभी हमारे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और हमसे बतिया रहे हैं इन मैसेजेस के माध्यम से।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखो ना, इस हमारा तभी तो हमारा फर्ज बनता है कि हम खूब सारी जानकारियां लेकर आए, मनोरंजक गीत लाएं और कुछ खट्टी मीठी बातें भी हो,
0: है ना। और जैसे बारिश का मौसम है, झमाझम बारिश पूरे भारतवर्ष में हो रही है, और जहां नहीं हो रही है तो बस हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से वहां भी बारिश हो जाए, बस बारिश संतुलन में हो
1: जी।
0: उसके लिए जो है सड़क यातायात और बारिश, यानी ये देखिए ना, इन दिनों कितनी सारी दुर्घटनाएं हो रही है सड़क यातायात की, कि कितने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं बारिश के मौसम में, तो किस तरह से हमें ध्यान रखना है इस विषय पर उपयोगी टिप्स ये हमारे श्रोता भाई बहन इनने बहुत सारे लिखकर भेजे हैं, हम भी बताएंगे।
1: बिल्कुल हाँ। और फिर क्या होता है जब स्कूल में छुट्टियां हो जाती बहुत बारिश की वजह से, पिछले कुछ दिनों में हमने मुंबई में देखा, आपके शहर में भी ऐसा कुछ हुआ हो तो जरूर बताइएगा। स्कूल कॉलेजेस की छुट्टियां हो जाती हैं और फिर वर्क फ्रॉम होम के लिए एक रिक्वेस्ट सरकार की तरफ से भी आती है कि अपील होती है कि भाई जो जहाँ है वहीं रहें, और फिर ऐसे में बच्चों की जिद जो घर में रहते हैं तो उनके शुरू हो जाते हैं, आज हम स्कूल नहीं गए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये करके दो, हमें वो करके दो, ये सारी तो जो चीजें हैं ना, इस तरह के सीन बहुत सारे घरों में हुआ करते हूँ,
0: दिखते हैं ऐसे सीन। और होता यूं है कि अगर हम काम में लगे हुए हैं, हम उलझे हुए हैं, बच्चे ने जिद की कि भाई आज मम्मी हमें पास्ता बना दीजिए, तो हम मैंने जब काम में रहते तो हमने कहा ठीक है भाई पास्ता बोल रहा है तो बना देंगे, पर तब हम ऐसे ही उनसे वादा कर देते कि हाँ बना देंगे, पर पास्ता बनाने के लिए घर में सामग्री भी चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: फिर अगर हमने पास्ता नहीं बना दिया तो फिर बच्चे जो है ना सारा घर सर पे ले लेते हैं और उनकी जिद के आगे पेरेंट्स जो होते हैं हतबल हो जाते हैं।
1: हम कई बार उसमें ऐसे उनको एक बात उनकी इधर उधर करने के लिए उनका ध्यान यहाँ वहाँ भटक जाए, तो हम कहते हैं अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो वो कहते हैं मेरे पास है ना,
0: मेरा गुल्लक में
1: उसमें से निकाल लीजिए आप, इस तरह से भी कहते हैं बच्चे।
0: तो यानी गुल्लक हमारे बचपन का मनी बैंक, या यूं कह लीजिए बड़े होने के बाद भी अगर घर में गुल्लक होना तो एक अलग ही प्रसन्नता रहती है कि जो कुछ भी इधर उधर घर में चिल्लर पैसे कुछ रुपए इधर पड़े हुए हैं तो हम झट से उसमें डाल देते हैं, तो हमें भी एक सुकून लगता है कि चलो हमारे पास इसमें तो बचत है, भले ही बड़े बड़े हमारे बचत खाते होंगे, बड़े बड़े हमारे FDs होंगे, पर ये जो छोटा सा गुल्लक होता है ना, ये बड़ा ही मासूमियत भरा होता है।
1: बिल्कुल। और एक सुकून सा देता है कि अगर कभी अचानक से कुछ छुट्टे पैसों की जरूरत पड़ गई तो हमारे पास गुल्लक है, है ना। और इसी साथ में ये भी है कि हम जब बहुत सारी बातें होती घर में बैठे हैं तो कई सारे बातें निकलती, क्योंकि बरसात के दिन अक्सर बाहर जाना हो नहीं पाता, बातें बहुत सारी निकलती हैं, और कभी हम किसी की जद्दोजहद की बातें करते हैं, किसी की कोई प्रेरणा स्रोत कहानी के बारे में जिक्र निकल जाता है, तो आज के दिन हम कहानी पद्मश्री के खंड में बात करेंगे कुछ इसी तरह मंजमा जोगथी की,
0: जिनके जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी इस विषय में कमेंट्स लिखे हैं और हम सारे श्रोताओं को उनके जीवन से जुड़ी कितनी परेशानियां थी और उसके बाद में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो उनके बारे में भी हम जानकारी देंगे। पर अब क्या करना है दीपा?
1: देखो अब मैं क्या कर रही हूँ।

0: हाँ।
1: अरे हाँ, वो चोर की शक्ल है गोरी।
0: तो क्या हुआ?

0: खफा खफा से
1: हाय मर जाऊं।
0: हम भी थे एक नजर के प्यासे,
1: क्यों नहीं
0: दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आराम।

0: सोनाली कहाँ खो गई तुम?
1: मैं खो गई थी हमारे श्रोताओं के कमेंट्स पढ़ने में.
0: देख रही थी मैं कि बहुत सारे संदेश आए हैं और तुम चाट रही हो कि कौन ज्यादा से ज्यादा हम संदेश शामिल कर सके अपने कार्यक्रम में.
1: क्योंकि हमारे श्रोता जो होते हैं ना, इतनी मेहनत से कमेंट्स लिखते हैं, तो हमारा भी ये फर्ज है कि उनके कमेंट्स शामिल करना बहुत जरूरी है. और बहुत सुंदर लिखते हैं हमारे श्रोता
0: जी. ये बात तो 16 आने सच है. और अब ये कि कहानी उनकी जिन्होंने बहुत बहुत ज्यादा मुश्किलें, परेशानियां, हालात, बहुत दिक्कतों भरे देखे उनके बारे में. ये एक महिला जिन्होंने दर दर भटकने के दिनों को देखने से लेकर राज्य के लोक कलाओं के प्रतिष्ठित संस्था के प्रमुख बनने तक की उनकी ये कहानी है. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंजम्मा जोगथी की, उनके असाधारण जीवन की कहानी जो कि आज स्कूली पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बन गई है.
1: बेल्लारी के पास कल्लू कम्बा गाँव में मंजूनाथ शेट्टी के रूप में जन्मी मंजम्मा ने अपने जीवन में अकल्पनीय पीड़ा झेली है. दीपा, ये तब शुरू हुआ जब किशोरावस्था में ही मंजूनाथ ने खुद को एक महिला के रूप में पहचाना शुरू किया. वे कहती है कि जब मैं 15 साल की हुई तब मैंने एक महिला के रूप में अपनी पहचान को पूरी तरह से अपना लिया था और परिवार वाले उनके भीतर हो रहे इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाए और एक दिन उन्हें घर से निकाल दिया क्योंकि वे तृतीय पंथी थी. अकेलापन और भीषण गरीबी के दिन झेलती रही मंजम्मा. इसी दौरान एक दिन उन्हें आशा की एक

0: जाती और ये नृत्य सीखती। तो जो घड़ा जो उनकी भाषा में उनकी वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा में जिसे चोंबू कहते हैं उसको संतुलन करना, कभी कभी तो किसी देवता की मूर्ति को भी सिर पर रखकर सुंदर नृत्य करना बहुत रोमांचक उन्हें लगता था।
1: और उस समय मंजम्मा को ये नहीं पता था कि ये कला उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तनकारी बदलाव लाएगी। एक साथी जोगप्पा ने उन्हें उस समय के लिए प्रसिद्ध लोक कलाकार कालव्वा से मिलवाया। वे याद करते हुए बताती हैं कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब कालव्वा ने मुझे अपने सामने नृत्य करने के लिए कहा था, जिसे आप ऑडिशन कह सकते हैं। उन्होंने किसी से मेरे चेहरे पर मेकअप करवाया। मुझे याद है कि मैंने आईने में देखकर मुझे बहुत शर्म महसूस हुई, ये उनका कहना था, और मैं बहुत सावली थी और इस मेकअप ने मुझे गोरा और सुंदर बना दिया। मैंने कालव्वा के गायन पर नृत्य किया और बस बात खत्म। जल्दी ही वे मुझे नाटकों में छोटी छोटी भूमिकाओं के लिए बुलाने लगे, फिर बड़ी भूमिकाओं के लिए भी उन्हें बुलाने लगे।
0: जी, और इसके बाद रंगमंच और नृत्य ने उनके जीवन को व्यस्त कर दिया। वे आगे बताती हैं कि ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे असली रूप को खोज निकाला हो और मुझे मंच पर आज़ाद कर दिया हो। मंजम्मा जो कल्लव्वा जोगती के नृत्य समूह में स्थायी एक नृत्यकी बन गई थी और हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन करने लगी। कल्लव्वा की मृत्यु के बाद मंजम्मा ने मंडली का कार्यभार संभाला और नृत्य को लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया।
1: जोगती नृत्य, जिसे आज इसी नाम से जाना जाता है, अपनी पहचान और लोकप्रियता का श्रेय काफ़ी हद तक उन्हें ही देता है। एक विशिष्ट जोगती नर्तकी लेट कर केवल मुँह से फर्श से सिक्के उठाने और सिर पर घड़ा संतुलित करने जैसे कर्तव्यों में भी माहिर होती है। यानी शरीर इतना फ्लेक्सिबल चाहिए,
0: बिल्कुल, और संतुलन कितना ज्यादा चाहिए,
1: बहुत जरूरी है। और मंजम्मा को 2010 में कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उनकी जीवन कहानी हावेरी जिले के कर्नाटक लोक विश्वविद्यालय में स्कूली पाठ्यक्रम और कला स्नातक पाठ्यक्रम का भी हिस्सा है।
0: वो आगे कहती है इंटरव्यू में कि मेरे लिए कला ही ईश्वर है, इसने मेरे भूखे पेट को भरा, ये हर दिन मेरी आत्मा को तृप्त करती है और जब मेरा कोई सहारा नहीं था तब इसने मेरा साथ दिया।
1: और वर्ष 2021 में उन्हें भारत गणराज्य के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्हें पहले कर्नाटक जनपद अकादमी के सदस्य के रूप में और बाद में राज्य सरकार द्वारा उसी संस्था के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इसी तरह वे राज्य में प्रदर्शन कला के शीर्ष स्थान का संस्थान का नेतृत्व करने वाली पहली तृतीय पंथी महिला बनी है। कितनी बड़ी बात है ना दीपा,
0: बहुत बड़ी बात। और ये वे कहती हैं कि उनकी ये चाहत है कि जोगती नृत्य को एक विशिष्ट लोक नृत्य शैली के रूप में मान्यता मिले। इसे केवल जोगप्पाओं द्वारा ही प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। वो कहती हैं कि बच्चों को भी अन्य नृत्य शैलियों की तरह ये नृत्य शैली सिखाई जानी चाहिए।
1: और एक इंटरव्यू में अपने बीते दिनों को याद करते हुए बताती है कि जब कर्नाटक जनपद अकादमी का उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो राज्य में लोक कलाओं को बढ़ावा देने वाला विभाग है, उस दिन उनका फोन लगातार बज रहा था। वो सारा ध्यान प्यार और सराहना मुझे अभिभूत कर रही थी। मंजम्मा आंसू रोकते हुए कहती है कि मैंने अपना पूरा जीवन इसी स्वीकृति और प्यार के लिए तरसते हुए बिताया। यानी कितना संघर्ष था उनके जीवन में।
0: बिल्कुल, जब परिवार आपको छोड़ देता है अकेलापन आपका साथी बन जाता है। ऐसे में जब कहीं से भी प्यार दुलार अपनापन मिलता है ना, तो वो इंसान के दिल पर क्या बीतती होगी ये सोचने, मतलब हमारी सोच से भी बाहर है।
1: और ऐसा होता है ना कि आम इंसान जो होते हैं ना, हर बार हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि हमारी तो किस्मत ही ऐसी है, हमें तो कुछ मिला ही नहीं है, हमारा तो नसीब ही खराब है। पर देखिए ना, उन्होंने कितनी विषम परिस्थितियों के बाद
0: जी
1: एक पद्मश्री तक पहुंच गई। यानी कितनी बड़े, कितना संघर्ष होगा उनके जीवन में।
0: ये बात तो बिल्कुल सही है। बातें बहुत सारी गंभीर हो गई है, क्यों ना कहीं कुछ एक संगीत
1: सुमधुर
0: गीत
1: सुनते हैं। गीत

0: सोनाली, बारिश में भीगना किसे पसंद नहीं होगा?
1: सभी को पसंद है भाई, पर बहुत संभाल के वहाँ पे हमें भीगना पड़ता है कि बीमार ना पड़ जाए, है ना?
0: ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर बच्चे बहुत ज्यादा जिद करते हैं तो रेनकोट डाल दीजिए उसके ऊपर, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है बरसते पानी में, वो पानी में पैरों से उछालना या उनकी छोटी छोटी साइकिलों को चलाना। तो हर बार मना करने के बदले एक दो बार उन्हें उनकी पूरी बरसाती पहना के, रेनकोट पहना के अच्छे से उनको छोड़ भी देना चल सकता है ना? ऐसा
1: चल सकता है। वैसे अभी गुल्लक की बात चल रही है हमारी, हमारे एक साथी ने लिखा है कि गुल्लक बचपन का मनी बैग। वाह क्या बात है, उन दिनों मिट्टी के गुल्लक कुंभकारों द्वारा अच्छी तरह पक्के पकाए आते थे और उनके ऊपरी हिस्से में पैसा डालने के लिए छेद रहा करता था, लेकिन वो भी खरीद से बाहर की कीमत पर या दीपावली पर दिए लेते समय आते थे, इसलिए डिब्बे में पैसे रखने का शौक था। एक बार मुझे टाइफाइड का बुखार आया, मैं बेड पर सोए हुए पैसों के डिब्बे खनखनाकर संतुष्ट रहता था। 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था, लेकिन माह भर से बुखार था और बहुत परहेज चल रहा था। रोटी की पापड़ी और परवल का चोखा पथ्य में दिया जाता था। एक बार लोग विजयादशमी का मेला देखने गए थे और मेरे देखरेख करने के अनदेखी कर रखा हुआ दही बड़े को खाया। पिताजी की ही चिकित्सा चल रही थी जब वो मेला से लौटे तो मुझे तेज बुखार था और देखरेख करने वाली की अच्छी खिंचाई हुई। ऐसा गुल्लक हुआ करता था, अब तो गुल्लक का नाम एक सीरियल भी आ रहा है। बहुत अच्छी

0: एक उत्सुकता रहती कि कितने पैसे जमा हुए हैं। हालांकि कुछ साल पहले मेरे घर में चोर घुस आए थे, ओहो, और मेरे दो बड़े बड़े गुल्लक दूसरे सामान के साथ ले गए। लगभग 8 से 10 हजार रुपए थे दोनों गुल्लक मिलाकर। तब मैंने सोचा अब गुल्लक नहीं रखूंगी, पर आदत का क्या किया जाए, अब सिर्फ सिक्के ही रखती हूँ, बड़े बड़े रुपए उसमें नहीं डालती हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसी बात हो जाती है घर में कि चोर आ जाते हैं और आप देखिए ना आपका गुल्लक ही वो लेके गए। लेकिन एक बात इसमें ये जान बहुत अच्छी लगी, आपने 8-10 हजार रुपए इकट्ठे कर लिए,
1: तो इसलिए हमें ये संदेश मिलता है इस मैसेज से कि भाई हमें गुल्लक में सिर्फ छोटे छोटे पैसे ही रखना है, जैसे 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए इतने ही रखना है। बड़े बड़े नोट रखने के लिए बैंक है
0: या आप कुछ ऐसी जगह पर घर पे रखिए जो कि बिल्कुल सुरक्षित हो, कि कभी ऐसी अनहोनी घटना हो जाए तो आपके मैंने

0: अंतराल के बाद हम फिर आ चुके, कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं दीपा माहेश्वरी और
1: सोनाली पाठक। चलिए, एक हमारे साथी ने लिखा है कि बचपन की गुल्लक हमारे लिए किसी अलादीन के चिराग से कम नहीं थी। उसमें सिर्फ पैसे नहीं बल्कि गर्मियों के छुट्टियों में खाई जाने वाली बर्फ की चुस्की, मेले से खरीदी जाने वाली मनपसंद गाड़ी और दोस्तों के साथ मिलकर बांटी जाने वाली टॉफियों की उम्मीदें जमा होती थी। जब कभी गुल्लक भर जाती और उसे तोड़ने का वक्त आता तो दिल में एक अजीब सी खुशी और थोड़ी सी मायूसी दोनों एक साथ होती थी। गुल्लक के टूटने पर फर्श पर बिखरे वो सिक्के किसी खजाने से कम नहीं होते थे। उस वक्त हमें ऐसा लगता था ना कि अरे हम तो कितने अमीर हैं, हमारे पास कितने सारे पैसे हैं।
0: बिल्कुल। और बच्चों को वित्तीय साक्षरता और धैर्य सिखाने का ये पहला माध्यम भी है। त्योहारों से जुड़ाव और हमारे देश में दीपावली के त्योहार पर लक्ष्मी पूजन के समय नई मिट्टी की गुल्लक खरीदने और उसकी पूजा करने की परंपरा है। भावनाएं, बच्चे बचपन में गुल्लक को हिलाकर सिक्कों की खनक सुनना और उसके भरने का इंतजार करना, बच्चों के लिए ये एक अनूठा आनंद होता है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने लिख भेजा है।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है, गुल्लक सिर्फ पैसे रखने का डिब्बा नहीं बल्कि बचपन का पहला बैंक है जो बच्चों को बचत का महत्व, धैर्य और वित्तीय जिम्मेदारी सिखाता है। ये एक पारंपरिक रूप से मिट्टी का बना होता है जिसमें सिक्के डालने के लिए पतली दरार होती है। इसी तरह की बातें हमारे सारे श्रोताओं ने लिखी है और बहुत सुंदर सुंदर गुल्लक से जुड़ी हुई यादें संजोई हुई है। पर आप क्या करना है दीपा,
0: हमें तो एक गीत सुनना है,
1: तो सुनवाते हैं गीत।

0: हमें तो हमारे श्रोताओं से, श्रोताओं को हमसे प्यार है
1: और हमेशा रहेगा।
0: हाँ बिल्कुल। गुल्लक की बात जब हो रही थी ना, एक बहुत सुंदर मैसेज आया है कि गुल्लक की बात से एक बहुत ही भावुक करने वाली बात याद आ गई। 4 साल पहले हमारे घर साइकिल पड़ी थी, 4 साल पहले, और सभी बच्चे स्कूल खत्म करके बाहर पढ़ने चले गए थे, तो हमने उसे सोशल मीडिया पे डाल दिया। और एक दिन एक आदमी आए और बात हुई, और जब उन्होंने पैसा निकाला, मतलब सारी बात तय हो गई होगी पैसों की, तो उन्होंने जब पैसा निकाला तो सिर्फ 10, 20 और 5 के सिक्के थे। मेरे देवर ने पूछा कि इतना पैसा तुम कहाँ से लाए हो, तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी सब जमा करके रखी थी साइकिल लेने के लिए। हमारे मुँह से कुछ शब्द नहीं निकला, हमें ऐसा लगा जैसे हम जड़ हो गए हैं। कितना भी उसने कहा कुछ पैसे ले लीजिए, मेरे देवर ने उसमें से सिर्फ 11 रुपये लिए और बोला कि अपनी बेटी को दे दो, फिर से इसे गुल्लक में जमा करें, और यह हमारा आशीर्वाद है।
1: कितना भावुक कर गया ना ये संदेश।
0: बिल्कुल,
1: सचमुच मेरी तो आंख नम हो गई। हाँ। इस तरह से भी यानी देखिए यहाँ पर ऐसा विरोधाभास है कि यहाँ पर कितने सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें पैसों की कदर नहीं होती, और कितने ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें छोटी छोटी चीजों के लिए इतना इंतजार करना पड़ता है, इतने सारे पैसे जमा करना
0: पड़ता है। बिल्कुल, और हम अपने, ये हमारे ऊपर होता है सोनाली, कि हम अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं,
1: किस तरह की परवरिश
0: कर रहे हैं। कहीं देखिए ना, बच्चे छोटी सी बात बिल्कुल मान जाते हैं, वो हम जैसा कहते हैं वैसा सुन लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं देखने में आता है कि बच्चे बहुत ज्यादा जिद पर एकदम अड़ जाते हैं। बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने इस बारे में संदेश लिखा है, ये पहला संदेश मैं पढ़ रही हूँ, कि मुझे ये कहना है बच्चे जिद कभी कभार ऐसी जिद कर देते हैं जिन्हें पूरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ना पूरी करो तो बच्चे घर में तूफान मचा कर बैठ जाते हैं और पूरे घर को सर पर उठा लेते हैं। लेकिन बच्चों की हार जीत को पूरी करना चाहिए, ये जरूरी नहीं। बच्चों को ये समझना चाहिए कि वो जिस चीज की जिद कर रहे हैं वो कितना जरूरी है या कितना नहीं, उन्हें यह करना चाहिए या नहीं, ये बात उन्हें समझा देना चाहिए। और अगर कभी कभी वो ना माने तो उन्हें थोड़ा सा, आप स्ट्रिक्ट भी ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा कड़क होकर के उन्हें ये बात समझाना बहुत ज़रूरी है।
1: और बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं ना दीपा, वो हमें ऐसा लगता है कि मासूम है, उन्हें क्या पता है, पर उनकी नज़र सब तरफ रहती है। कभी ऐसा होता ना कि हमने पैसे निकाले बैंक से और ऐसे ही रख दिए, और फिर ऐसे ही हम बार बार करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अरे हमारे घर में तो बहुत पैसे हैं, या फिर हमारी मम्मी भी तो ऐसे ही बिना सोचे समझे सामान लेकर आती है, या फिर हमारे यहाँ तो फिर हमारे लिए ही क्यों अनुशासन है। तो
0: है।
1: पहली पहल तो हमें करना चाहिए कि बच्चों के सामने हमें इस तरह से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के वही बच्चे ने इतने ज़्यादा ज़िद्दी बन जाते हैं, और फिर हम सिर्फ बच्चों को दोष देते हैं पर उसमें कुछ कारण हमारा भी होता है कि हम उनकी परवरिश कैसे
0: कर रहे हैं।
1: एक साथी ने लिखा है दीपा कि बच्चे, बिल्कुल छोटे बच्चे नटखट जिद करते हैं जैसे खिलौनों के लिए, तो माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सभी के लिए सुखद अनुभव होता है, लेकिन बड़े बच्चे अगर ऐसी जिद करने लगे तो उनके हित में ना हो तो माता पिता और घर के बड़ों को समझा कर साफ मना करना चाहिए। हमारे बच्चे जब से नर्सरी क्लास में स्कूल जाने लगे तभी से हमारा सम्मान करते हुए सिर्फ अपनी पढ़ाई से रिलेटेड वस्तुओं की ही डिमांड करते हुए आज भी उनकी यही सोच है और जिद नहीं करते। कितने संस्कारी बच्चे हैं।
0: बिल्कुल, देखो ना। और इसी तरह से एक और संदेश है कि राजहट, त्रियाहट और बालहट, तीनों ही जिद मनुष्य का स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और आगे कहती है कि भगवान प्रभु कृष्ण चंद्रमा को ही लेने की बात ठान बैठे थे, तब माता यशोदा ने अपनी बुद्धि से उनकी जिद को पूरा करने के लिए आंगन में थाली में पानी भर कर रखा और उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाया और बोली कि ये ले लो। तो बच्चों का जिद्दी होना उनके विकास का एक सामान्य हिस्सा है, इसे संभालने के लिए चिल्लाने या डांटने के

0: बजाय शांत रहना चाहिए। उन्हें आदेश देने के बजाय विकल्प दें, पहले अपना होमवर्क कर लो तब टीवी देखना, या पहले दूध पी लो तब तुम्हें चिप्स मिलेंगे, और उनकी बात सुनने के बाद उन्हें तर्क से समझाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये भी ज़रूरी है कि आप हर बार अगर वो चिप्स की ज़िद करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि आप बोलो कि पहले आप होमवर्क करो फिर चिप्स देंगे। चिप्स उनको खाना उनके सेहत के लिए ठीक नहीं है, ये भी बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सामग्री लिखी होती है उस पैकेट में पीछे, वो उनको समझाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिल्कुल उनका इस पर कोई कंट्रोल कहीं भी कुछ भी नहीं है, वो उठा उठा करके चिप्स लेते हैं। ये वाकई में एक अलग विषय जो कि विचारणीय है।
1: जी, एक साथी ने लिखा है कि वह क्या कहने उस जिद के भाई, गुल्लक पर जीने के अभ्यस्त होकर उसके पैसे खर्च करने की छूट नहीं थी, यदि जिद की भी जाती तो भली बातें समझाया जाता था, और जिद को पूरी नहीं करने के उद्देश्य से गुलाब जामुन तक घर में बनवाया जाता था, और केवल भुनी हुई मूँगफली ही पिताजी खरीद लाया करते थे। इतने सख्त और अनुशासन प्रेमी थे, जबकि बच्चों के जिद को पूरे करने के लिए माँ यशोदा ने तो थाली में ही चांद को उतार दिया था, ठीक उसी तरह जिद को ठोक ठाक कर ही उसके विकल्प स्वरूप ही पूरे होने वाले जिद को ही तरजीह दी जाती रही है। इन्होंने कहा है कि भाई यानी हर समय बच्चों की जिद पूरी करना ज़रूरी नहीं है, जहाँ पर तुम्हें योग्य है। और ये भी बात है ना कि अगर बच्चों ने जिद की है ना तो हम तुरंत ही उन्हें बोल देते कि हाँ हाँ हाँ कर देंगे हम, तो ऐसा भी नहीं करें, सोच समझ के उनसे वादा करना।
0: क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत तेज़ होते हैं और बहुत सतर्क और हाँ सब जानकारी लिए हुए होते हैं। एक संदेश ये भी आया है सोनाली, ये कहते हैं कि सिर्फ बच्चे ही क्यों, बड़े भी जिद करते हैं, जो ज्यादातर अपने अनुचित मांगे पूरा करवाने के लिए जिद करने के लिए रूठ जाके या गुस्सा होके या जोर से चिल्लाने वाले जैसी उनके ये मुख्य लक्षण होते हैं। कभी थकान, कभी खराब स्वास्थ्य या कभी तनाव के कारण भी चिड़चिड़ापन आ सकता है। हाँ, बड़ों में ये आ सकता है, लेकिन चूंकि बड़े, क्योंकि घर के बड़े हैं, वो बार बार अगर इस तरह से करेंगे तो बच्चों को लगेगा कि अगर बड़े ही इस तरह से चिड़चिड़े हो रहे हैं या जिद कर रहे हैं तो आप हम छोटों को क्या समझाएंगे। तो बड़ों को भी यहाँ पे बड़ा संभल रखना पड़ता है।
1: और जो ये ना जिद्दीपन का जो गुण है ना, ये बचपन में ही जिसका पनप जाता है तो फिर आगे जाके वो बढ़ते ही जाता है। कि बचपन में माँ ने नहीं सुना तो दादी ने बात पूरी कर दी, पिताजी ने नहीं सुना तो दादाजी नाना जी ने जिद पूरी कर दी, नहीं तो बुआ ने जिद पूरी कर दी। तो फिर जो बच्चों को मालूम होता है, बड़े स्मार्ट होते हैं बच्चे, उन्हें मालूम होता है कि अभी इनने नहीं की ना तो उनसे मांग लेते हैं, और ऐसे करते उनका जिद्दी स्वभाव बन जाता है, वो बड़ेपन होने के बाद में तो और भी बढ़ते जाता है। एक साथी ने लिखा है कि बच्चे जिद वाली बात चली है बच्चों की, तो मैं बचपन में बहुत जिद्दी था, गर्मी में कोट पहना था, एक बार माताजी गर्म कोट छुपा दिया तो मैं रोने लगा, जिद पकड़ ली कि कोट पहनाया गया तब मैं चुप हुआ। बचपन से मुझे कोट अच्छा लगता था और मैं सर्दी के मौसम में पहना था जब मैं 7 साल का था,
0: यानी सर्दी के जो मोटी कोट होते हैं
1: वो भी गर्मी में
0: पहनना इस तरह की जिद करने लगे थे। तो भाई कहीं पे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा ये माहौल में गर्मी ना हो जाए, थोड़ी सी ठंडक लेकर आते हैं,
1: सुनते हैं।

0: और ये ठंडी हवा में डोलते डोलते कहाँ पहुँच गए हम?
1: हम एक ऐसे शहर में पहुँच गए जहाँ पर हमारी सखी ने कहा है कि अब हमारे शहर में अभी इतनी बारिश नहीं हो रही है, तो हो जाएगी बस थोड़े ही दिन में, इधर का पानी उधर भी चला जाएगा। वैसे एक साथी ने लिखा है कि हम बचपन में इतने नटखट थे, इतने शरारती थे कि गुल्लक के जो नोट ऊपर आ जाते थे ना, तो हम चिमटे से निकाल लेते थे।
0: ये देखिए, ये भी बड़ी खूब एक तरकीब है कि कहाँ से क्या क्या चीज़ों की में दिमाग चल जाता है सबका। और देखिए, हमें भी एक आइडिया मिल गया कि पतली सी चीज़ कोई निकालनी हो तो चिमटे का इस्तेमाल किया लिया जाए।
1: मेरी हमारे एक पहचान वाले थे, तो उनके घर में ना एक ऐसा डिब्बा आता है ना, जैसे रबड़ी वाला, जो जो खीर बनाने में वगैरह इस्तेमाल करते, तो उसमें वो उनकी मम्मी ने कहा था कि त्यौहार के दिन ही खोलना है, तो उन्होंने क्या किया कि उसमें सुई डाल दी उसमें और छोटा सा छेद कर दिया और उसे मुंह में लगा लगा के वो पीने लग गए। ऐसी भी शरारत
0: ऐसी भी शरारत होती है। और एक जिद की बात पर हमारी एक बहन ने लिखा है कि इस बार गर्मियों में हम सास बहू ने मिलकर थोड़े चिप्स बनाए हैं, बस इसलिए कि कभी बच्चे अगर जिद करते हैं तो घर में ही इसे तल कर एयर फ्रायर में भून कर दे दिया जाए। तो ये बात सही है कि आप बाजार के वो पैकेट के बदले में अगर आप ये घर के घर में ही तल लें तो भी कोई उसमें बुराई नहीं है, या एयर फ्रायर में आप उसको उसको फ्राई करके दीजिए तो वो भी बहुत अच्छा एक विकल्प है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और बारिश की जो बात हम कर रहे थे ना सोनाली, तो हमारी एक सखी ने लिखा है कि आज मैं डॉक्टर के पास गई थी, लौटते समय बड़ी तेज बारिश आई और सारा ट्रैफिक जल्दी जल्दी उसमें बहुत जल्दी जल्दी सब लोग भागे जा रहे थे। मुझे भी लौटना था, बारिश की वजह से सड़क फिसलने वाली हो रही थी, तो मैंने ओला की मतलब उन्होंने कैब बुक कर लिया था और जल्दी से बैठकर वापस आई। बार बार ऑटो वाले से धीमे चलने को कह रही थी कि कहीं फिसलने में कहीं गाड़ी स्किड कर जाती तो वो ना हो।
1: तो अपना अपना ध्यान रखना। एक हमारे सखी ने लिखा है कि बारिश के मौसम में सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए सड़क यातायात सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अत्यधिक सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी है। मानसून के दौरान सड़कों पर फिसलन बढ़ जाती है और विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिससे सड़क यातायात नियंत्रण प्रभावित होता है। हेडलाइट्स चालू रखें, भारी बारिश में दृश्यता कम होने पर लो बीम हेडलाइट्स का प्रयोग करें, वाइपर्स की जाँच शुरू करें, यात्रा शुरू करने से पहले विंडशील्ड वाइपर्स सही ढंग से काम करने की पुष्टि करें। और इन्होंने कहा कि कार के शीशों पर जमे भाप को हटाने के लिए भी डिफॉगर ऑन करें। और सबसे ज़रूरी बात है कि जो बारिश में जो मैनहोल खुले रहते हैं
0: जी,
1: तो संभल के चले, बहुत सारे लोग मोबाइल देखते हुए चलते हैं।
0: तो अभी भी ये जबकि इतनी बातें और इतनी घटनाएं हम देख लेते हैं, फिर भी इस बारे में हम थोड़े से हल्के में ले लेते हैं, केयरलेस हो जाते हैं।
1: तो लापरवाही ना बरते, जब भी रास्ते से पैदल चल रहे हो, गाड़ी चला रहे हैं, बिल्कुल भी हमें सड़क का ध्यान रखना है कि कहाँ पर गड्ढा है, तो ऐसा ना हो कि हम उस गड्ढे में गिर जाएं।
0: बिल्कुल। और अभी क्या कर सकते हैं?
1: गाना सुनते हैं।

0: बारिश में कहीं कोई ज़रूरतमंद दिखे तो उसका बाहें थाम लीजिए, उसके हाथ पकड़ लीजिए, या कहीं ऐसा लगता है कि किसी के साथ की ज़रूरत है तो अपना हाथ आगे कर दीजिए, है ना?
1: बिल्कुल, इसी का नाम तो ज़िंदगी है
0: जी। बिल्कुल, और इसी ये साथ में ही हर मौसम बड़े प्यार से निकल जाता है।
1: बिल्कुल, ऐसी सोच हो ना तो ये मौसम क्या ज़िंदगी ही बड़ी खूबसूरती के साथ आगे बढ़ जाती है।
0: बात तो बिल्कुल सही कही, संदेश पढ़ रही हो ना?
1: जी, बारिश के दिनों में रोड पर जब भी हम निकले तो अच्छे से देख कर चले, कहीं रोड में गड्ढा तो नहीं, कोई मेन होल तो नहीं खुला, कहीं कोई बिजली के करंट या खंभे में से तो पानी नहीं आ रहा है। अगर आपको पता चलता है तो तुरंत आसपास के लोगों को इकट्ठा करके विभाग को खबर करना चाहिए। यात्रा करते समय ट्रैफिक नियम की कुछ बात लिखते रहे, और उन्होंने कहा कि इस तरह से अपने जो साथी है उनकी मदद करते रहिए, कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि वायर कहीं लटका हुआ है, कहीं पेड़ कोई गिरने वाला है, तो उसकी भी जानकारी तुरंत देना चाहिए, कि कोई अगर बिल्डिंग ऐसी है कि दिख रही है कि उसमें दरारें दिखने लग गई है या टॉयल्स गिरने लग गए हैं उसके, तो इससे हमें दूसरों को सचेत करना बहुत ज़रूरी है।
0: और एक संदेश कहता है कि हम जहाँ पर रहते हैं रोज आना जाना करते हैं तो हमें वहाँ पता होता है कि रास्ते पर कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ ब्रेकर है। तो जब हम किसी नए शहर में जाते हैं या कोई अन्य शहर में जाते हैं तो बारिश में संभाल के चलना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि रास्ता कैसा है, वो रोड जहाँ पे हमें रोज का आना जाना है वो कैसा है। तो उस वक्त आप जरूर इस मौसम में ख्याल रखिए।
1: एक साथी ने लिखा है कि बारिश शुरू होने पर सड़कें सबसे ज्यादा फिसलन भरी हो जाती है, क्योंकि पानी जमा हुए तेल, ग्रीस और धूल के साथ मिलकर टायरों की पकड़ को कम कर देता है। यहाँ तक कि पानी की पतली परत होने पर भी, खासकर बारिश के पहले कुछ मिनटों में हाइड्रोप्लानिंग हो सकती है, इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। साथ ही और आप गाना सुनते हैं,
0: चलिए

0: सोनाली देखिए, अब वक्त तो वाकई में हो चुका है सयोनारा यानी कि बाय कहने का, विदा लेने का।
1: पहले श्रोताओं को हम धन्यवाद कहेंगे, इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखे, इसी तरह कमेंट्स लिखते रहिए, विविध भारती से जुड़ते रहिए, जुड़े रहिए और सखी सहेली सुनते रहिए। और अब हमें दीजिए इजाजत, आप सभी को सोनाली पाठक
0: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सहेली।

0: नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। और मुंबई की इस झमाझम बारिश में हो रही है श्रोताओं की बातचीत की बरसात और साथ में पड़ रही है गानों की फुहार। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिलसिला बातचीत का, देखते हैं ये पहला कॉल किसका आया है। हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: ग्राम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी भगवान जी, बताइए क्या हाल है आपका और सीहोर का क्या हाल है?
1: सीहोर में दीदी बारिश हो रही है और हमारा हाल भी अच्छा है दीदी। हम खेती किसानी करते हैं और हमारे इधर सोयाबीन और मक्का की बुआई हो चुकी है दीदी। 12-13 दिन की फसल हो चुकी है हमारे इधर।
0: वाह भाई वाह, क्या बात है। तो आपका अपना क्या शौक है बताइए
1: दीदी? मुझे तो क्रिकेट देखना का बहुत शौक है और मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था, अब तो नहीं खेलता हूँ दीदी।
0: अब क्यों छोड़ दिया
1: दीदी? अब क्या है, खेती किसानी में रहते हैं ना, इसलिए टाइम नहीं मिलता दीदी।
0: तो क्रिकेट खेलने के शौकीन रहे तो रेडियो से क्रिकेट कमेंट्री का बहुत चार्म रहा है, तो आप सुना करते थे क्रिकेट कमेंट्री रेडियो पर?
1: जी दीदी, हम बहुत सुनते थे। पहले क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी दीदी, तो हम रेडियो पे कमेंट्री सुनते थे दीदी और बहुत अच्छा लगता था हमको।
0: जी जी, और एक अलग नॉस्टैल्जिया होता था रेडियो से क्रिकेट कमेंट्री का, एक ही रेडियो और चार चार पांच पांच लोग मिल के सुना करते थे, है ना, वो गजब के दिन थे।
1: चार पांच क्या, हमारे यहाँ तो दीदी पूरे गाँव के करीबन 20-25 इकट्ठा लोग हो जाते थे गाँव में से, फिर सुनते थे दीदी।
0: एक घर में रेडियो होता था और आंगन की मुंडेर पर रख दिया जाता था और बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर रेडियो सुनते थे, है ना। बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है खुददार और गाने के बोले तुम सा कोई प्यारा मासूम नहीं है, ये वाला भी सुनना है दीदी।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने फोन किया, सुनते हैं खुददार।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्ते मैम साहब।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं राजस्थान के डीडवाना और कुसावन जिले के छोटी बेरी गांव से सिकंदर खान बोल रहा हूँ जी।
0: जी बताएं सिकंदर जी, क्या हाल है? ये कोयल की आवाज आ रही है भाई, बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या बाघ से बोल रहे हैं क्या किसी?
1: नहीं एक्चुअल में क्या, अभी मैं खेत में बैठा हुआ हूँ तो वहाँ से कॉल कर रहा हूँ आपको।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया। बारिश नहीं हो रही है
1: राजस्थान में? अभी एंट्री हो रही है धीरे धीरे दक्षिण राजस्थान में, तो मानसून आ गया अभी।
0: बढ़िया, ये कोयल की कूक तो बड़ी प्यारी लग रही है, बड़ी मीठी तान छेड़ी है कोयल ने। कौन कौन से पेड़ हैं खेत के आसपास?
1: खेत के अंदर तो ये जामुन के हैं, पपीते हैं, आम वगैरह है।
0: तो खेत में किस चीज की बुआई चल रही है अभी?
1: अभी तो ये मानसून की बारिश में जो ये बाजरा है, गंवार है, ये मोठ वगैरह की बिजाई चल रही है जी।
0: और उसके बाद फिर धान की बुआई होगी जब बारिश होगी, तब
1: फिर वो जो रबी वाली फसल है वो स्टार्ट हो जाएगी।
0: जी जी, खेती किसानी की सुविधाएं क्या क्या उपलब्ध हैं आपके यहाँ?
1: यहाँ पे हमारे वैसे तो ये इंदिरा गांधी नहर की भी सुविधा है, उसके अलावा ये ट्यूबवेल है, कुएं वगैरह, इनसे भी सिंचाई हो जाती है। इन दिनों में मानसून जो हो जाता है तो उसकी फसल अच्छी होती है।
0: बढ़िया, बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: फकीरा पिक्चर है उनका गाना है, होके रहूंगी तेरी,
0: दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी।
1: मैं साहब बहुत पुराना श्रोता हूँ, जब से वो जो ये हेलो फरमाइश शुरू हुआ था कमल शर्मा ने 1996 में स्टार्ट किया था, वो मैंने पहला प्रोग्राम सुना था मैम साहब।
0: जी जी, बहुत बढ़िया, तब से आप सुन रहे हैं, तब से तो कितने सारे बदलाव हुए प्रोग्राम्स में,
1: बहुत काफी चेंजेस हुए हैं साहब। लेकिन 26 साल में कॉल लगा नहीं, लेकिन 2026 में मेरी दूसरी बार बात हो रही है विविध भारती में।
0: जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम फकीरा।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार, मैं इंदौर से सत्यप्रकाश दीक्षित बोल रहा हूँ ममता दीदी।
0: जी सत्यप्रकाश जी, बताइए क्या हाल है आपका, इंदौर का क्या हाल है, बारिश वगैरह हो रही है?
1: हाँ, अभी पिछले एक हफ्ते से प्रकृति की बहुत अनुपम कृपा है कि अच्छी बारिश हो रही है और चारों तरफ हरितिमा और प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ गया है
0: जी।
1: और ऐसा लगने लगा है कि सावन बहुत निकट ही है और आनंददायी वातावरण हो गया है।
0: सावन का जब इंतजार होता है तो मन यादों के गलियारे में पहुंच जाता है, तो जब सावन आता था तो आप अपने यादों के गलियारे में जाइए और बताइए कौन सा सावन आपके लिए बड़ा यादगार रहा है। बचपन में जो सावन के झूले पड़ते थे नीम की पेड़ पर, तो कभी झूलने का मौका मिला?
1: भी याद आते हैं, पेड़ों पे जब गांव में जाते थे तो पेड़ों पे झूले झूलते थे, बड़ा मनोरम वातावरण लगता था सावन का। चारों तरफ एक जो प्राकृतिक सुषमा प्रकृति की दिखती थी बहुत ही मन भावन रहती थी और आज भी वह सब देखने के लिए मन तरसता है। अब शहर में जरूर रह रहे हैं पर गांव की वो हरितिमा और वसुंधरा जो प्राकृतिक वातावरण में जो सावन में हो जाती है वो बहुत याद आती है और अक्सर हम जाया भी करते हैं गांव में, तो वो पुराने दिनों को याद करके सावन को याद करके मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है, हर्षित हो जाता है।
0: तो उन दिनों में कजरी वगैरह गाई जाती थी सावन में, याद है क्या आपको?
1: हाँ, मैंने बहनों से भी सुने हैं वो। अभी तो खैर मैं चूंकि अभी वरिष्ठ नागरिक हूँ 71,
0: अच्छा।
1: तो थोड़ी सी याददाश्त भी अब थोड़ी सी क्षीण हो चली है, पर हाँ मैंने बहुत सुने हैं, बड़े मन भावन गीत और कजरी रही है।
0: आप बताइए आज कौन सा गाना सुना चाहेंगे? हाँ। और ये भी बताइए, आपने कहा इतने वरिष्ठ नागरिक हैं, कहाँ पर आपने काम किया और कितने साल से रेडियो सुन रहे हैं?
1: मैंने बैंक में अधिकारी के रूप में काम किया करीब 40 वर्ष।
0: अच्छा।
1: और अभी 10 साल से सेवानिवृत्त हूँ, सामाजिक सेवा में और दूसरे कार्यों में समय निकल जाता है, पारिवारिक दायित्व भी है, उनका भी निर्वहन करते हैं। लोग रिटायरमेंट को ये कहते हैं कि अब आपकी सेकंड इनिंग चालू हो रही है, तो वो एक तरह से सही भी कहते हैं कि अपन उन दायित्वों को पहले सर्विस में रहते नहीं पूरे कर पाए तो उन दायित्वों का निर्वहन कर लें और जो आनंद कहीं किसी विशेष स्थान की यात्रा वगैरह का नहीं ले पाए हों, कंपोजिट टूर प्रोग्राम हो, जब समय मिलता है तो पर्यटन के लिए, तो उन स्थानों पे जब भी जाने का मौका लगता है तो समूह के साथ चले जाते हैं और
0: बिल्कुल बिल्कुल घूम के आए और एंजॉय करें। तो सत्यप्रकाश दीक्षित जी का फोन बीच से डिस्कनेक्ट हो गया, बातचीत उन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से की, शुक्रिया अदा कर रहे हैं।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं अशोक आनंद बोल रहा हूँ, लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से।
0: आपने लेक सिटी उदयपुर कहा, तो पूरे देश में बहुत सारी जगहों पर खूब बारिश हो रही है, मुंबई में भी, तो क्या आपके उदयपुर में बारिश हुई तो झीलें भर गई?
1: कल शाम को भी बहुत झमाझम बारिश हुई थी।
0: क्या बात है, झीलें लबालब भर गई होंगी फिर तो?
1: नहीं, अभी उसमें बहुत टाइम लगेगा, अभी उसमें जुलाई अगस्त तक में भरेगी। झीलों की नगरी है तो काफी सारी झीलें हैं, और जैसे जैसलमेर लेक है तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।
0: जब बारिश होती है तो आप सोचते हैं कि राजस्थान में खासतौर से पानी की कमी होती है, तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कुछ सोचते हैं, कुछ प्लान करते हैं लोगों से मिलजुल कर?
1: मैंने जैसे कई बार देखा अपने घर पे भी, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जैसे अपने छत पे जो पानी होता है उसको पाइप से अपने वापस बोरिंग के अंदर जैसे सेट करवा रखा है, और वेस्ट पानी करते नहीं है। पर राजस्थान में हमारा उदयपुर शहर जैसे है ना, इतना पानी का यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम जैसे राजस्थान में लोग बोलते हैं कि सूखा होगा, वो एक्चुअली क्या है, जोधपुर जैसलमेर उससे ज्यादा सूखा होता है।
0: जी जी, वहाँ की और जगहों के बारे में बताइए, उदयपुर के आसपास क्या कुछ है पर्यटन?
1: उदयपुर के बाद में बताना चाहूंगा कि जैसे उदयपुर के पास में एक सज्जनगढ़ फोर्ट किला है, जिसकी दीवार विश्व की सबसे दूसरे नंबर की दीवार है, और उदयपुर

0: पर्यटक की दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो विश्व में एक नंबर पे आता है।
1: वाह।
0: तो पहले किसी जमाने में फर्स्ट प्रायोरिटी कश्मीर और दिल्ली हुआ करती थी, अब उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी मोस्टली होती है कि राजस्थान में उदयपुर या और दूसरे किले फोर्ट वगैरह
1: जी,
0: और राजस्थान के कुछ अच्छे मंदिर जो विश्व प्रसिद्ध थी उनको देखने के लिए, विजिट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं।
1: क्या बात है, आप जो जानकारी दे रहे हैं हमारे श्रोताओं की जानकारी समृद्ध हो रही होगी और बड़ा अच्छा लग रहा है इतनी सारी बातें आपने बताई।
0: मैं और आपसे अर्ज करना चाहूंगा।
1: जी हाँ,
0: गाना आज का मेरा जो पसंद का है वो कुदरत फिल्म का है, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती, नितिन मुकेश जी मुझे फेवरेट सिंगर है, बहुत अच्छा लगता है उनका गाना सुनना मुझे।
1: और मुकेश के गाने
0: जी, मुकेश के भी सुनता हूँ, किशोर जी के भी, लता जी के भी, खासकर मदन मोहन जी और लता जी का जो कॉम्बिनेशन है ज्यादा लाइक करता हूँ।
1: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया और इतनी सारी बातचीत की। तो बस विविध भारती से भी सारे श्रोताओं से आपकी दोस्ती यूं ही सलामत रहे इस बात के साथ बातचीत को दे रहे हैं विराम और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: दीदी, आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लवानिया बोल रहा हूँ।
0: राजू जी, आगरा में क्या खास है बताइए, कोई विशेष धरोहर है?
1: जी दीदी, आगरा में तो सबसे पहले तो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल ही है, लाल किला है, सिकंदरा है, आगरा का पेठा।
0: आगरे का पेठा भी बहुत मशहूर है, क्या बात है भाई।
1: जी बिल्कुल, और आज मेरा सौभाग्य है कि मेरी बात आज ममता दीदी से हो रही है, बड़ा खुशी हो रही है दीदी मेरे को।
0: जी बहुत शुक्रिया, हमें भी बहुत खुशी हो रही है। अब जरा आगरे के ताजमहल के बारे में बताइए, आपने देखा है ताजमहल?
1: देखिए दीदी, मैं तो ब्लाइंड पर्सन हूँ।
0: अच्छा अच्छा, ओ
1: तो मैं तो कभी ताजमहल गया नहीं, मैं तो उन्हीं जगह जाता हूँ जहाँ भगवान का मंदिर होता है, क्योंकि भगवान के मंदिर में हमें मंदिर नहीं देखना होता है, भगवान हमें खुद देखते हैं। वो ऐसी जगह जाते हैं जहाँ हमें भगवान को दिखाई दे या न दे, लेकिन भगवान हमें देखते।
0: जी जी
1: दीदी, मैं
0: बिल्कुल, बहुत सही बात है। तो बताइए और क्या करते हैं आप दिन भर घर में?
1: जी दीदी, मुझे संगीत से शौक है, मैं रेडियो सुनता हूँ, आपके विविध भारती के सभी कार्यक्रम सुनता रहता हूँ अपने रेडियो के माध्यम से।
0: अब हमें बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, और आपने कहा कि संगीत का शौक है, तो निश्चित रूप से आप भी गाते होंगे, क्या सीखा है आपने गाना क्या?
1: बिल्कुल बिल्कुल, आज की फिल्म है लम्हे, आवाज है लता जी, इला अरुण जी और सखियों की, और गाने के बोल हैं मेरे।

0: तूने किसको याद किया, ये वाला गाना सुनना था दीदी।
1: वाह, बहुत अच्छा गुनगुनाया आपने। तो आपने कौन सा संगीत सीखा, शास्त्रीय संगीत या सुगम संगीत?
0: जी दीदी, मैं ज्यादातर लाइट म्यूजिक में चलता हूँ, कथाओं में, भागवतों में, सुंदरकांड में, सत्संगों में। मैंने कुछ नहीं सीखा, चोरी कभी मैंने कहीं से कुछ नहीं सीखा, मेरे ऊपर भगवान की कृपा है जो कुछ भी है।
1: अच्छी बात है। तो कोई लोकगीत भी याद है उत्तर प्रदेश का?
0: जी बिल्कुल, ब्रज का लोकगीत मेरे को बिल्कुल याद है।
1: तो सुनाइए फिर हमारे श्रोताओं को भी।
0: अरे बंसी।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: टेकचंद अग्रवाल बोल रहा था मैडम, परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से।
0: जी टेकचंद जी, बताइए क्या हाल है आपका और छिंदवाड़ा का क्या हाल है?
1: मैडम हम तो बहुत बढ़िया हैं, आप कैसे हैं?
0: बढ़िया, एकदम बढ़िया। बारिश वारिश हो रही है?
1: हाँ मैडम, चार दिन से लगातार बारिश हो रही है, कहना चाहिए झमाझम बारिश हो रही है, जैसा कि हम लोग चाहते हैं, कहना चाहिए एक प्रसन्नता की बात है। और साथ में हमारे जो किसान भाई हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं।
0: स्वाभाविक है उनकी खुशी, उनके लिए तो पानी एक अमृत की तरह है, सारा कुछ पूरी खेती किसानी उनकी बारिश पर ही निर्भर करती है ना।
1: जी जी जी।
0: तो आप अपने बारे में बताइए, आपका क्या काम काज है?
1: मैडम मैं जो हूँ एक सीनियर सिटीजन हूँ, और मेरे लिए ये बड़ी खुशकिस्मत की बात है कि मैं ये जो जुलाई माह है ये मेरे लिए काफी वरदान साबित है, कहना चाहिए।
0: अच्छा, किस सिलसिले में?
1: क्या हुआ मैडम, सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि 2001-07-2020 को मेरा रिटायरमेंट हुआ है ऑल इंडिया से, तो सुरक्षित हम अपने काम से अपने घर लौटे हैं, ये बहुत खुशी की बात है।
0: कहाँ काम करते थे?
1: कोल इंडिया में मैडम, तो मैं उससे कहना चाहिए 38 वर्ष देकर के सुरक्षित अपन घर पर पहुंच गए हैं, ये एक हमारे लिए काफी और हमारे परिवार के लिए खुशी की बात है।
0: जी जी, बहुत बढ़िया बात है। तो वहाँ की कोई अनुभव, कोई छोटी सी घटना, कोई बात हो तो बताइए।
1: पहले जो होता था वो काफी असुरक्षित मतलब रहता था माइंस में काम करना, लेकिन अभी सरकार ने इतना ज्यादा सुरक्षित मतलब वर्करों को कर दी गई है, तो कहना मैडम अब उतना जो हमारे साथ जो घटनाएं होती थी वो अब नहीं के बराबर हो गई है। हम अपनी लापरवाही से कहना चाहिए या असावधानी जो होती है उससे दुर्घटनाएं होती है।
0: जी जी।
1: तो ये कहना चाहिए एक बहुत अच्छी बात है कि आज के समय में जो दुर्घटनाएं नहीं के बराबर हो रही है वो काफी हमारे मजदूरों को या हमारे जो साथ के कामगार हैं लोग को काफी प्रोत्साहित करती है इस ओर काम करने के लिए।
0: जी,
1: नहीं तो पहले के मजदूर मैडम काम करना छोड़ करके भाग जाते थे।
0: तब भी बहुत मुश्किल काम है, थोड़ा तो जोखिम भरा काम है ये।
1: धरती को चीर करके उसके सीने से कोयला निकाला जाता है, ये एक बहुत बड़ी बात है, और प्रकृति के विरुद्ध काम करना कहना चाहिए किसी भी क्षेत्र में हो, प्रकृति के विरुद्ध करना हम देख रहे हैं कि हमारे लिए नुकसानदायक ही हो, चाहे वो हम पृथ्वी के अंदर से कोयला निकाल रहे हों या बाहर प्रकृति के विरुद्ध जो काम कर रहे हैं, आज जो प्रदूषण हो रहा है या हम पेड़ काट रहे हैं, तो उसका भुगतान अभी हम ये बारिश देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे कई जगह पे हो रही है, कई जगह पे हो ही नहीं रही।
0: जी बिल्कुल, मतलब जो पर्यावरण का असंतुलन होता है इस सबसे, वो हम सबके लिए बहुत नुकसानदेह है। अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म है कहीं दिन कहीं रात, महेंद्र कपूर जी और आशा जी की आवाज है, संगीत ओपी नैयर का है, गीत है एचएस बिहारी का, और गीत है मैडम तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में।
0: क्या बात है, बढ़िया गीत चुना है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार
1: वो प्यार भरा सुनने वाले हो, हेलो फरमाइश सुनने वाले को प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है पांडुरंग मोरे, मुक्काम पोस्ट वारंगा फाटा, तालुका कळमनुरी, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी पांडुरंग जी बताइए, बड़ा लंबा चौड़ा परिचय देते हैं।
1: कैसा है बम्बई में मौसम? कैसा है इधर? बारिश नहीं है, उधर बारिश होंगी तो थोड़ा भेज दो हमारे इधर महाराष्ट्र में।
0: एकदम भीगा मौसम, खूब सारी बारिश हो रही है और खूब सारी बारिश आपके रेडियो सेट तक भेजेंगे आपके गाने के माध्यम से और आपकी बातचीत के माध्यम से। जी बताए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है हीरो, गाने के बोल है तू मेरा हीरो है मैं तेरा, हीरो टाइटल सॉन्ग का गाना सुनना है।
0: सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश.
1: नमस्कार मैम.
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं सेवन सिस्टर त्रिपुरा से आशुतोष देवनाथ बोल रहा हूँ.
0: प्राकृतिक सुषमा जहाँ पर मौजूद है और दिल वहाँ जाए तो दिल वहीं पर रुक जाने का मन करता है ना. तो सबसे पहले आप त्रिपुरा के हालचाल बताएं. त्रिपुरा में जो प्राकृतिक छटा है वहाँ के बारे में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को.
1: मैम अभी तो त्रिपुरा में बारिश का सीजन है और कुछ दिन से लगातार बारिश चल रहा है. कभी कभी रुकता है, धूप निकलता है, फिर बारिश, ऐसा ही चल रहा है लगभग दो महीना.
0: तो ये बताइए कि बारिश जब होती है ज्यादा तो वहाँ के लिए नुकसानदेह है या सही है? ठीक है.
1: नहीं मैम जी, ज्यादा बारिश होने से तो नुकसान तो हो ही जाता है
0: बिल्कुल. और वहाँ के आसपास की जगहों को आपने कहा ना सेवन सिस्टर्स, यानी कि वो जो कौन कौन से उसमें शामिल है सेवन सिस्टर्स में बताइए.
1: सेवन सिस्टर में त्रिपुरा का पासी है आसाम, और आता है मेघालय,
0: अरुणाचल प्रदेश,
1: मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड.
0: मतलब खूबसूरती का आलम है. तो त्रिपुरा के आसपास क्या है बताइए.
1: त्रिपुरा में तो मैं जहाँ रहता हूँ मैम जी, त्रिपुरा का नॉर्थ साइड में मैं रहता हूँ. ये ऊनकोटी टेम्पल, बाहर से बहुत लोग आता है दर्शन करने के लिए. ये सर्च करने से मैम जी आपको मिल जाएगा.
0: जी जी जी.
1: इंडिया का बाहर से भी आता है मैम जी.
0: जी बिल्कुल,
1: देखने के लिए.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: त्रिपुरा का और मशहूर टेम्पल है त्रिपुरेश्वरी मंदिर. देवी का और शरीर का एक अंग घिरा था त्रिपुरेश्वरी मंदिर में, जो असम में भी एक घिरा था और बन गया बड़ा टेम्पल माँ कामाख्या.
0: तो ये शक्तिपीठ है.
1: बिल्कुल.
0: और एक और खास बात है त्रिपुरा की, त्रिपुरा से एक बहुत बड़े संगीतकार आए जिन्होंने पूरी फिल्मी दुनिया में जिनके संगीत का जादू छाया, हम सब के दिलों पर आज भी कायम है उनके संगीत का जादू. वो नाम आपको पता है?
1: बिल्कुल पता है मैम जी, सचिन देव बर्मन
0: जी.
1: और उनका बेटा तो पिताजी को भी छोड़ के चला गया,
0: राहुल देव बर्मन. तो इसलिए त्रिपुरा और खास हो गया ना आपके लिए. तो
1: जी जी.
0: तो बताइए फिर कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं आज?
1: जी आज मुझे याद आया 1980 में रिलीज हुआ फिल्म का नाम है फिर वही रात, और इस गाने को गाया है सुरों का मल्लिका लता जी ने बिंदिया पेरिस से. और इस गाने को लिखा है मैम जी संगीत का सबसे बड़ा राइटर में एक नाम है मजरू सुल्तानपुरी जी.
0: जी गीतकार.
1: संगीत तैयार किया है जी.
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने त्रिपुरा से हमें फोन किया. अब बातचीत कर रहे हैं

0: हेलो फरमाइश,
1: आपको प्रणाम है।
0: आपको भी प्रणाम है। नाम और कहाँ से बोल रहे हैं जरा बता दीजिए।
1: पहड़िया वाराणसी उत्तर प्रदेश अशोक विहार कॉलोनी फेज टू से अनिल रमा गुप्ता गोन।
0: वाह भाई बढ़िया। तो ये नाम परमानेंट लगा रखा है अपने नाम के साथ अपनी पत्नी का?
1: जी जी जी, जब भी फरमाइश भेजता हूँ मैं वाराणसी से, वाराणसी का रहने वाला हूँ, यही बोलता हूँ श्रोता दंपति अनिल, जैसे मेरा नाम है अनिल गुप्ता गोंड और वाइफ का नाम है रमा गुप्ता गोंड,
0: तो
1: श्रोता दंपति अनिल रमा गुप्ता गोंड।
0: जी बहुत बढ़िया, आपने स्पष्ट कर दिया। तो बताइए अनिल जी और रमा जी के क्या हाल है और बनारस का क्या हाल है?
1: जी बनारस में तो इस समय तो मौसम बहुत सुहाना हो गया है, बरसात हो रही है। दो तीन दिन पहले तो बहुत गर्मी थी।
0: तो अब जरा बताइए कि बारिश हो रही है बनारस में, गंगा जी हैं, तो इस समय क्या बाढ़ आई है उसमें उफान पर है या नॉर्मल है नदी?
1: नहीं नहीं, अभी उतना नहीं है। जब एक्चुअल में जब ये उत्तराखंड में बरसात बहुत तेज होती है तो पानी का स्तर बढ़ने लगता है, लेकिन अभी इधर बरसात तो उतनी हुई नहीं जितनी उम्मीद रहती है हर साल, तो उतनी बरसात इधर उत्तर प्रदेश में कम हुई है बरसात।
0: जी बनारस में जो गंगा आरती होती है शाम को उसकी बड़ी प्रशंसा होती है, आप जरा बताइए क्या होता है उसमें?
1: गंगा आरती में एकदम बहुत बड़े बड़े वो दीपक टाइप के लेके उसमें हवन सामग्री जलाई जाती है।
0: गंगा जी में नौका विहार का भी एक अलग आनंद होता है, तो आपने कभी नौका विहार किया है वहाँ रहते हुए?
1: कई बार की है। चलो मैं तो पहाड़िया क्षेत्र में रहता हूँ, लेकिन मैं गंगा जी में 78 में बनारस में आया था, मैं पहले दिल्ली में रहता था, तब से बहुत बार मैंने गंगा जी स्नान किया है, पूजा पाठ और

0: चीज देखी गई है। मैं रहता हूँ वहीं बगल में सारनाथ है।
1: अरे वाह क्या बात।
0: तो सारनाथ में जैसा आप जान ही रही हैं कि अशोक स्तंभ है, राष्ट्रीय चिन्ह है म्यूजियम में।
1: फिर बनारस का पान, बनारस की चाट बहुत मशहूर है, और बनारस मतलब पूरे उत्तर प्रदेश का लोकगीत बहुत मशहूर है, बनारस की ठुमरी बहुत मशहूर है। तो इनमें से आपको क्या शौक है? क्या बनारस की ठुमरी या बनारस का कोई लोकगीत याद है, सुनाना चाहेंगे श्रोताओं को?
0: कजरी जो है, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू।
1: अरे वाह क्या बात।
0: मिर्जापुर कैला गुलजार हो।
1: तो गा के सुनाई गनवा।
0: मिर्जापुर कैला गुलजार हो, मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू।
1: बहुत बढ़िया। बताइए कौन सा गाना?
0: देखिए बरसात का मौसम है तो मल्हार राग पर एक गाना था लगान फिल्म के, नर गनर घिरा बदला यार रहमान जी जावेद अख्तर जी के बाद में लिखल।
1: बेहतरीन गाना चुना है बारिश के मौसम के अनुरूप। तो बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं और सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: दोस्ती वो नहीं जो जान देती है, दोस्ती वो भी नहीं जो मुस्कान देती है, अरे सच्ची दोस्ती तो वो है जो पानी में गिरा हुआ आंसू भी पहचान लेती है। नमस्कार मैम जी।
0: क्या बात है भाई, नमस्कार। आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: राजेंद्र गंगवार, कस्बा कोलिया, तहसील नवाबगंज, झुमका सटी, बरेली, उत्तर प्रदेश से आपसे वार्तालाप कर रहे हैं मैम जी।
0: क्या बात है भाई, बरेली से बोल रहे हैं।
1: हाँ जी मैम जी, आपसे लगता है हमारी पहली बार बात हो रही है।
0: जी, बरेली का नाम एक गाने में आता

0: कौन सा गाना है, याद है क्या आपको?
1: हाँ जी, साया मूवी का है, झुमका गेरा रे बरेली के बाजार में।
0: और बरेली की और कोई खासियत हो तो बताइए आपकी नजर से।
1: बरेली की खासियत एक जरी के नाम से जाना जाता है, और एक नया काम चल रहा है, राम वाटिका जो रामायण में दिखाया गया वो सभी बनने आया है मैम जी।
0: अच्छी बात है। और अपने काम काज के बारे में बताइए, आप क्या करते हैं?
1: मैम जी अभी तो खैर हमारे मकान का काम चल रहा है, वैसे तो हम भी जरी का ही काम करते हैं।
0: जरी का काम करते हैं, मतलब जरी वाली साड़ियाँ तैयार करते हैं या और दूसरी तरह के कपड़े कुर्ते क्या बनाते हैं?
1: मैम जी हम सूट भी बना लेते हैं, साड़ियाँ भी बना लेते हैं, आए शेरवानी भी बना लेते हैं, कलियाँ भी बना लेते हैं, और जो साड़ी होती है रेशम करदाना मोती ये भी बना लेते हैं।
0: तो जरी के किस काम की ज्यादा मांग होती है, क्योंकि आजकल लोग सादा पसंद करते हैं ना ज्यादातर?
1: सबसे ज्यादा डिमांड होती है लहंगा चुन्नी की
0: शादियों में।
1: हाँ मैम जी
0: बताएं कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: हाँ जी, मूवी का नाम रहेगा दिलवाले, गाने के वो रहेंगे सातों जन्म मैं तेरे साथ रहूंगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, अब पूरी हो रही आपकी फरमाइश, सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: तो दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है, उनसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि आगामी 2 माह तक वे हमें कृपया फोन ना करें, ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें कॉल करने का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम, जिसे हम रिले कर रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से FM 100.7 MHz पर। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 58 है। ये खोड़, केसर, छतौली, इंजानी, बरपटिया, पुतकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 14 है। ये मकनपुर, नवाडी, पोड़िपा, पेंडारी, सिंघरा, भरदा, गौरा, मदन नगर, गणेशपुर, चिटका, बहरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के राजपुर और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 11 है। ये अखोरा, कुंदीकला, जामदोहर, सिधवा, गोपालपुर, मुरका, अतौरी, ठरकी, चिनिया, कनक पुर, डकिया, शिवपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा, उदयपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 8 है। ये पड़ौली, अमड़ी, किशुनपुर, मसगाड, सत्तीमुड़ा, लक्ष्मणगढ़, सस्कालो, तेंदुटिकरा, मानपुर, बरिमा, कुदारीडी, केसरा, सरभंजा, ललिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगा, कांसाबेल और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये कुंजारा, श्रीटोली, मयूरचुंदी, उपका पानी, भड़ामाचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, साजा पानी, तीता पाकेर, सोनाजोरी, घंता डांड, परसा डांड, पेटा, बिमड़ा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 105 है। ये महाराजगंज, बंगरसूता, कुड़ेकेला, बोजिया, सिंघीछाप, बनहर, लोटान, कंचीरा, पोटिया, आमगांव, झगरपुर, सागरपाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा और करतला में हाथियों की कुल संख्या 10 है। ये कटकोना, जिलगा, गीत कुंवारी, लबेद, बोतली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के केंदई, जडगा, एतमानगर और पसान में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये मड़ई, कोदवारी, भूडूपानी, कठमोरगा, बांधापारा, लालडी, झुंडकीडी, जुनवानी, कुकरीकादर, बनिया, चोटिया, लालपुर, सेमरहा, बोकरा मुड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये झिंगोल, तराईमाल, नागदरहा, पंडरीपानी, भैंसगढ़ी, बड़गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये कोठारी, तालदादर, पकरीत के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये ओड़, अमलोर, ताराझर, डडई पानी, बुडार, जिडार, सिहार, छिंदौला, लूठापारा, फरसरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल न करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।
2: प्रायोजित

गीत कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट अभी आपने सुना। इसका प्रसारण आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से किया जा रहा था। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रमों से हम आपको परिचित करा दें। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम शाम गजल, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे चंदन दास की आवाज में कुछ सुमधुर गजल। महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा घर द्वार शाम 5:30 पर। इसमें चर्चा का विषय रहेगा छोटा परिवार सुखी परिवार, जनसंख्या नियंत्रण खुशियों का आधार। इसके अलावा आप सुनेंगे चर्चा मादक पदार्थों का सेवन मौत को आमंत्रण। साथ ही सुनिएगा PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। और इसके अलावा आप सुनेंगे स्वास्थ्य चर्चा बरसात में खान पान और स्वच्छता का रखें ध्यान। शाम 6:00 हिंदी में समाचार रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार रिले करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से शाम 6:10 पर। कार्यक्रम फिल्म संगीत हमारे केंद्र से आप सुनेंगे शाम 6:20 पर, शाम 7:00 और रात्रि 8:30 पर। किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम होगा किसान वाणी, हमेशा की तरह शाम 7:20 पर। कार्यक्रम किसान वाणी में आज चर्चा का विषय रहेगा नेशनल मिशन ऑन एडिबल आयल पाम। साथ ही सुनिएगा नसीहत समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन अपनाएं और मृदा की सेहत सुधारें। और इसके अलावा आप सुनेंगे कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव, आज का टिप और आज का मौसम। गैर फिल्मी गाने हमारे केंद्र से सुनिएगा रात्रि 8:20 पर। समाचार संध्या रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 8:45 पर। विविध भारती कार्यक्रम में रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 9:00। विविध संगीत सुनिएगा हमारे केंद्र से रात्रि 10:00। और अपनी पसंद के गाने आप सुन सकते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश में रात्रि 10:30 से। हिंदी में समाचार रात्रि 11:00 और अंग्रेजी में समाचार रात्रि 11:05 पर रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
5: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संदली
6: भारती।
7: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagad, यानी shrotarayagad@gmail.com।
8: FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:10 हुए हैं।

0: लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
1: मन का सुकून दिल की आरती,
2: सुरीली संदली
7: भारती। कार्यक्रम शाम गजल में इस वक्त आप सुन रहे हैं चंदन दास की आवाज में कुछ लोकप्रिय गजल।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
4: कार्यक्रम शामे गजल के आखिर में लीजिए एक बार फिर सुनिए चंदन दास की आवाज में ये गजल।

और इसी के साथ ही कार्यक्रम शामे गजल अब समाप्त होता है। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार।

घात वात सुनैया जम्मो श्रोता संगवारी दीदी बहनी मल्ला गोमती के राम राम जय जोहार। त बहनी हो मौसम के गोट करबो त वर्षा के मौसम हवे और ई मौसम में हमन ला विशेष साफ सफाई और सावधानी के जरूरत पड़ते। काबर की ई मौसम में पानी हर दूषित रहते और पानी से ही नाना प्रकार के बीमारी फ्लू टाइफाइड जैसन बीमारी होए के संभावना रहते। त बहनी हो वैसे तो हमन अपन हर कार्यक्रम में आप मल्ला सावधानी रखे के बात बतात रथन, तो निश्चित ही आप मन वर्षा के मौसम ला दिखत हुए अपन स्वास्थ्य के विशेष ध्यान रखिया। तो ये तो हो इस मौसम के गोट, अब आज के बैठकी के गोट ला बता दिन। तो आज के गोट में बात करबो छोटा परिवार सुखी परिवार, जनसंख्या नियंत्रण खुशियों का आधार। चर्चा में बात करबो मादक पदार्थों का सेवन मौत को आमंत्रण। योजना महावय पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना। क्रम स्वास्थ्य चर्चा में खान पान और स्वच्छता का रखें ध्यान। और सुघर लोकगीत संग में सुनाबो आप मल्ला। तो आवा बहनी हो चर्चा में आगु बढ़ी। बहनी हो छोटे परिवार पारिवारिक समूह है जो जेमा माता पिता और परिवार ओकर बच्चा साथ में रहते हैं, यही ला छोटे परिवार सुखी परिवार कहते हैं। सदस्य के संख्या कम होए के कारण जम्मो जरूरत हर आसानी से पूरा हो जाते। माता पिता बच्चा मन के पढ़ाई लिखाई और देखभाल में पूरा ध्यान दे सकते। सीमित सदस्य के कारण घर के खर्च नियंत्रण में रहते और बचत करना आसान हो जाते। कम मनसे होए से परिवार में आपसी समझ तालमेल बेहतर होते। सीमित आय में भी माता पिता अपन लड़का के जम्मो जरूरत पूरा कर सकते हैं। भोजन कपड़ा अच्छा शिक्षा ला पूरा करते हैं। अधिक बचत होए मा भविष्य सुरक्षित होते। बच्चा कम होए मा माता पिता हर बच्चा के ऊपर अधिक व्यक्तिगत ध्यान दे सकते। उमल्ला बेहतर संस्कार नैतिक मूल्य उच्च शिक्षा आसानी से दिलाए जा सकते। छोटे परिवार मा माता पिता बच्चा मन के स्वास्थ्य मा बेहतर ध्यान दे सकते। और सदस्य कम सदस्य रहे माँ घर के वातावरण शांत रहते और तनाव मुक्त भी रहते, जो नर मानसिक विकास पर जरूरी होते। सामाजिक योगदान जनसंख्या विस्फोट के वर्तमान चुनौती ला देखते हुए छोटे परिवार राष्ट्र और समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देते। छोटे परिवार सुखी परिवार एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक अवधारणा है, जेकर अर्थ सीमित सदस्य वाला परिवार ही खुशहाल होते। छोटे परिवार में माता पिता सीमित आय में बच्चा मनला बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य व पर्याप्त समय दे सकते हैं, जेकर से ओकर भविष्य और जीवन तनाव मुक्त रहते। छोटे परिवार न केवल पारिवारिक खुशहाली लाते बल्कि माता पिता के मानसिक तनाव ला कम करके घर में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखे में भी मदद करते। बहनी हो जनसंख्या नियंत्रण में परिवार के सदस्य के मूल कर्तव्य होते कि परिवार में परिवार ला छोटे रखें, काबर कि परिवार समाज के सबसे मूल इकाई है। जनसंख्या बढ़े के कारण आवास खाना पीना के पूर्ति हो पाना संभव नहीं हो। बहनी हो दो ही संतान के बाद आप मन परिवार नियोजन करा के राष्ट्र व समाज में योगदान दे सकत हो। छोटे परिवार में

माता पिता के जिम्मेदारी अधिक समानता होते और छोटे परिवार के महत्व भी यही है कि परिवार जितका सीमित रही उतकी हमार जरूरत पूरा होई। तो ये तो हुई साज के गोड़ चर्चा, आओ गोड़ चर्चा ला देबो विराम और सुनबो सुघर लोकगीत।

70,000 तक के सब्सिडी देते, जेकर से हर महीना 300 यूनिट तक के बिजली मुफ्त मिलते। योजना के मुख्य उद्देश्य बिजली बिल के कम होना और परिवार ला ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना। योजना के मुख्य लाभ 300 यूनिट मुफ्त बिजली जैसन 1 किलोवाट सिस्टम में 30,000 तक के सहायता, 2 किलोवाट सिस्टम पर 60,000 तक के सहायता, 3 किलोवाट सिस्टम पर 78,000 तक के सहायता। एकर बर आसान ऋण पैनल लगाए बर बैंक से लगभग 7% ब्याज दर पर 2,00,000 तक के लोन आसानी से मिल जाते। एकर बर कौन पात्र है? आवेदक भारत के स्थायी निवासी होना चाहिए, परिवार के नाम पर एक वैध बिजली कनेक्शन होना चाहिए, छत में सोलर पैनल लगाए बर पर्याप्त जगह 1 KV बर लगभग 100 वर्ग फुट जगह होना चाहिए। आवेदन करे के प्रक्रिया एकर आधिकारिक वेबसाइट PM सूर्य घर मुफ्त नेशनल पोर्टल में जाके आवेदन कर सकत हो। अपन राज्य के बिजली वितरण कंपनी के चयन करके खाता नंबर के साथ लॉग इन करा और फॉर्म भरे बर आवेदन स्वीकृत होए के बाद कोनो रजिस्टर वेंडर से सोलर पैनल लगवाए जा सकत है और जानकारी बर बिजली विभाग कार्यालय के मदद भी ले सकत हो। बहनी हो, वैसे भी सूर्य से हमला मुफ्त बिजली मिलत है और ऊर्जा के बचत भी होते। यदि आप मन करा जगह हवे तो जरूर एकर लाभ लेवा और सरकार के जो भी योजना चलत है उकर जानकारी आप मन जाके ले सकत हो। तो यह बहुत ही अच्छा योजना है, PM सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना। तो इला निश्चित ही आप मन के यदि घर में जगह है तो जरूर ही लगवावा। तो ये तो हुई गोड़ चर्चा, और गोड़ चर्चा के बाद सुनबो और सुघर छत्तीसगढ़ी लोकगीत।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: तो बहनी हो, अभी सुने गीत उमा स्वर दे रही है, कार्तिक सोनी, घनश्याम सोनी, माधुरी यादव मन। और गीत के बाद अब क्रम होते आज के हमार स्वास्थ्य चर्चा। तो स्वास्थ्य चर्चा में आज बात कर वो बरसात में खान पान और स्वच्छता का रखें ध्यान। तो बहनी हो, वर्षा के मौसम में हमेशा हल्का फुल्का, ताज़ा और आसानी से पचने वाला गर्म भोजन जैसे सूप, खिचड़ी, दाल, दलिया ही खाना चाहिए। मानसून के समय नमी के कारण बैक्टीरिया तेजी से फैलते, ओकरे बर बाहर के खाए ले बाँचे बर हावे। इम्यूनिटी बनाए बर अदरक, लहसुन, हल्दी जरूर शामिल करना चाहिए। मौसमी फल और सब्जी ई मौसम में सेब, नाशपत्ती, आलू बुखारा, जामुन, अनार के सेवन करना चाहिए। यह हर विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते। कच्चा सब्जी सलाद खाए के बजाय पके हुए सब्जी, लौकी, तुरई, परवल, कुंदरू, काकोरा ई मौसम में सबले बेहतर सब्जी माने जाते हैं। ई मौसम में आसानी से पचने वाला अनाज, खिचड़ी और दलिया, मूंग दाल, चावल के खिचड़ी या दलिया हर पौष्टिक होते। इमा थोड़े से देसी घी डाले में पाचन शक्ति बढ़ते। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला मसाला में काली मिर्च, लहसुन, अदरक, हल्दी, जीरा के इस्तेमाल जरूर करना है। इमा एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते जो नर मानसून में होया संक्रमण से बचाते। साथ ही पानी के स्वच्छता में विशेष ध्यान रखना है। पानी उबाल के और छान के ही पीना है। कटे हुए फल और सब्जी बाहर के खुला में रखे हुए चाट, गुपचुप या और अन्य पदार्थ ला

नहीं खाना है। फल सलाद खाए माँ बहाँचना चाहिए। एमा मक्खी बैठे रहते जेकर से बीमारी हो सकत है। पत्तेदार सब्जी बरसा के मौसम में नहीं खाना चाहिए। पालक पत्ता गोभी और मेथी में अधिकतर हमन देखे हैं कि गंदगी और कीड़ा हो जाते। छोटे छोटे कीटाणु रहते जो नर हमला दिखाई नहीं दे तो बीमार पड़े के ज़्यादा संभावना रहती। और एक सेवन भी करे माँ बहाँचना चाहिए। बहनी हो, वर्षा के मौसम में पाचन तंत्र कमजोर हो जाते। अपन आहार में बदलाव जरूर करना है ताकि हमन संक्रमण ले बहा सकत। साथ ही तुलसी अदरक के काढ़ा जरूर पीना चाहिए। एमा भी एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते। शहद हर भी फायदेमंद हो सकत है। वर्षा के मौसम में संक्रमण से बचे बर हावे तब बाहर के खाना नहीं खाना चाहिए। तला भुना और मसालेदार चीज से परहेज जरूर करना चाहिए। एकर से अतिरिक्त बासी भोजन और फ्रिज के ठंडा पानी भी नहीं पीना चाहिए। बहनी हो, वर्षा के मौसम में मक्खी मच्छर के प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाते। साथ ही आप मन सोए के समय मच्छरदानी के प्रयोग जरूर करा और अपन आसपास के साफ सफाई भी रखना है। खासकर घर के छोटे लड़का और सियान मन के विशेष ध्यान रखना है। ये मौसम में नवजात शिशु मल्ला फ्लू इन्फेक्शन और छोटे छोटे शरीर में दाना जैसन हो के खतरा बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ बुखार या फिर सर्दी जैसन उमल्ला लागते। मौसम में नमी के कारण घर में कपड़ा या घर के और अंदरूनी हिस्सा में सीलन भी फैलते। तो विशेष ध्यान रखना है कि हमल्ला कपड़ा ला अच्छा से धूप दिखा के ही छोटे बच्चा मल्ला पहनाना है। घर में यदि सीलन है तो निश्चित रूप से हमल्ला ओकर उपचार करना है और घर के आसपास के साफ सफाई भी रखना है। काबर ई मौसम में हमार घर के आसपास घास फूस कई प्रकार के कूड़ा कचरा जमा हो जाते हैं जेकर से माने कई प्रकार के कड़क कूड़ा कचरा जमा हो जाते जेकर से सांप बिच्छू आए की संभावना रही थी। तो अपन आसपास के साफ सफाई में विशेष ध्यान देना है। साथ ही साथ नाली के जो गंदगी है वाला हर दिन साफ सफाई करवाना है और उनमें मिट्टी तेल के छिड़काव जरूर करना है। यदि आप मन के कूलर पंखा में पानी भरे है तो उकर भी आप मन साफ सफाई में विशेष ध्यान रखना। काबर की ये मौसम में डेंगू मच्छर मन रुके हुए पानी में पनपते और वह मन हमला काट के नुकसान पहुंचाते। तो ऐसे जगह में हमला जले हुए इंजन आयल और मिट्टी तेल के छिड़काव जरूर करना है। तो बहनी हो, निश्चित ही वर्षा के मौसम हर सावधानी रखे के हवे। तो आप मन ये बात ला जरूर ही ध्यान रखिया। तो कार्यक्रम ले विदा ले के समय होते और कार्यक्रम में फिर हो ही भेंट मुलाकात। तब तक देवा अपन संगीला विदा। राम राम, जय जोहार।

महिलाएं अभी अपना कार्यक्रम सुन रही थी घर द्वार। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। शाम के 6 बजने को है। थोड़ी देर में हिंदी में समाचार रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत अधिक विकास और उपलब्धियां हासिल करने में विश्वास रखता है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आज प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी वर्ष 2014 की यात्रा 28 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया यात्रा थी।
1: मैं जब साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया आया था तो 28 साल के बाद भारत का कोई पीएम यहाँ पहुंचा था। तब मैंने कहा था कि अब आपको 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले 12 वर्षों में मैं तीसरी बार यहाँ आया हूँ, यानी इस बार हैट्रिक लगी है। ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई पर है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे से जुड़े ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि इस भविष्य उन्मुख भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का सबसे मजबूत आधार दोनों देशों के बीच सेतु का कार्य करने वाला जीवंत भारतीय प्रवासी समुदाय है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध गतिशील हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज मेलबर्न में श्री मिश्री ने कहा कि व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहित अनेक क्षेत्रों में दोनों देशों की द्विपक्षीय साझेदारी लगातार सुदृढ़ हुई है। गुजरात सरकार ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विकसित भारत डेटा सेंटर नीति 2026-29 का शुभारंभ किया। इस नीति का उद्देश्य 8 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य निर्धारित करते हुए गुजरात को भारत के अग्रणी डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में 6,00,000 करोड़ रुपए के निवेश और अधिक रोजगार सृजित करना है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने आज जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की अग्रिम सीमा चौकियों का दौरा किया। सेना प्रमुख ने मौजूदा सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया और सैन्य तैयारियों की समीक्षा की। पदभार ग्रहण करने के बाद सेना प्रमुख का पुंछ के अग्रिम क्षेत्रों का ये पहला दौरा है। सेना प्रमुख ने नगरोटा स्थित व्हाइट नाइट कोर मुख्यालय में वरिष्ठ कमांडरों से जम्मू क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और सैन्य तैयारियों की जानकारी ली। सरकार ने सोशल मीडिया पर उस दावे का खंडन किया है जिसमें भारत आ रहे एक एलपीजी टैंकर पर ईरान के मिसाइल हमले की बात कही गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताते हुए कहा है कि साझा की जा रही तस्वीर पिछले साल यमन के अदन तट के पास कैमरून के झंडे वाले एलपीजी टैंकर एमवी फाल्कन में विस्फोट के बाद लगी आग से संबंधित है। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया है कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अमरीकी हवाई हमलों से 2 दिन में 14 लोग मारे गए हैं और 78 घायल हुए हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मानसून राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी आगे बढ़ चुका है। विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं।

0: शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी रायपुर से। कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनिएगा शाम 6:20 पर। प्रादेशिक समाचार हिंदी में आप सुनेंगे शाम 6:45 पर। फिल्म संगीत उसके बाद शाम 7 से प्रसारित किए जाएंगे। किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम होगा किसान वाणी, हमेशा की तरह शाम 7:20 पर। कार्यक्रम किसान वाणी में आज चर्चा का विषय रहेगा नेशनल मिशन ऑन एडिबल आयल पाम। साथ ही सुनिएगा नसीहत, समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन अपनाएं और मृदा की सेहत सुधारें। और इसके अलावा आप सुनेंगे आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्मी गाने आप हमारे केंद्र से सुनेंगे रात्रि 8:20 पर। फिल्म संगीत सुनिएगा रात्रि 8:30 पर। समाचार संध्या रिले करेंगे रात्रि 8:45 पर। कार्यक्रम विविध संगीत का प्रसारण होगा रात्रि 9 और कार्यक्रम विविध संगीत आप सुन पाएंगे रात्रि 10 से। अपनी पसंद के गाने आप सुन सकते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश में रात्रि 10:30 पर। हिंदी में समाचार रात्रि 11 और अंग्रेजी में समाचार रात्रि 11:05 पर रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
3: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
2: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
3: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
2: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
3: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
1: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
0: FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार छत्तीसगढ़ी में रिले करेंगे आकाशवाणी रायपुर से।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग शुभा मिश्रा के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। राज्य सरकार हा भारतीय प्रशासनिक सेवा के 5 अधिकारी मन के प्रभार मा करीन फेरबदल। गौरेला पिंडा मरवाही जिला के कलेक्टर बदले गीस। प्रदेश मा अवैया बछल्ले नवा शिक्षा सत्र 1 अप्रैल ले हो ही शुरू। औ कोल लेवी घोटाला मामला मा काली गिरफ्तार कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल ला 17 जुलाई तक EOW के रिमांड मा भेजे गीस। अब समाचार विस्तार ले। राज्य सरकार हा भारतीय प्रशासनिक सेवा के 5 अधिकारी मन के प्रभार मा फेर बदल करे हे। सामान्य प्रशासन विभाग डहर ले जारी आदेश के अनुसार गौरेला पेंडा मरवाही जिला के कलेक्टर संतोष कुमार देवांगल ला स्कूल शिक्षा विभाग के विशेष सचिव बनाए गए हे। उखड़ जगह मा तकनीकी शिक्षा विभाग के संचालक विजय दया राम ला गौरेला पेंडा मरवाही जिला के कलेक्टर नियुक्त करे गए हे। उन्हें हेमंत रमेश नंदनवाल ला तकनीकी शिक्षा रोजगार और प्रशिक्षण के संचालक बनाए गए हे। एकरे संग ओमल्ला छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के अतिरिक्त प्रभार घलो सौंपे गए हे। एकर अलावा सुमित अग्रवाल ला छत्तीसगढ़ राज्य शहरी विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और अनुपमा आनंद ला महासमुंद जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के जिम्मेदारी दे गए हे। प्रदेश मा अवैया बछर ले नवा शिक्षा सत्र 1 अप्रैल ले शुरू होए हे। इस संबंध मा स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह लोक शिक्षण संचालनालय ला पत्र भेज के दिशा निर्देश जारी करे हे। एकर तहत वर्तमान मा राज्य संचालित होवैया 16 जून ले 30 अप्रैल के शिक्षा सत्र ला अब खत्म कर दे जाही। एकर जगह मा देश के आने प्रमुख शिक्षा बोर्ड और मंडल के समान है। अब छत्तीसगढ़ मा घलो नवा सत्र 1 अप्रैल ले शुरू होके 31 मार्च तक चलही। फिर छात्र मन ला मिलैया गर्मी के छुट्टी मा कोनो कटौती नहीं करेगे हे। प्रदेश मा 1 मई ले 15 जून तक गर्मी के छुट्टी पहली जैसे ही रही। 1 अप्रैल के नवा शिक्षा सत्र शुरू होए के संग ही स्कूल मा साला प्रवेश उत्सव मनाए जाही। ए दौरान छात्र मल्ला निशुल्क पुस्तक सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल और स्कूल ड्रेस बांटे जाही। उन्हें आने सबो छात्र मन के हित के योजना और गतिविधि घलो अनिवार्य रूप ले शुरू करे जाही। इस बीच राज्य सरकार हा अवैया शैक्षणिक सत्र ले प्रदेश के सबो स्कूल मा कक्षा पहली मा प्रवेश बर न्यूनतम आयु 6 बछर निर्धारित कर दे हे। ए नवा व्यवस्था सबो शासकीय अशासकीय और अनुदान प्राप्त विद्यालय ऊपर लागू होही। संगे संग शिक्षा के अधिकारी अधिनियम के तहत निजी विद्यालय के 25% आरक्षित सीट मा होइया प्रवेश बर घलो ए नियम प्रभावी रही। ए निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा के अधिकार अधिनियम और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुरूप ले गए हे। स्कूल शिक्षा सचिव रहले जारी निर्देश के अनुसार अवैया शैक्षणिक सत्र के 1 अप्रैल के लइका मन के उम्र के आधार मा प्रवेश दे जाही। अभिभावक और लइका मन के सुविधा भर राज्य शासन हा 1 अप्रैल के निर्धारित आयु पूरा नहीं कर पाए लइका मन भर 1 जुलाई तक उखड़ जरूरी आयु पूरा होए तक 3 माह के छूट दे हे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक ला लागू करैया छत्तीसगढ़ देश के पहली राज्य होही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अध्यक्षता मा काली मंत्रालय मा होए राज्य मंत्रिमंडल के बैठका मा ए विधेयक के प्रारूप के अनुमोदन करेगी। बैठका के बाद पत्रकार मन ले चर्चा करत हुए उप मुख्यमंत्री अरुण सावहा बतायन की ए विधेयक के उद्देश्य राज्य मा व्यापार और उद्योग स्थापित करे के प्रक्रिया ला ज्यादा सरल पारदर्शी डिजिटल और समयबद्ध बनाना है। मंत्री परिषद हा बस्तर फाइटर्स मा फाइटर आरक्षक भर्ती और सेवा नियम मा संशोधन ला स्वीकृति दे दे। उहे छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना और संचालन संशोधन विधेयक के प्रारूप के अनुमोदन करेगे हे। एखले राज्य मा गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थान के स्थापना ला प्रोत्साहन मिली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय काली राज्य के शासकीय सेवक मन बर वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना के शुभारंभ करीन। एकर उद्देश्य शासकीय सेवक मन ला आकस्मिक परिस्थिति मा सम्मानजनक तुरते और सहज वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री हा कहिन कि अब कर्मचारी मन ला अचानक पड़े जरूरी बर निजी साहूकार या ऊंचा ब्याज दर मा ऋण ले बर व्यवस्था के सामना नहीं करना पड़ी। सरकार हा ऐसन व्यवस्था विकसित करे है जेखर जरिया ले ओमन बिना जरूरी कागजी प्रक्रिया के अपन पात्रता के अनुसार कम समय मा ऋण पा सकी। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़

0: जेखर ले उपभोक्ता मन ला परेशानी होते। सरकार अब राज्य स्तर में एकीकृत प्लेटफॉर्म ऐप बनाही हुए। भारत सरकार घलो यूनिवर्सल ईवी चार्जिंग ऐप लावत है। कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल ला करीब 500 करोड़ रुपया के कोल लेवी घोटाला मामला मा काली गिरफ्तार करेगी रहीस। आज ओमल्ला रायपुर के विशेष अदालत में पेश करेगी, जहां कोर्ट हा रामगोपाल अग्रवाल ला 17 जुलाई तक आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू के रिमांड में भेज देगे है। जानबा के मुताबिक रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ ए मामला में विशेष अदालत हा स्थायी वारंट जारी करे रहीस। उखर तलाश में कतकोन जगह छापा घलो मारे गे रहीस। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा काली रायपुर के डूमर तलाई मा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल डहर ले विकसित नवीन थोक बाजार फेज टू के लोकार्पण करीन। ए दौरान श्री साय हा घोषणा करीन कि परिसर के नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम मा करे जाही और यहाँ स्टेचू ऑफ यूनिटी के तर्ज मा उखर 15 फीट ऊंचा प्रतिमा स्थापित करे जाही। ए बेरा मा मुख्यमंत्री हा कहीन कि राज्य सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संग ईज ऑफ लिविंग ला घलो समान महत्व देवत है। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय डहाले भुवनेश्वर में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में छत्तीसगढ़ आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान ला अच्छा प्रदर्शन बर सम्मानित करेगी। ये कार्यशाला देश के जनजाति अनुसंधान के सुदृढ़ीकरण बर आयोजित करेगी रहीस। एमा 29 राज्य के जनजाति अनुसंधान संस्थान के प्रतिनिधि मनहा हिस्सा लेन। कार्यशाला के दौरान जनजाति अनुसंधान संस्था के कार्यप्रणाली, जनजाति विकास बर अनुसंधान, आधुनिकीकरण, जीआईएस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार परिस्थिति तंत्र जैसन विषय में विचार विमर्श करेगी। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में चालू शैक्षणिक सत्र में कृषि अभियांत्रिकी और खाद्य प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम के पहली बछर में प्रवेश बर ऑनलाइन काउंसलिंग के प्रक्रिया काली 10 जुलाई ले शुरू होवत है। काउंसलिंग में भाग लेवैया इच्छुक अभ्यर्थी जरूरी दस्तावेज के संग 20 जुलाई तक पंजीयन कर सकत है। अभ्यर्थी के प्रवीण सूची 23 जुलाई के विश्वविद्यालय के वेबसाइट में प्रकाशित करे जाही। राजनांदगांव के वरिष्ठ पत्रकार राजेन व्यास के काली 8 जुलाई के निधन होगी। श्री व्यास राजनांदगांव प्रेस क्लब के संरक्षक रहीन। उमनहा लंबा समय तक राजनांदगांव जिला के आकाशवाणी संवाददाता के रूप में घलो अपन सेवा दिन। केंद्रीय गृह मंत्रालय डहाले जारी वार्षिक पुलिस थाना रैंकिंग में बस्तर स्थित बोधघाट थाना ला राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित करे गए है। गृह निर्माण मंत्रालय डहाले हर बछर देश भर के पुलिस थाना के मूल्यांकन आने आने मानक में करे जाते। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए हा सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा पर अग्रिम शहर सूचना पर्ची जारी कर दे है। बलौदाबाजार भाटापारा जिला में खमरिया चूना भट्टी के तीर दो मोटरसाइकिल के टकराए ले दो लोगों के मौत होगी, फिर एक माई लोगिन गंभीर रूप ले घायल हो गए है। और दुर्ग जिला के मोहन नगर थाना पुलिस रायपुर नाका क्षेत्र में जुआ खेलत 12 जिन आरोपी मल्ला गिरफ्तार करे है। उखर तीर ले 9 लाख रूपया ले ज्यादा नगद पैसा और 10 मोबाइल जब्त करे गए है। आखिर मा प्रमुख समाचार एक घौं फेर। राज्य सरकार हा भारतीय प्रशासनिक सेवा के 5 अधिकारी मन के प्रभार मा करीन फेर बदल। गोरेला पेंडा मरवाही जिला के कलेक्टर बदले गीस। प्रदेश मा अवैया बछर ले नवा शिक्षा सत्र 1 अप्रैल ले हुई शुरू और कोल लेवी घोटाला मामला मा काली गिरफ्तार कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल ला 17 जुलाई तक ईओडब्ल्यू के रिमांड मा भेजेगी। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन एहि सिरावत है। जय जोहार।
1: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: कार्यक्रम फिल्म संगीत में अभी आपने कुमार सानू और अलका याग्निक की युगल आवाज में दामिनी फिल्म का गीत सुना है। गीतकार थे समीर और संगीतकार थे नदीम श्रवण।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: कार्यक्रम का अगला गाना सुनिए, दीवाना फिल्म से कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में। समीर के बोल हैं और नदीम श्रवण का संगीत है।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
0: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

0: घायल फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आशा भोसले, शब्बीर कुमार और कुमार सानू की आवाज़ों में। इंदिवर के बोल थे और बप्पी लहरी का संगीत था। और इसके साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत समाप्त हुआ। FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:45 हुए हैं। थोड़ी देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से, माफ कीजिएगा, आकाशवाणी रायपुर से।
1: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
2: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
1: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
2: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए

0: से उसकी पहचान होती हो।
1: क्यों?
0: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है, और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
6: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
5: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। देश के अन्य शिक्षा बोर्डों के समान ही अब छत्तीसगढ़ में भी नया शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। प्रदेश के 5 आईएएस अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया गया। विजय दयाराम गोरेला पिंडरा मारवाही जिले के नए कलेक्टर बने। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाने का फैसला किया। और कोल लेवी घोटाला मामले में गिरफ्तार कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल को विशेष अदालत ने 17 जुलाई तक के ईओडब्ल्यू रिमांड पर भेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में अगले वर्ष से नया शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ कमलप्रीत सिंह ने लोक शिक्षण संचालनालय को पत्र भेजकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत देश के अन्य प्रमुख शिक्षा बोर्डों और मंडलों के समान ही अब छत्तीसगढ़ में भी नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलेगा। हालांकि छात्रों को मिलने वाले ग्रीष्मकालीन अवकाश में कोई कटौती नहीं की गई है। प्रदेश में 1 मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश पहले की ही तरह यथावत रहेगा। 1 अप्रैल को नया शिक्षा सत्र शुरू होने के साथ ही स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल और गणवेश का वितरण किया जाएगा। वहीं अन्य सभी छात्र हितैषी योजनाएं और गतिविधियां भी अनिवार्य रूप से शुरू की जाएंगी। इस बीच राज्य सरकार ने आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के सभी स्कूलों में कक्षा पहली में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा 6 वर्ष निर्धारित कर दी है। यह नई व्यवस्था सभी शासकीय अशासकीय और अनुदान प्राप्त विद्यालयों पर लागू होगी। साथ ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों की 25% आरक्षित सीटों पर होने वाले प्रवेशों पर भी यह नियम प्रभावी रहेगा। यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा का अधिकार अधिनियम और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिया गया है। स्कूल शिक्षा सचिव द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आगामी शैक्षणिक सत्र के 1 अप्रैल को बच्चे की आयु के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। अभिभावकों और बच्चों की सुविधा के लिए राज्य शासन ने 1 अप्रैल को निर्धारित आयु पूरी नहीं कर पा रहे बच्चों के लिए 1 जुलाई तक उसके आवश्यक आयु पूर्ण होने तक 3 माह की छूट प्रदान की है। ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक को लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में

व्यापार और उद्योग स्थापित करने की प्रक्रियाओं को अधिक सरल, पारदर्शी, डिजिटल और समयबद्ध बनाना है। मंत्रिपरिषद ने बस्तर फाइटर्स में फाइटर आरक्षक भर्ती और सेवा नियम में संशोधन को स्वीकृति दी गई है। वहीं छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना और संचालन संशोधन विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इससे राज्य में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल राज्य के शासकीय सेवकों के लिए वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य शासकीय सेवकों को आकस्मिक परिस्थितियों में सम्मानजनक, त्वरित और सहज वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कर्मचारियों को आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए निजी साहूकारों अथवा ऊंची ब्याज दरों पर ऋण लेने की विवशता का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने ऐसी व्यवस्था विकसित की है जिसके माध्यम से वे बिना अनावश्यक कागजी प्रक्रिया के अपनी पात्रता के अनुसार अल्पावधि ऋण प्राप्त कर सकेंगे। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 5 अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार गौरेला पिंडरा मारवाही जिले के कलेक्टर संतोष कुमार देवांगन को स्कूल शिक्षा विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है। उनके स्थान पर तकनीकी शिक्षा विभाग के संचालक विजय दयाराम को गौरेला पिंडरा मारवाही जिले का कलेक्टर नियुक्त किया गया है। वहीं हेमंत रमेश नंदनवार को तकनीकी शिक्षा, रोजगार और प्रशिक्षण का संचालक बनाया गया है। इसके साथ ही उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। इसके अलावा सुमित अग्रवाल को छत्तीसगढ़ राज्य शहरी विकास अभिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी और अनुपमा आनंद को महासमुंद जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाने का फैसला किया है। सभी जिलों के आरटीओ और डीटीओ को अपने क्षेत्र में चार्जिंग स्टेशनों के लिए जगह चिन्हित करने और एनओसी की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में अलग अलग कंपनियों के अलग अलग ऐप हैं जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी होती है। सरकार अब राज्य स्तर पर एकीकृत प्लेटफॉर्म ऐप बनाएगी। वहीं भारत सरकार भी यूनिवर्सल ईवी चार्जिंग ऐप ला रही है। समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। देश के सबसे बड़े अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने बहुचर्चित महादेव ऐप भ्रष्टाचार और सट्टेबाजी मामले में 6 नए आरोप पत्र चार्जशीट दाखिल किए हैं। जांच एजेंसी ने इस मामले में 6 मुख्य आरोपियों असीम दास, रोहित गुलाटी, विकास छापरिया, अनिल धम्मानी, विशाल आहूजा और धीरज आहूजा को नामजद किया है। इनके साथ ही जांचकर्ताओं ने इस घोटाले के मुख्य सरगनाओं सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ अतिरिक्त सबूत भी अदालत के समक्ष पेश किए हैं, जिन्हें पहले ही आरोपित किया जा चुका है। इन भगोड़ों को कानून के दायरे में लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद ली जा रही है। विदेश भाग चुके 4 मुख्य आरोपियों के खिलाफ इंटरपोल द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस पहले ही जारी किया जा चुके हैं। इसके साथ ही भारतीय कानून के तहत इन व्यक्तियों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, जिससे देश में मौजूद उनकी संपत्तियों को जब्त किया जा सके। कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को करीब 500 करोड़ रुपए के कोल लेवी घोटाला मामले में कल गिरफ्तार किया गया था। आज उन्हें रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने रामगोपाल अग्रवाल को 17 जुलाई तक आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू की रिमांड पर भेज दिया है। गौरतलब है कि रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ इस मामले में विशेष अदालत ने स्थायी वारंट जारी किया था। उनकी तलाश में कई जगह छापे भी मारे गए थे। पर्यटन और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में उच्च स्तरीय विभागीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में पर्यटन और संस्कृति विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, प्रमुख पर्यटन स्थलों और सांस्कृतिक गतिविधियों की प्रगति तथा आगामी कार्ययोजना की समीक्षा की गई। इस अवसर पर श्री अग्रवाल ने अधिकारियों से कहा कि प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन स्थलों के साथ ही प्रदेश की लोक कलाओं, कलाकारों और सांस्कृतिक धरोहरों को पहचान दिलाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में चालू शैक्षणिक सत्र में कृषि अभियांत्रिकी और खाद्य प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में के प्रवेश प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया कल 10 जुलाई से शुरू हो रही है। काउंसलिंग में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी आवश्यक दस्तावेजों के साथ 20 जुलाई तक पंजीयन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की प्रवीण सूची 23 जुलाई को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की।

0: आएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और सरगुजा संभाग के कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। मौसम विज्ञानी डॉ गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि आगामी 4 दिनों तक यही स्थिति बनी रहेगी।
1: आज 9 जुलाई तक दक्षिण पश्चिमी मानसून पूरा भारत देश कवर कर चुका है। आज उत्तर छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से बिलासपुर और सरगुजा संभाग में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ये मेघ गर्जन का गतिविधि और हल्की से मध्यम वर्षा का गतिविधि जो है आगामी 4 दिन तक रहने की संभावना है। 4 दिन के पश्चात ये वर्षा का गतिविधि थोड़ा वृद्धि होने की संभावना है और 4-5 दिन के पश्चात दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी विस्तार रूप से वर्षा होने की चांसेस है।
0: और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राजनांदगांव के वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र व्यास का कल 8 जुलाई को निधन हो गया। श्री व्यास राजनांदगांव प्रेस क्लब के संरक्षक थे। उन्होंने लंबे समय तक राजनांदगांव जिले के आकाशवाणी संवाददाता के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक पुलिस थाना रैंकिंग में बस्तर स्थित बोधघाट थाना को राज्य का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष देशभर में पुलिस थानों का मूल्यांकन विभिन्न मानकों पर किया जाता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा के लिए अग्रिम शहर सूचना पर्ची जारी कर दी है। यह परीक्षा 17 और 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में खमरिया चून भट्टी के पास दो मोटरसाइकिल के बीच हुई भिड़ंत में दो लोगों की मौत हो गई जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। और दुर्ग जिले के मोहननगर थाना पुलिस ने रायपुर नाका क्षेत्र में जुआ खेल रहे 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 9 लाख रुपए से अधिक नकद राशि और 10 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। अंतिम में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के अन्य शिक्षा बोर्डों के समान ही अब छत्तीसगढ़ में भी नया शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। प्रदेश के 5 आईएएस अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया गया। विजय दयाराम गौरेला पेंड्रामावाही जिले के नए कलेक्टर बने। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाने का फैसला किया। और कोल लेवी घोटाला मामले में गिरफ्तार कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल को विशेष अदालत ने 17 जुलाई तक के ईओडब्ल्यू रिमांड पर भेजा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे।
3: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
4: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
5: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
4: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
6: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
2: आकाशवाणी रायगढ़ से लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। पहले सुनिए प्यार का मौसम, इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीतबद्ध किया है RD परमन ने।

0: कार्यक्रम फिल्म संगीत में अभी आपने प्यार का मौसम इस फिल्म का गीत सुना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। मजरूह के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
4: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ,

प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर। Yeah.

0: हरे रामा हरे कृष्णा। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। आनंद बख्शी के बोल थे और आर डी बर्मन का संगीत था।
1: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
2: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

तेरे मेरे सपने। अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, नीरज के बोल थे और एच डी बर्मन का संगीत था। और कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए ये गीत।

दूसरा आदमी फिल्म का गीत अभी आपने सुना, किशोर और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। मजरूह के बोल थे और राजेश रोशन का संगीत था। और इसके साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत समाप्त होता है। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी।

फिल्म संगीत समाप्त होता है। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी।